मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 की, वैशाख माह की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:55 और 43 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

ताज़ी सुबह की हवा जैसे कहती है, बीते कल की थकान को छोड़ो, आज को नए उत्साह से जियो। हर किरण एक नया अवसर लेकर आती है और हर सांस में एक नई उम्मीद बसती है। तो आइए इस ताजगी को महसूस करें और पूरे दिन को मुस्कान और ऊर्जा से भर दें। नमस्कार, लखनऊ में मैं अंजलि श्रीवास्तव भोर की सुहानी बेला में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने वाले हैं, समय है समाचारों का। आइए चलते हैं दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धुलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा

0: पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात करेंगे।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स एट 20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य जरूरी उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन भागीदारी से भाग्योदय लक्ष्य के तहत आयोजित किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्कार लखनऊ। समय है हमारे किसान भाइयों को कृषि से संबंधित जानकारी देने का। आज का विषय है बेबी कॉर्न की उन्नत खेती। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नगेन सिंह रघुवंशी।
4: शुभ प्रभात। बेबी कॉर्न मक्का की ही एक प्रजाति है। इसका उपयोग सूप, अचार, सलाद, मिक्स वेज, वेज बिरयानी आदि विविध रूपों में किया जाता है। इससे हम सभी अब धीरे धीरे परिचित हो चले हैं, लेकिन होटलों में इसकी विशेष मांग है। कारण कि यह थोड़ा महंगा होता है और जो स्टैंडर्ड होटल्स हैं उसमें इसकी मांग बेहतर है। यह वास्तव में साधारण भुट्टा ही है, जिसे अपरिपक्व अवस्था में तोड़ लिया जाता है। जब इसमें रेशमी रेशे या तो बिल्कुल ही नहीं आए होते या उनके आने की शुरुआत हुई होती है। इसमें वानस्पतिक रूप से भुट्टे के परागण को रोक दिया जाता है और निषेचन की क्रिया भी नहीं हो पाती। परिणाम स्वरूप इसमें परागण पूर्व नर फूल नष्ट करके सिर्फ मादा फूल रहने देते हैं। इससे भुट्टे में दाने का विकास न होकर केवल भुट्टे का विकास होता है, यानी उसका जो मूल होता है वही रहता है, जिसे हम लोग अपने यहाँ की भाषा में ठेठी कह लेते हैं। बेबी कॉर्न से बहुत ही अच्छा पोषक तत्व प्राप्त होता है। सामान्य तौर पर 100 ग्राम बेबी कॉर्न में 89% नमी, 8 से 8.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2 ग्राम प्रोटीन और 10

0: दशमलव 2 ग्राम वसा के साथ साथ 28 मिलीग्राम कैल्शियम, 86 मिलीग्राम फास्फोरस तथा अन्य विटामिन्स भी पाए जाते हैं। बेबी कॉर्न खाने में पौष्टिक होने के साथ साथ सभी तरह के कीटनाशकों से सुरक्षित रहता है, क्योंकि यह भुट्टे की हरी पत्तियों से ढका रहता है और इस पर सामान्यतः कीटनाशकों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। बेबी कॉर्न से जहां कम समय अवधि की फसल होने के कारण अच्छा मूल्य प्राप्त किया जाता है कम समय में ही, वहीं इससे पशुओं के लिए अच्छी गुणवत्ता का चारा भी प्राप्त हो जाता है। व्यापारिक स्तर पर खेती के लिए बेबी कॉर्न की ऐसी प्रजातियों का चयन करना चाहिए जिसमें इस तरह के कई गुण हों जो आपके लिए लाभकारी हों, जैसे जल्दी परिपक्वता वाली हो जिससे फसल कम समय में तैयार हो सके, प्रजाति ऐसी हो जिसमें भुट्टों की संख्या अधिक हो, बेबी कॉर्न की कम से कम समय में तुड़ाई करने के लिए भुट्टे एक साथ निकलने का गुण भी होना चाहिए, पौधों की ऊंचाई ऐसी हो जिससे भुट्टे तोड़ना सुविधाजनक हो, बहुत लंबे पौधे होंगे तो फिर दिक्कत आती है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से जातियों की अगर हम चर्चा करें, जो प्रजातियां होती हैं इसकी, उसमें VL बेबी कॉर्न 1, VL 42, MEH 114 गोल्डन बेबी, माधुरी हिमालय 129, अर्ली कंपोजिट और इसी तरीके से कई अन्य किस्में हैं जो विभिन्न कंपनियों द्वारा भी निकाली गई हैं। बेबी कॉर्न की खेती बिल्कुल मक्के की तरह ही की जाती है। जिन परिस्थितियों में मक्का पैदा होता है बिल्कुल वहां भी आप बेबी कॉर्न पैदा कर सकते हैं। इसके लिए जीवांश पदार्थ युक्त बलुई दोमट से दोमट भूमि जिसका पीएच मान 6.5 से 7 के बीच ही हो, जैसा कि अन्य फसलों के लिए होता है, वैसे ही इसके लिए भी अच्छी मानी जाती है। खेत की तैयारी से पूर्व प्रति हेक्टेयर 200 क्विंटल गोबर की खाद मिलाएं या फिर 10 क्विंटल नाडेप कंपोस्ट मिला लेना बेहतर होता है। यदि खेत की तैयारी के समय नमी की कमी हो तो पलेवा देकर एक गहरी जुताई, फिर 2-3 बार कल्टीवेटर से जुताई कर खेत तैयार कर लेते हैं और फिर बुआई इसकी कर लेते हैं। बेबी कॉर्न की बुआई जनवरी से लेकर सितंबर महीने तक कभी भी की जा सकती है। वैसे मई के प्रथम पखवाड़े में बुआई करने से अपेक्षाकृत अच्छी उपज प्राप्त होती है, ऐसा वैज्ञानिकों ने देखा है। फिर भी इसकी बुआई आप किसी भी समय कर सकते हैं। इसके लिए बुआई 50x15 सेंटीमीटर पर करनी चाहिए। आवश्यक पौधों की संख्या के लिए प्रति हेक्टेयर 36 से 40 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बुआई से पूर्व बीज को एजो स्पाइरिलम एजिटोवैक्टर से अकेले या फिर PSV कल्चर के साथ मिलाकर शोधित करने से उपज में ज्यादा सहूलियत मिलती है। बुआई के समय 97 किलोग्राम यूरिया, 87 किलोग्राम DAP, 67 किलोग्राम म्यूरेटा पोटाश या फिर 130 किलोग्राम यूरिया, 250 किलोग्राम SSP और 67 किलोग्राम म्यूरेटा पोटाश देना चाहिए। टॉप ड्रेसिंग के लिए 130 किलोग्राम यूरिया बुआई के 25 दिन बाद अगर करते हैं, और टॉप ड्रेसिंग इसकी जानते हैं कि इनके तनों के पास थोड़ा सा दूरी छोड़कर 1 से 1.5 इंच की वहां डाला जाता है।
1: बेबी कॉर्न की उन्नत खेती विषय पर अभी आप डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की जानकारी सुन रहे थे। इसी के साथ कृषि चर्चा संपन्न हुई। आपने ट्यून किया है मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ और कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ। सुविचार हमें प्रेरणा देते हैं। जब हम असफल होते हैं या मन कमजोर पड़ता है तब एक छोटा सा सुविचार भी हमें फिर से उठने का साहस देता है। आज के सुविचार में सुनिए आत्मज्ञान के बारे में। स्वर डॉक्टर शिवा राकेश का है।
2: आत्मज्ञान क्या है? जीवन का उद्देश्य और उसका सार क्या है? जीवन के साथ जुड़ी हुई जिज्ञासाओं का सही उत्तर आखिर क्या है? इन्हीं प्रश्नों के समाधान में आत्मज्ञान एक ठोस, तात्विक और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वास्तव में आत्मज्ञान वो बोध है जो हमें जीवन की दिशा और नीति तय करने में सहायता करता है। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता वो दूसरों को या संसार को भला क्या जानेगा? आत्मज्ञान के अभाव में जीवन दिशाहीन और उद्देश्यहीन हो जाता है। भले ही हमारे पास भौतिक साधन हो, यदि आत्मबोध नहीं तो हम स्थायी संतोष कभी प्राप्त नहीं कर सकते। हमारी सोच सदैव बिखरी हुई होती है, निर्णय अस्थिर होते हैं और जीवन एक अधूरी पहेली बनकर रह जाता है। यदि हमारा मन भीतर से शांत नहीं तो बाहरी संपत्ति और सफलता भी व्यर्थ लगती है। आत्मज्ञान के बिना हम माया, मोह, भ्रम और अहंकार में उलझे रहते हैं।

0: इन धर्म ग्रंथों में आत्मज्ञान को जीवन की सबसे महान उपलब्धि बताया गया है। ये ज्ञान कोई रहस्यमय बात नहीं बल्कि एक साधना और सतत अभ्यास का परिणाम है। इसके लिए न तपश्चर्या की आवश्यकता है न ही जंगल में जाने की, बल्कि ये तो एक आंतरिक जागृति है जो सही दृष्टिकोण, विचार, चिंतन और चरित्र से विकसित होती है। आज संसार में अज्ञानता का अंधकार फैला है। धर्म के नाम पर आडंबर, राजनीति में स्वार्थ, व्यापार में छलकपट और जीवन में अवसाद का बोलबाला है। इसका मूल कारण आत्मबोध की कमी ही है। यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को पहचाने तो समाज में अनेक समस्याओं का समाधान सहज ही संभव है। सच तो यह है कि आत्मज्ञान से ही सच्चा धर्म जागता है, शांति की अनुभूति होती है और मानव अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है। जब तक हम ये नहीं समझते कि हमारे भीतर ही समाधान छिपा है, तब तक जीवन में उथल पुथल बनी रहती है। आत्मज्ञान ही वो दृष्टि है जो जीवन के प्रत्येक पहलू को स्पष्ट करती है। ये केवल दर्शन नहीं बल्कि एक व्यावहारिक अनुभव है जिससे जीवन का हर निर्णय संयमित, विवेकपूर्ण और सुसंगत हो जाता है। हम प्रायः जीवन की समस्याओं का समाधान बाहरी संसाधनों, संपत्ति, प्रतिष्ठा या दूसरों के व्यवहार में ढूंढते हैं, लेकिन आत्मज्ञान बताता है कि जब तक हम अपने भीतर का दीपक नहीं जलाते, तब तक अंधकार बना रहेगा। दूसरों को सुधारने से पहले अपने भीतर के दोषों को देखना और सुधारना आवश्यक है। यदि मनुष्य को केवल सांसारिक सफलता ही प्राप्त हो लेकिन वह स्वयं से अपरिचित हो, तो वह जीवन की सच्ची उपलब्धियों से वंचित रहेगा। आत्मज्ञान वो दृष्टि है जिससे हम स्वयं को देख पाते हैं, अपने विचारों, भावनाओं, प्रवृत्तियों और कर्मों को जांच पाते हैं। हम में से अधिकांश लोग बाहरी छवि को संवारने में लगे रहते हैं, जबकि भीतर का सत्य अनदेखा ही रह जाता है। ये भीतर की यात्रा है जो आत्मज्ञान के माध्यम से आरंभ होती है। एक बार जब ये अंतर्दृष्टि विकसित हो जाती है, तब हम अपने परिवार, समाज और संसार के प्रति भी अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी बन जाते हैं। सच्चा आत्मज्ञान हमारे आचरण में विनम्रता, व्यवहार में संयम और जीवन में उद्देश्य ले आता है। इससे जीवन की दिशा स्पष्ट होती है, निर्णय सटीक होते हैं और व्यक्तित्व स्थिर बनता है। इससे केवल व्यक्ति स्वयं का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का हित करता है। वो अपने परिवार में सौहार्द और सहयोग लाता है, समाज में प्रेरणा बनता है और राष्ट्र के लिए मूल्यवान मानव संसाधन के रूप में खड़ा होता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि आत्मज्ञान कोई दूरस्थ आदर्श नहीं बल्कि वो जीवन पद्धति है जो प्रतिदिन के विचारों, भावनाओं और कार्यों के माध्यम से विकसित होती है।
1: अभी आप आज के सुविचार में सुन रहे थे आत्मज्ञान के बारे में स्वयं डॉक्टर शिवा राकेश का था। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: आप सुन रहे हैं नमस्कार लखनऊ कार्यक्रम। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

श्रद्धा और विश्वास हमें इस संसार में दृढ़ निश्चय बनाते हैं और दृढ़ निश्चय होने से हम कुछ भी कर पाने में समर्थ होते हैं।

गुरुवाणी केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने वाली दिव्य वाणी है, जिनके पवित्र शब्दों में समर्पण है और सत्य का प्रकाश है। गुरुवाणी हमें सिखाती है कि ईश्वर एक है और उसका स्मरण ही जीवन का आधार है।

आप सुन रहे हैं नमस्कार लखनऊ कार्यक्रम। भक्ति के रस का और आनंद लेने के लिए हम चलते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुनने के लिए। आज आप सुनेंगे भाग संख्या 171।

प्रयाग से चित्रकूट के मार्ग में श्रीराम, सीता और लक्ष्मण को ग्राम तथा वनवासियों से हृदय स्पर्शी स्नेह प्राप्त हुआ। ग्रामवधुओं ने सीता जी के चरण छूकर उनकी मंगल कामना की, उन्हें आशीष दिया कि जब तक पृथ्वी कायम है उनका सुहाग बना रहे, वे पार्वती की भांति पति का प्रेम प्राप्त करें और वन से लौटते हुए इसी मार्ग से जाएं। लक्ष्मण ने जब विनीत भाव से आगे का मार्ग पूछा तो ग्रामवासियों की आंखों में आंसू उमड़ आए। कर्म की गति कोई नहीं जान सका है, ऐसा मानकर वनवासियों ने उन्हें सुगम मार्ग बता दिया। स्नेहसिक्त वचन से श्रीराम ने उन्हें उनके घरों को वापस लौटाया। लौटते हुए स्त्री पुरुषों को ये विषाद है कि विधाता के सभी काम उल्टे होते हैं। यदि उसे इन्हें वनवास ही देना था तो व्यर्थ ही भोग विलास के साधन बनाए। व्यथित ग्रामवासी विधाता की करनी का विश्लेषण करते हैं। किसी को लगता है कि ये ब्रह्मा के बनाए न होकर अपने आप प्रकट हुए हैं। कोई कहता है कि ब्रह्मा इनका अनुपम रूप देखकर इन पर मुग्ध हो गया होगा और इन्हीं की छवि में स्त्री पुरुष बनाने लगा होगा, किंतु बहुत यत्न करके भी अपनी रचना को इन जैसा सुंदर नहीं बना सका होगा, तो ईर्ष्यावश इन्हें वन में छिपाने की योजना बना ली।

0: अभी आप श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुन रहे थे। गायक कलाकार थे वाणी जयराम और श्रीकांत पारगवकर। संगीत संयोजन सतीश भाटिया ने किया था।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
0: मीडियम वे पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 6:55 होने को हैं। आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: राहत की तरह काम करता है। कई परंपरागत नुस्खों में इसे त्वचा की सफाई और शीतलता के लिए उपयोग किया जाता रहा है। एक और विशेषता अमलतास की ये है कि ये शरीर में रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। जिन लोगों को शरीर में बार बार फुंसियाँ निकलती हैं, त्वचा पर लाल चकत्ते आते हैं या पसीने से बदबू की समस्या होती है, उनके लिए अमलतास एक लाभकारी समाधान है। इसका नियमित और संतुलित सेवन शरीर में ठंडक बनाए रखता है और रक्त में संतुलन स्थापित करता है। अमलतास की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बेहद कोमल रूप से काम करता है। ये उन औषधियों में से एक है जो शरीर पर किसी तरह का दबाव नहीं डालती, बल्कि धीरे धीरे संतुलन स्थापित करती हैं। इसलिए बुजुर्गों, बच्चों और कमजोर लोगों के लिए ये सुरक्षित मानी जाती है, बशर्ते किसी वैद्य या चिकित्सक की सलाह से ही सही मात्रा और सही विधि से इसका सेवन किया जाए। इसका स्वाद कुछ कुछ मीठा होता है और यही कारण है कि ये काढ़े के रूप में भी सहजता से पिया जा सकता है। गर्मियों में कई जगहों पर अमलतास के फूलों और पत्तियों से शरबत भी बनाया जाता है, जो स्वाद के साथ साथ शरीर को ठंडक भी देता है। कुछ परंपरागत घरों में इसकी छाल से भी औषधीय लेप तैयार किया जाता है, जिसे जोड़ों के दर्द या सूजन में लगाया जाता है। प्रकृति ने अमलतास को केवल औषधीय ही नहीं बल्कि सौंदर्य से भी भरपूर बनाया है। इसकी उपस्थिति किसी भी जगह को आकर्षक बना देती है और मन को प्रसन्नता से भर देती है। कहते हैं कि जब हम ऐसे वृक्षों को पास रखते हैं तो उनका प्रभाव न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। अमलतास का पीला रंग, उसकी लटकती हुई शाखाएं और फूलों की सुगंध सब मिलकर मन को एक शांत, स्थिर और प्रसन्न ऊर्जा देते हैं। तो श्रोताओं, अगली बार जब आप अमलतास को खिला हुआ देखें तो उसे केवल एक सुंदर वृक्ष के रूप में न देखें, उसकी छाया में खड़े होकर उस ज्ञान और शक्ति को महसूस करें जो हमारे पूर्वजों ने हमें प्रकृति के इन उपहारों के माध्यम से दिया है। अमलतास हमें सिखाता है कि सादगी में भी औषधीयता हो सकती है और सुंदरता केवल देखने भर की चीज नहीं बल्कि शरीर और मन को भी पोषण देने वाली हो सकती है। आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक प्रकृति के साथ जुड़े रहें, पेड़ों से सीखें और अमलतास जैसे साधारण लेकिन प्रभावशाली वृक्षों को अपने जीवन में स्थान दें। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: अभी आप अमलतास के स्वास्थ्य लाभ इस विषय पर नीना सोनकर द्वारा दी गई ये जानकारी सुन रहे थे। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी लखनऊ आज जिन कार्यक्रमों को आपके लिए ला रहा है उनके बारे में आपको जानकारी दे दें। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत रात 8 बजे डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिपाठी की वार्ता होगी, राष्ट्रीय अस्मिता और भारतीय भाषाएं। उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर समात फरमाइएगा। आकाशवाणी लखनऊ मरकज की पेशकश सुनेगा अफसाना। मौजू है दुनिया के नक्शे में आदमी। अफसाना निगार हैं शाहिद अख्तर। इसके बाद कलामी शहर के तहत आप सुनेंगे शगुफ्ता अंजुम से उनका कलाम। जिले के अलचल कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर आज कुशीनगर और गोरखपुर जिलों की हलचल प्रसारित होगी। सुबह 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आज का विषय है बचे साइबर क्राइम से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर और रात 10:30 पर देवानंद पाठक का वायलिन वादन प्रसारित होगा। दिन में 1:15 पर घरांगन कार्यक्रम में रंजना यादव की वार्ता बहने सुनेंगी, कंप्यूटर साक्षरता आज की आवश्यकता। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर धान का नर्सरी प्रबंधन विषय पर डॉक्टर चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव से की गई भेंट वार्ता किसान भाई सुनेंगे। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। युवा साथी युवा तरंग कार्यक्रम सुनते हैं शाम 5:10 पर। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर हुनर में व्यवसायिक कौशल संकट चुनौतियां और प्रयास ओबी पर आधारित कार्यक्रम सुनिएगा। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में

सतत विकास लक्ष्य और ग्रामीण बदलाव डॉक्टर हरिश्चंद की ये वार्ता आप सुनेंगे। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर खरीफ सब्जियों की अगेती खेती विषय पर डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा से की गई भेंट वार्ता किसान भाई सुनेंगे। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।

शाम 7:31 पर खेल जगत कार्यक्रम का प्रसारण होगा। सुगम संगीत कार्यक्रम में 8:10 पर जगजीत सिंह की गायी गजलें पेश की जाएंगी। पत्र व ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद श्रोता सुनेंगे 9:30 पर। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में 9:50 पर और लोक माधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर विजय लक्ष्मी के गाए भोजपुरी लोकगीत आपको सुनवाए जाएंगे। श्रोताओं के पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत जरूर सुनिएगा 8:45 पर। फिल्म संगीत का फोन इन इंटरेक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सुनना न भूलिएगा 11:00 से। इसके अलावा समय समय पर प्रायोजित कार्यक्रम और चित्रपट से कार्यक्रम का प्रसारण होगा। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ और कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा।

विविध रंगों को समेटे कार्यक्रम विविधा में मैं अंजलि श्रीवास्तव आपको नमस्कार करती हूँ। कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है बचे साइबर क्राइम से।

0: आज का दौर तकनीक का दौर है, एक ऐसा समय जहां हमारी सुबह मोबाइल की स्क्रीन से शुरू होती है और रात भी उसी के साथ खत्म होती है। बैंकिंग, पढ़ाई, खरीदारी, मनोरंजन सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन इस सुविधा के साथ एक अदृश्य खतरा भी लगातार बढ़ रहा है, साइबर क्राइम। यह एक ऐसा अपराध है जो न दिखता है न सुनाई देता है, लेकिन एक पल में हमारी पहचान, हमारी मेहनत की कमाई और हमारी निजता को नुकसान पहुंचा सकता है। साइबर क्राइम का जाल इतना व्यापक हो चुका है कि गांव से लेकर शहर तक, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, हर कोई इसकी चपेट में आ सकता है। इसीलिए आज के समय में साइबर सुरक्षा केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्यता बन चुकी है।
1: हेलो
2: हेलो,
1: आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है, यदि खुलवाना चाहते हैं तो मोबाइल पे भेजा गया ओटीपी बताएं।
2: ओटीपी? बैंक तो ओटीपी नहीं मांगता, लगता है ये फ्रॉड है।

यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो साइबर अपराधियों के तरीके दिन ब दिन और भी चतुर होते जा रहे हैं। खबरदार होशियार सोच।

देना, स्मिशिंग यानी फर्जी मैसेज भेजना, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए लोग ठगे जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आपको एक मैसेज मिलता है कि आपका बैंक खाता बंद होने वाला है, तुरंत इस लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं और अपनी जानकारी भरते हैं, वैसे ही आपकी सारी जानकारी साइबर अपराधियों के पास पहुँच जाती है। कुछ ही मिनटों में आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। खेल में

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फैसले का स्वागत, कहा समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा यह निर्णय। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों से ईंधन बचत और अनावश्यक सोने की खरीद न करने के प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में भी ऊर्जा संरक्षण पर दिया जोर, कहा ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। और प्रदेश में आंधी पानी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत, प्रभावित लोगों की मदद करेगी सरकार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
4: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
3: श्री वैष्णव ने बताया कि अब ग्रेड ए धान के लिए 2,461 रुपए प्रति कुंतल, सामान्य धान के लिए 2,441 रुपए प्रति कुंतल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति कुंतल

0: बाजरा के लिए 2,900 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का के लिए 2,410 रुपये प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपये प्रति क्विंटल तथा मूंग के लिए 8,780 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के एमएसपी बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह निर्णय अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने व कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहन देने के साथ साथ समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा। खरीफ फसलों की एमएसपी वृद्धि पर प्रदेश के किसानों ने खुशी जताई है। वाराणसी के किसान दुर्गेश ने बताया कि इससे किसानों को फायदा होगा।
1: जो केंद्र सरकार ने हम जैसे किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है, ये एक तरह से अगर कहा जाए तो ये बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि जिस तरह से समर्थन मूल्य जो घट रहा था, हम किसानों को बड़ा ही घाटा हो रहा था, लेकिन एमएसपी बढ़ने के साथ साथ हम लोगों की आय में भी दुगुना होगी और इस सरकार के फैसले को हम बहुत ही सराहना पूर्वक उन्हें धन्यवाद देते हैं।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद न करें। उन्होंने 12 मई की शाम को एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों आदि की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी की जाए। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित अध्ययन भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। यह फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मितव्ययिता, ऊर्जा संरक्षण और उत्तरदायी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। मुख्यमंत्री ने सचिवालय एवं निदेशालयों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने, प्राकृतिक प्रकाश के अधिकतम उपयोग तथा आवश्यकता आधारित विद्युत उपभोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर में अंचल के पहले और प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए वहां के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ कल परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
3: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में तेजी लाने और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से आकार लेगा। निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 63.39 करोड़ रुपए जारी हो चुके।

0: रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कल कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। विद्यार्थी रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है। संशोधित दरें आज से पूरे देश में लागू हो रही हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश, धूल भरी आंधी और बिजली गिरने से 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: सबसे ज्यादा मौतें भदोही जिले में हुई हैं, जहां 15 लोगों की जान चली गई, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हुई है। ज्यादातर मौतें बिजली गिरने, दीवार गिरने और धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि के कारण लोगों और वाहनों पर पेड़ गिरने से हुई है। कल राज्य के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल गया और विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे उखड़ने और पेड़ उखड़ जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों में प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में 16 और 17 मई को लू चलने की संभावना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फैसले का स्वागत, कहा समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा यह निर्णय। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों से ईंधन बचत और अनावश्यक सोने की खरीद न करने के प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में भी ऊर्जा संरक्षण पर दिया जोर, कहा ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। और प्रदेश में आंधी पानी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत, प्रभावित लोगों की मदद करेगी सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
5: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
6: मीडियम वे पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। नमस्कार। लखनऊ में अब समय है शास्त्रीय संगीत का। आज सुनी देवानंद पाठक का वायलिन पर बजाया राग भूपेश्वरी और राग तोड़ी। पहले हम आपको सुनवा रहे हैं देवानंद पाठक का वायलिन पर बजाया राग भूपेश्वरी। तबले पर संगत शुभम वर्मा ने की है।

अभी आप देवानंद पाठक का राग भूपेश्वरी में वायलिन वादन सुन रहे थे और अब हम आपको सुनवा रहे हैं देवानंद पाठक का ही वायलिन पर बजाया राग तोड़ी, मध्यलय एक ताल और तीन ताल में निबद्ध है।

अभी आप देवानंद पाठक का रागतोड़ी में वायलिन वादन सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे शुभम वर्मा। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। इसी के साथ नमस्कार लखनऊ कार्यक्रम भी यहीं समाप्त हो रहा है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है।
1: देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। 20 विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं।

0: इनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
1: MMTPA LNG टू इंडिया।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
3: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
3: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
5: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुँचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्य सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
8: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
3: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
9: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है।

0: प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
2: अमरीकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमरीका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराइकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक

0: सुर्खी दी है। सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, चार और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार, ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार, दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। 2-day मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स टू बिगिन इन न्यू दिल्ली टुडे। असम गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इन स्टेट असेंबली ऑन 26th ऑफ दिस मंथ। India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grains and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. And now the news in detail. A 2-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister S. Jayashankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Global leaders have arrived in the national capital ahead of the BRICS foreign ministers meeting. The leaders who arrived here yesterday include Foreign Minister of Iran, Sayed Abbas Araghchi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand, Sihasak Phuangkhetkyo, Foreign Minister of Cuba, Bruno Rodriguez Perella, and Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Nguyen Minh Hang. Other leaders who arrived were Foreign Minister of Malaysia, Dato Seri Utama Muhammad bin Haji Hassan, and UAE's Minister of State, Ministry of Foreign Affairs, Khalifa Shaheen Al-Marar. A report.
3: During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. The BRICS foreign ministers held their last meeting on the margins of 80th session of the United Nations General Assembly on 26 September 2025. The meeting was chaired by India in its capacity as the incoming BRICS chair for 2026. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr.

0: today. Indian ships given priority pass in Strait of Hormuz, says Iran Deputy Foreign Minister, writes the Pioneer. US President Donald Trump given a red carpet welcome in China. The Asian Age carries his picture during the welcome ceremony. The paper headlines, Trump in China on three-day visit to hold Xi talk on Iran war and trade. The Times of India writes, dealmaker and dragon, Trump seeks to do business with Beijing. The Hindu, in its editorial title, Testing Troubles, writes that leaks and breaches have destroyed the National Testing Agency's credibility. The K. Radhakrishnan Committee, which was constituted to recommend reforms in the examination process, recommended restructuring of the NTA and creating strong institutional linkages with state and district authorities in order to produce a secure test administration apparatus. And finally, the Times of India writes, in a rare and emotional moment during proceedings linked to passive euthanasia, the Supreme Court praised the family of Harish Rana for donating his corneas and heart valve after permission was granted to withdraw life support, observing that his life continues in others through the noble act. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Two-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grain and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and NewsOnAir app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खबरें। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की दो रोज़ा मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड मुतारिफ कराएगी। भारत ने घरेलू कीमतों में कमी लाने के मकसद से सितंबर तक शक्कर की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती हमलों नकल पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। शदीद बारिश और धूल भरी आंधी से उत्तर प्रदेश में अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है। सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी की गई है। और आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने नवी आईपीएल सेंचुरी लगाई, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की मीटिंग से कबल आलिमी रहनुमा कौमी राजधानी पहुंच गए हैं। यहां कल जो रहनुमा पहुंचे, उनमें ईरान के वजीर खारिजा सैयद अब्बास अराखची, थाईलैंड के नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा सिहासक फुआंग केट केओ, क्यूबा के वजीर खारिजा ब्रूनो रोड्रिगेस पारिल्ला और वियतनाम की नायब वजीर खारिजा गुयेन मिन हांग शामिल हैं। दीगर रहनुमाओं में मलेशिया के वजीर खारिजा दातो सेरी उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन और मुत्तहदा अरब अमारात के उमूर खारिजा के वजीर मुमलिकत खलीफा शाहीन अल मिरार भी शामिल हैं। तफसील हमारे नामानिकार से।
3: इजलास के दौरान ब्रिक्स रुकन मुल्कों के वज़राए खारजा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के रुकन और शराकतदार ममालिक एक इजलास में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू ब्रिक्स एट द रेट 20 इस्तेहकाम इख्तरा ताउन और पायदारी होगा। इसके बाद आलमी हुक्मरानी और कसीर जहती निज़ाम में असलाहत के मौजू पर एक और इजलास मुनक़िद होगा। ब्रिक्स वज़राए खारजा की पिछली मीटिंग 26 सितंबर 2025 को अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर हुई थी। इस मीटिंग की सदारत भारत ने की थी। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
2: आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड यूसीसी बिल पेश करेगी। वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा ने अपनी दूसरी मुद्दतकार की पहली काबीना मीटिंग की सदारत करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसका ऐलान किया। जनाब सरमा ने कहा कि आसाम

0: असेंबली का एक खसूसी इजलास 21 से 26 मई तक मुनाकिद होगा, जिसके दौरान 9 मुंतखब अरकान असेंबली हलफ लेंगे। उन्होंने कहा कि मुजव्वजा कानून साजी का मकसद शादी की कानूनी उम्र, एक से ज्यादा शादी, विरासत और बगैर शादी के साथ रहने जैसे मसाइल को हल करना है। उन्होंने वाजे किया कि मजहबी रसूमात और मजहबी मामलात इस बिल के दायरा कार से बाहर रहेंगे। इस इख्तिताम के साथ आसाम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद यकसां सिविल कोड बिल पेश करने वाली तीसरी रियासत बनने जा रही है। हुकूमत ने चीनी की बरामदात पर फौरी तौर पर सितंबर 2026 तक या मजीद अहकाम जारी होने तक पाबंदी आयद कर दी है, जिसमें खाम चीनी, सफ़ेद चीनी और रिफाइंड चीनी शामिल है। एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर मुल्की तिजारत के डायरेक्टरेट जनरल ने बरामदी पॉलिसी को महदूद के जुमरे से ममनू के जुमरे में तब्दील कर दिया है। ताहम ये पाबंदी CXL और TRQ कोटा और एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम के तहत यूरोपीय यूनियन और अमरीका को बरामद होने वाली चीनी पर नाफिज नहीं होगी, ताकि दीगर ममालिक की खुराक की यकीनी फराहमी से मुतालिक ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। वो खेप जो बरामद के लिए फिजिकल पाइपलाइन में है, उन्हें इस पाबंदी से मुस्तस्ना रखा गया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर ज़रूरी अशिया की बैन रियासती नकलो हरकत पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। ये पाबंदियां साबिका TMC हुकूमत की जानिब से आयद की गई थीं। दूसरी जानिब एक अहम पेशरफ्त के तौर पर मगरबी बंगाल हुकूमत ने असातिज़ा के तकर्रुरात, म्यूनिसिपल तकर्रुरात और इमदाद बाहमी खिदमात तकर्रुरात घपलों से मुतालिक मामलों को CBI के सुपुर्द करने का फैसला किया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने उन सभी अफराद की खिदमात को ख़त्म कर दिया है, जिनका सबुकदोशी के बाद TMC हुकूमत की जानिब से दोबारा तकर्रुर किया गया था। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: किसानों और ताजिरों को बड़ी राहत देते हुए मगरबी बंगाल हुकूमत ने ज़रई अशिया की दीगर रियासतों में बरामदात पर आयद पाबंदियों को हटा लिया है। ज़रई मार्केटिंग के महकमे की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक आलू, प्याज, सब्जियां, फल, गजाई अजनास और तिलहन की अब रियासती सरहदों के पार बिला रुकावट हमलों नकल की जा सकती है। ज़िला इंतजामिया, पुलिस और ट्रांसपोर्ट हुकाम को इस हुक्मनामे के नफाज को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कल नबन्ना में बताया कि इस फैसले से छोटे और हाशिया बरदार किसानों और ताजिरों को फ़ायदा पहुंचेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों को अब उनकी पैदावार का वाजिब दाम मिलेगा। वज़ीर आला ने यह भी इंतबाह दिया कि ज़रई अशिया से लदी गाड़ियों को अगर बैन रियासती सरहदों पर गैर ज़रूरी तौर पर रोका गया या हिरासा किया गया तो अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से ज़रई बरामदात में आसानी पैदा होने और मगरबी बंगाल के किसानों और ताजिरों को पेश आ रही मुश्किलात में कमी आने का इम्कान है। कोलकाता से संदीप पौन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: हुकूमत ने मरकजी जांच ब्यूरो CBI के डायरेक्टर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी की है। अमले और तरबियत के महकमे की जानिब से जारी किए गए सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक काबीना की तकर्रुरात से मुतालिक कमेटी ने जनाब सूद की मुद्दत कार को जांच एजेंसी के डायरेक्टर के तौर पर इस महीने की 24 तारीख से आगे तौसी देने को मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल अबू ज़हबी का दौरा करेंगे, जो उनके 5 मुल्कों के दौरे का पहला मरहला होगा। इस दौरे के दौरान वो मुत्तहिदा अरब अमारात, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। वज़ीर आज़म का ये दौरा जुमे से इस महीने की 20 तारीख तक जारी रहेगा। वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने बताया कि 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद अन्नहयान से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमा दोतरफा उमूर, खासतौर पर तवानाई के शोबे में तआवुन और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। ये जनाब मोदी और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अन्नहयान की सिर्फ 5 महीनों में दूसरी बिलमुशाफा मुलाकात होगी। तवक्को है कि दोनों ममालिक कल जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद आगे बढ़ाएंगे, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम 40 लाख से ज्यादा भारतीयों की फलाह व बहबूद भी इस बातचीत के एजेंडा में शामिल होगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात खित्ते की अहम तरीन तवानाई शराकत दारी रखते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात इस वक्त भारत को खाम तेल फराहम करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है, जो मुल्क की कुल ज़रूरत का तकरीबन 11% पूरा करता है। रकीक कुदरती गैस के मामले में भारतीय कंपनियों ने अबूजबी की ADNOC गैस के साथ तवील मुद्दती सप्लाई मुआहदे किए हैं, जिनकी मजमू मकदार 4.5 मिलियन टन है।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत, और इस कार्यक्रम में मैं अंजलि श्रीवास्तव आज आपके साथ हूँ। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम आपको इस कार्यक्रम का ईमेल एड्रेस बता देते हैं, आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। आप इस ईमेल एड्रेस पर हमें मेल भेजिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत।

हमारे पास पहला मेल है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का। आप सुनना चाहते हैं लोफर फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और इसी गीत को सुनने के लिए हमारे पास एक और मेल है हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराज जहाँ की, और छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश का। तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जनपद हरदोई से विजयलक्ष्मी कुशवाहा आप सुनना चाहती हैं। खिलाफ फिल्म का गीत अलका याग्निक और मनहर उदास की आवाजों में, और इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने। तो आपकी पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं आपका ये गीत।

0: आकाशवाणी लखनऊ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे,
5: आइडिया यही करते हैं पार्टी,
4: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
4: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, हमारे पास मेल आया है कानपुर देहात से। रामेश्वर कठेरिया, उमाकांती कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्र वधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया और समस्त कठेरिया परिवार। और एक मेल है हमारे पास जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र चौंसलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चौंसलिया का। आप सभी सुनना चाहते हैं बाजी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
2: और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम।
3: पर दादी आपके नाम
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
3: क्या
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
7: अगला गीत सुनने के लिए मेल हमारे पास भेजा है जिला बरेली से शहरुन अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और टीजे प्रधान। और एक और मेल हमारे पास है हमीरपुर बुंदेलखंड से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्याशी विश्वकर्मा का। आप सभी सुनना चाहते हैं दो रास्ते फिल्म का गीत।

अमर अकबर एंथोनी फिल्म का इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास मेल भेजा है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने, पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव ज्योति रानी गुरमंत कौर मनु आप सभी सुनना चाहते हैं ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत अब यहीं समाप्त हो रहा है। दीजिए इस कार्यक्रम से अंजलि श्रीवास्तव को अनुमति। नमस्कार। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए कुशीनगर और गोरखपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कुशीनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विवेक पांडे का।
2: भगवान बुद्ध की मां पर निर्माण स्थली कुशीनगर में त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम म्यांमार बौद्ध विहार में आयोजित किया गया, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित भारत में म्यांमार के राजदूत ऊ जाव ऊ तथा अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही विश्व में शांति संभव है। भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध का संदेश दिया है।
3: भगवान तथागत बुद्ध का सर्वकालिक महत्व है, आज भी है, कल भी था और आने वाले कल में भी रहेगा। और संसार के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र संघ से देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने संसार को भगवान तथागत बुद्ध दिया है, हमने युद्ध नहीं दिया है, हमने शांति दिया है।
2: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूरी दुनिया के लिए भगवान बुद्ध का संदेश आज भी प्रासंगिक है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर में विभिन्न बौद्ध विहारों के बौद्ध भिक्षुओं और स्थानीय लोगों ने आकर्षक शोभा यात्रा निकाली, जो नगर का परिभ्रमण कर माथा कुंवर स्तूप पर आकर संपन्न हुई। जनपद कुशीनगर में नगर पंचायत फाजिलनगर के अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन हेतु मतदान एवं मतगणना भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गयी। अध्यक्ष पद के लिए हुए इस उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्रीमती सुनीता शाही ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के अवधेश सिंह को 713 मतों से पराजित किया। यह सीट उनके पति शत्रुमर्दन प्रताप शाही के निधन के कारण रिक्त हुई थी, जिस पर भाजपा ने उनकी पत्नी सुनीता शाही को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया था। कुशीनगर जिले में मतगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के अंतर्गत स्वगणना की प्रक्रिया विगत 7 मई से शुरू हो गई है, जो 21 मई 2026 तक चलेगी। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने जनपद वासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में स्वगणना प्रक्रिया में सहभागिता करें तथा अपने परिवार, पड़ोस एवं परिचितों को भी इसके लिए प्रेरित करें। साथ ही प्रगणक एवं जनगणना कर्मियों का सम्मान करते हुए उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
4: पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है, जिसमें आप सभी की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और जन सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया 7 मई 2026 से लेकर 21 मई 2026 तक संचालित की जाएगी। मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण कार्य में अपनी भागीदारी आप सुनिश्चित करें।
2: कुशीनगर जिले के पूर्व विधायक डॉक्टर वीके मिश्र का विगत 6 मई को निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे और कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। स्वर्गीय मिश्र कुशीनगर जिले की पडरौना विधानसभा सीट से सन 1980 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए थे। बाद में वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ पडरौना के खिड़किया शमशान घाट पर किया गया, जहाँ भारी संख्या में लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी।
1: कुशीनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गिरीश नारायण चौबे का।
5: सार्वजनिक सड़क पर

0: परिवहन के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर विशेष जोर दे रही है। शहर के अंदर एक सीमित दूरी तक के लिए ई बसों के संचालन की कामयाबी के बाद अब उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम यूपी रोडवेज ने मध्यम और लंबी दूरी के लिए ई बसों के संचालन की कार्य योजना बनाई है। इस कार्य योजना के तहत गोरखपुर के दो प्रमुख स्टेशनों से 20 नई इलेक्ट्रिक बसें अयोध्या बनारस सुनौली सहित अलग अलग महत्वपूर्ण मार्गों पर दौड़ेगी। रोडवेज ने गोरखपुर से विभिन्न रूटों के लिए ई बसों का ट्रायल कर दिया है। यूपी रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह के अनुसार 9 बसें वाराणसी और 3 बसें अयोध्या के लिए चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बस के संचालन के लिए राप्ती नगर में हाईटेक चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। ट्रायल के बाद अब रोडवेज अगले 10 दिनों में बसों के विधिवत संचालन की समय सारणी भी जारी कर देगा। ईंधन की बचत होने के कारण परिवहन निगम इसका लाभ यात्रियों को कम किराए के रूप में देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तारामंडल क्षेत्र में वाटर बॉडी पर बने 2-लेन ब्रिज का लोकार्पण फीता काटकर जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तेजी से आगे बढ़ते देश प्रदेश के साथ ही गोरखपुर भी तीव्र प्रगति कर रहा है। 2017 के बाद गोरखपुर में विकास की विस्तृत श्रृंखला तैयार हुई है। विकास से बढ़ी सुविधाओं का लाभ लंबे समय तक प्राप्त होता रहे, इसके लिए नागरिकों को भी विकास कार्यों के संरक्षण की जिम्मेदारी उठानी होगी। सीएम ने कहा कि वर्तमान में 50,000 से अधिक नौजवानों को अकेले गोरखपुर के गीडा में उद्योगों के माध्यम से नौकरी और रोजगार प्राप्त हुआ है। गोरखपुर में चारों ओर 4-लेन 6-लेन की कनेक्टिविटी है। यहाँ एम्स बन गया है। खाद कारखाना और पिपराइच में चीनी मिल फिर से चल रही है। उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान आयुष विश्वविद्यालय चिड़ियाघर बेहतरीन पर्यटन स्थल रामगढ़ताल कई होटल सहित अनेक सुविधाओं का यहाँ विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि वाटर बॉडी पर 2-लेन ब्रिज बनने से इस समूचे क्षेत्र में इंटरनल कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी। सीएम ने GDA के अफसरों से कहा कि वाटर बॉडी को रामगढ़ताल के समकक्ष जोड़ने का प्रयास करें। उन्होंने स्वच्छता और सुंदरता को लेकर मोहल्ले स्तर पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि
1: गीडा में जो उद्योग लगे हैं उन उद्योगों के माध्यम से नौकरी मिली है या रोजगार की सुविधा अकेले गीडा में प्राप्त हुई है। ये गोरखपुर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को प्राप्त हुआ है। फर्टिलाइजर अलग है, एम्स अलग है, पिपराइच की चीनी मिल अलग है, आयुष विश्वविद्यालय अलग है, अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ अच्छे अच्छे होटल खुल रहे हैं, उन होटलों में अलग है। हर एक सेक्टर में कुछ न कुछ नया हुआ है।
0: पूरी दुनिया को योग का पाठ पढ़ाने वाले योग गुरु परमहंस योगानंद के गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी की जयंती 10 मई रविवार को उनके अनुयायियों की ओर से धूमधाम से मनाई गई। योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से कार्यक्रम का आयोजन राजेंद्र नगर स्थित ध्यान केंद्र पर किया गया। अनुयायियों ने सबसे पहले गुरु के भजन गाए और फिर पुष्पांजलि आरती कर गुरु को याद किया। गुरु युक्तेश्वर गिरी से लोक कल्याण की कामना की। इस दौरान पूरा परिसर गुरु की भक्ति में सराबोर दिखाई दिया। गोरखपुर जिले में ज्येष्ठ मास का दूसरा बड़ा मंगल 12 मई को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शहर के बेतिया हाता मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, तारामंडल स्थित बालाजी मंदिर के साथ विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना कर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बड़े ही आस्था भाव के साथ बजरंग बली का प्रसाद ग्रहण किया।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
3: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
4: तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया।
3: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी।

0: नहीं सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।

0: आज की उर्दू बज्म लेकर मैं आपका मेजबान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब, कबूल फरमाएं। सामीन, उर्दू अदब में अफसाने की अहमियत एक मुसल्लम हकीकत है। अफसाना उर्दू नसर की एक अहम और मकबूल सिंफ है, जिसने न सिर्फ अदब को वसत बख्शी है बल्कि मुआशरती, अखलाकी और नफसियाती मसाइल को भी बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया है। सामीन, अफसाना मुख्तसर होने के बावजूद अपने अंदर एक मुकम्मल जिंदगी समय हुए होता है, जिसमें इंसानी जज्बात, एहसासात और तजर्बात की भरपूर अक्कासी की जाती है। यही वजह है कि अफसाना निगारी ने उर्दू अदब को नई जिहत अता की है। इब्तिदा में दास्तान और नावल का रिवाज ज्यादा था, लेकिन वक्त के साथ साथ अफसाना अपनी सादगी, इख्तिसार और असर अंगेजी की वजह से मकबूल तरीन सिन्फ में शुमार हुआ। दोस्तों, अफसाना अपने सामे और कारी को कम वक्त में ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी भी है। मजीद ये कि अफसाना इंसानी नफसियात की अक्कासी का एक बेहतरीन जरिया है। इसमें किरदारों के अंदरूनी एहसासात, कश्मकश और जज्बात को बहुत ही बारीकी से बयान किया जाता है, जो अपने सुनने और पढ़ने वालों के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ता है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि उर्दू अदब में अफसाना एक अहम और मुअस्सिर सिन्फ है, जो न सिर्फ अदबी हुस्न रखती है बल्कि मुआशरती इसलाह का भी जरिया है। इसकी मकबूलियत और इफादियत ने इसे उर्दू अदब का एक लाजमी जुज बना दिया है। इसी के पेश नज़र आज हमने अहतमाम किया है एक अफसाने का, मौजू है दुनिया के नक्शे में आदमी। अफसाना निगार हैं जनाब शाहिद अख्तर साहब।
1: वो जाने कब से जाग रहा है, उसे नहीं मालूम था। आंखों के सामने जिस तरह उसका बाप बेखबर और गहरी नींद सो रहा था, ऐसी नींद तो वो कभी नहीं सो पाया, जबकि वो तो अभी बहुत छोटा था। देसी शराब के भपकों के साथ जोरदार, बल्कि डरा देने की हद तक खर्राटों की बेहंगम आवाज़ें उसके कानों में पड़ रही थीं। मुजीब अक्सर सोते में खौफ की वजह से उठ जाता। उसे लगता कि अब्बा अभी उठकर उस पर हमला कर देगा। ये खौफ उस पर हमा वक्त तारी रहता। माँ और खुद पर तशद्दुद की वजह से मुजीब को अपने बाप से नफरत थी, मगर वो अभी इतना छोटा था कि चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। मुजीब दो भाई और तीन बहनों में सबसे बड़ा था। अब के मुहर्रम में वो 15 का हो जाएगा, ऐसा माँ उसे बताती थी। कुछ वक्त से मुजीब को लगने लगा था कि वो इस घर के लिए तो पैदा नहीं हुआ। उसके जहन में पढ़ाई का कीड़ा रेंग रहा था। स्कूल, कॉपी, किताबें भी तो कोई चीज होती हैं। इन नामों से नावाकिफ तो शायद वो भी रहता, मगर अक्सर माँ उसे अपने साथ काम पर ले जाती कि वो अपने बाप के अताप से बचा रहे। मुजीब की माँ दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा और ठीकरे के साफ करने का काम करती थी। साथ में जाने की वजह से मालिकों के बच्चों के पास स्कूली बस्ते और कॉपी किताबें देखकर उसके अंदर भी पढ़ने की ख्वाहिश बेदार हो गई। एक दिन ये बात उसके बाप

के कानों तक भी पहुंच गई और बस वो हत्थे से उखड़ गया। मारते वक्त उसकी जबान से यही जुमला निकल रहा था कि तेरे भेजे में पढ़ने की बात किसने डाली है। वो चाह रहा था कि एक बार ये माँ का नाम ले ले तो उसे पिटाई का बहाना मिल जाए, हालांकि ये सच नहीं था। और अगर वाकई में माँ ने तालीम के लिए रगबत दिलाई भी होती तो वो अम्मी का नाम तो कभी नहीं लेता। मुजीब को इस बात पर अलबत्ता हैरानी हुई कि अब्बा को पढ़ाई से इतनी चिढ़ क्यों है। कितनी बार वो मुजीब की कॉपी किताबें फाड़ चुका है, मुजीब के हौसले उसके बाद भी पस्त नहीं हुए। हर बार नए अज़्म के साथ वो घंटों लगाकर किताबें फिर से जोड़ देता और उसके बाद मुजीब को जो खुशी मिलती वो कोई दूसरा महसूस नहीं कर सकता। किताब की कदर और कीमत घर में मुजीब के अलावा कोई जानता भी नहीं, और वो माँ अपने मालिकान से भीख की तरह मांग कर लाते और बाप इस तरह फाड़ कर फेंक देता। वर्क से वर्क मिलाना और तमाम सफात के टुकड़े सलीके से जोड़ देना, फिर इस डर और एहतियात से कहीं छुपाना कि अब्बा के हाथ न लगे। एक कमजोर सी अम्मी जिसकी दस्तरस में कुछ भी नहीं था, तालीम की अहमियत से वो भी वाकिफ नहीं थी, मगर वो मुजीब की राह का रोड़ा नहीं बन रही थी। उसके अंदर ये ख्वाहिश पर अपने लगी थी कि पढ़ लिख कर कहीं बाबू साहब जैसा बन जाए तो उसके दलिद्र दूर हो जाएं। इस एहसास के साथ चेहरे पर चमक सी आ जाती, उसकी खुशियों में बहुत इजाफा हो जाता। बहुत जल्द वो वक्त आ गया जब वो रवानी से पढ़ने और इमला लिखने भी लगा। अपनी इर्तका के बारे में वो माँ को बताता रहा। अम्मी को आंखों में कुछ ख्वाबों के अक्स तैरते दिखाई देने लगे। बच्चों को पालने में अम्मी जिस अजियत से गुजर रही थी मुजीब को बखूबी अंदाजा था। वो अपनी माँ की हिम्मत अफजाई करता रहा, जल्द ही इस मुश्किल से जिंदगी से छुटकारा दिलवा देगा। कमरे में 2 घंटे से मुजीब अब्बा के खर्राटे मुसलसल सुन रहा था। माँ इतना थक जाती है कि पढ़ने के बाद उसे कुछ होश ही ना रहता। इतनी गुर्बत थी कि वो कुछ भी खरीदने के लिए सोचते रहते। अम्मी को किसी ने नई रजाई दी थी जो उन्होंने मुजीब के हवाले कर दी। बहुत शदीद ठंड पड़ रही थी, इस नई रजाई में उसके 2 भाई और 1 बहन भी आसानी से सो जाते थे। माँ काम करने वाले घरों से खाने की चीजों के अलावा कुछ और दीगर अशिया भी लेकर आती। ये सब उसके बच्चों के लिए खुश होने के बहाने बन जाते। 2 दिन पहले मुजीब के नाप की एक जैकेट ले आई थी जिसे वो सोते वक्त भी नहीं उतारता कि मुबादा कहीं गायब ना हो जाए। 2 दिन से मुजीब के जहन में कुछ चल रहा था जिसकी वजह से वो कुछ फिक्रमंद था और अफसरदा भी। अगर कुछ बनना है तो उसे घर छोड़कर कहीं जाना होगा, वरना यहाँ उसका कोई ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सकेगा। लेकिन अम्मी और छोटे भाई बहनों को छोड़कर जाना क्या उसके लिए मुमकिन है? वो इसी बात को लेकर तजब्जुब में था। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचा कि शहर से बाहर जाने से पहले 1 दिन के लिए घर से गायब होकर देखे आगे क्या करना है। ये 1 दिन की फरारी के रद्द अमल के बाद तय किया जाएगा। निसफ रात गुजर चुकी थी। मुजीब ने लिहाफ से सर बाहर निकाला। घर में घड़ी या मोबाइल नहीं था कि वक्त का अंदाजा लगाया जा सके। ये तो उसे मालूम था कि उसका वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। मुजीब बहुत एहतियात और खामोशी से उठा। डब्बे में कुछ पैसे पड़े हुए थे, उसने अपनी जेब के हवाले किए। फूंक फूंक कर कदम रखना इसी को कहते हैं। बहुत आहिस्तगी से कुंडी खोली और बाहर निकलकर दरवाजे बंद किए और गली में आते ही कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। चलते वक्त अब्बा का मफलर भी उठा लाया था। लैंप पोस्ट की रोशनी छन कर गली के नुक्कड़ तक आ रही थी। पीछे वाली गली से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। जल्दी उसे सवारी मिल गई जो स्टेशन जा रही थी। हालांकि मुजीब ने यह तय नहीं किया था कि उसे जाना कहां है। फिलहाल उसे यहां से निकलना था और इस वक्त स्टेशन पर रोशनी और भीड़ भाड़ होगी। वहां पहुंचकर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। सन्नाटे की वजह से 10 मिनट में वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। वहां की चकाचौंध और शोर शराबे में वो खो सा गया। उसे ये आजादी बहुत अच्छी लग रही थी। वो प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर बैठ गया और ये तमाशा देखने लगा। काफी देर बाद उसका ध्यान घर की तरफ गया। अभी तो सब सो ही रहे होंगे, वो सोच रहा था। उसके आने से सिर्फ अम्मी परेशान होंगी और भाई बहन भी, अब्बा को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अचानक हफ्ते भर पहले की गई अब्बा से बात उसे याद आ गई, जब उन्होंने पूछा था कि ये बता कि पढ़ाई का भूत क्यों सवार हुआ है, पढ़ लिख कर आखिर तू क्या करेगा, तेरे भेजे में चल क्या रहा है। चंद लम्हों तक वो अब्बा के सवालों पर गौर करता रहा, फिर बोला कि अगर सच में कुछ पढ़ लिख गया तो आपको 1 दिन हैरान कर दूंगा। ये क्या बात हुई, हैरान तो तू अभी भी किए हुए, उस दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा और गुस्सा भी खत्म हो जाएगा शायद। आखिरी लफ्ज होंठों में दबकर रह गया। एक आदमी उसके सामने अखबार का बंडल पटक गया जिससे उसके ख्यालों का तसलसल टूटा। 2 लोग आ गए और उन्होंने पैकेट खोलकर अखबार बेचना शुरू कर दिया। मुजीब ने सिक्का निकालकर उस आदमी की तरफ बढ़ाया। उसने मुजीब को ज्यादा गौर से देखा, फिर सिक्के की तरफ। पढ़ लेता है, उसने सवाल किया। हाँ, सुनाऊं? मुजीब की आवाज में बला का एतमाद था। उसके अंदर खुशी और फख्र के अनार फूट रहे थे। पूरा अखबार उसने वहीं बैठकर खत्म किया। एक नई सुबह उसके सामने थी। वो उठकर बाहर आ गया, 1 चाय और 2 बिस्किट लिए। इतनी देर में ये सोच लिया था कि अब कहाँ जाना है। वहां से जॉगर्स पार्क ज्यादा दूर नहीं थी, वो उसी तरफ निकल आया। 3 घंटे बाद वो पार्क से बाहर निकला तो बाहर दाईं तरफ एक आदमी

0: ड्राइवर किताबें रख कर बेच रहा था। ये कोई निसाब या अदब से मुतालिक कुतुब नहीं थी बल्कि बच्चों के लिए ड्राइंग और मालूमात में इजाफा करने वाली किताबें थीं। मुजीब एकदम ठहर गया, सरे वरक देख कर किताब के मौजू और मवाद पर गौर करता रहा। एक किताब आखिर उसने उठा ही ली, किताब के औराक उलट पुलट कर देखे, मुख्तलिफ सूबों और ममालिक के नक्शे वगैरह के साथ जुग्राफियाई और तारीखी मालूमात के हिसाब से ये किताब उसे बहुत अहम और दिलचस्प लगी। उसने कीमत दरियाफ्त की और अदा कर दी। इस किताब में उसकी पसंद की और भी खासी चीजें मौजूद थी। किताब खरीद कर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिरी सफ़े पर वर्ल्ड मैप यानी दुनिया का नक्शा मौजूद था। वो वहाँ से निकल कर टहलता भटकता रह कर अम्मी और भाई बहनों की याद भी सताती रही। वाही तवाही घूमते फिरते दिन गुजर गया। भूख लगी तो कुछ कच्चा पक्का खा लिया और फिर आगे सफर पर। शाम तक पैसे भी खत्म हो गए। किसी हद तक घर से जाने की ख्वाहिश भी पूरी हो गई थी। अंधेरा बढ़ने लगा था। अब घर की फिक्र भी बढ़ रही थी। उसे मालूम था कि अब्बा उसे बहुत बुरी तरह पीटेगा पिटाई करेगा, लेकिन एक दिन अपने तौर पर आजादी से गुजारने की खुशी के अवज थोड़ी सी मार खा लेना खसारे का सौदा नहीं था। किताब और अखबार मजबूती से पकड़े वो एक टेम्पो में बैठ गया और जरा ही देर में घर के करीब भी आ गया। आवाज देकर उसने टेम्पो को रुकवाया और फुर्ती से उधर का सामने वाली गली में दौड़ लगा दी। ड्राइवर जब तक मामला समझ पाता वो रूपोश हो गया। 10 रुपए के लिए अब वो क्या पीछे भागता, वो गाड़ी लेकर आगे चला गया। मुजीब घर में दाखिल हुआ तो अम्मा ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया और प्यार करने लगी। भाई बहन भी करीब आ गए। बाप जमीन पर बैठा उसे ही देख रहा था। मुजीब ने नजरें मिलाने से गुरेज किया। उसे मालूम था कि वहाँ नफरत और इखारत के सिवा और कुछ न होगा। माँ ने पूछा कि कहाँ और क्यों चला गया था। उसने तमाम दिन की तफसीलात अम्मी को बत सुना दी। बाप जो इतनी देर से बैठा सारा तमाशा देख रहा था, अब उसके उठने की बारी थी। वो जैसे ही उठा माँ मुजीब के सामने डट कर खड़ी हो गई। खबरदार, जो मज्जू को हाथ भी लगाया, मुझे जितना मारना है मार ले, मगर मुजीब पर अब हाथ नहीं उठाना, वरना इस बार घर से ही अकेला नहीं जाएगा। शौहर ने बीवी का ये रूप और तेवर पहले कभी नहीं देखा। उसका फौरी तौर पर असर भी हुआ और वो अपनी जगह जाकर फिर से बैठ गया। इस वाकये को गुजरे एक हफ्ता गुजर गया। एक दिन मुजीब वो नक्शे वाली किताब खोले बैठा हुआ था और दुनिया के नक्शे को देख कर दुनिया को समझने की अपने तौर पर कोशिश कर रहा था। उसका इरादा था कि वो इस नक्शे में अपने तौर पर रंग भर कर दीवार पर लगा देगा। ये ख्वाहिश पूरी होने से पहले अब्बा ने किताब छीन ली और उसके टुकड़े करके हवा में उछाल दिए। नशे की वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। अब्बा घर से बाहर निकल गया। इस बार मुजीब के आंसू खुश्क हो गए थे और ये जख्म उसकी रूह पर लगा था। किसी तरह उसने तमाम टुकड़े यकजा किए और फिर बड़ी तवज्जो और इनमाक से जोड़ने बैठ गया। रोते हुए उसकी हिचकियां बन गई थीं। अब्बा को क्या मालूम के कागज के इन टुकड़ों में मुजीब की जान बसी है। 15 मिनट बाद अब्बा घर वापस आ गया। वो जुड़ा हुआ नक्शा फिर से उसकी आंखों के सामने था। अब्बा का तो दिमाग घूम गया कि इतनी सी देर में ये कैसे जुड़ सकता है। इतने सारे टुकड़े बिल्कुल दुरुस्त तरीके से जोड़े गए थे, ये दूसरी किताब तो नहीं, उसने फौरन खुद से सवाल किया, लेकिन जोड़ सामने दिख रहे थे। अब्बा का नशा कमजोर पड़ गया मगर हैरानी और बढ़ गई थी। वो सोच रहा था कि इतने कम वक्त में तो ये काम मुमकिन नहीं। वो जाहिल और शराबी जरूर है मगर इतनी समझ तो रखता है। तूने ही जोड़ा है, उसने मुजीब से पूछा। मुजीब ने इस बात में गर्दन हिला दी। कैसे? अब्बा के सवाल पर हैरत और इस्तेजाब वाजे था। अब्बा, मैंने आपसे एक दिन कहा था कि मैं आपको हैरान कर दूंगा। हाँ, अब्बा की आंखों में तहय्युर बिदर आया। आज वही दिन है और ये कोई जादू वादू नहीं, कलाकारी भी नहीं। तो फिर? अब्बा की हैरत में तजस्सुस आ गया। मुजीब ने पहली बार उसकी आंखों में झांका, वहां नफरत या गुस्सा नहीं था। वो आगे बोला, अब्बा, इस कागज के दूसरे तरफ एक आदमी का फोटो है। मैंने बस उस आदमी को जोड़ा है। मुझे पता था कि आदमी ठीक हो गया तो ये दुनिया का नक्शा अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अब्बा की आंखें शायद इससे ज्यादा नहीं फैल सकती थी। पहली बार वो पूरे होशो हवास में था। मुजीब ने आज वाकई अब्बा को हैरान कर दिया था।
1: सामीन, अभी आप दुनिया के नक्शे में आदमी के उन्वान पर एक अफसाना समात फरमा रहे थे। अफसाना निगार थे जनाब शाहिद अख्तर साहब। और अब महफिल के माहौल को तब्दील करते हैं और कलाम शायर के तहत सुनवाते हैं मोहतरमा शगुफ्ता अंजुम साहिबा का ये उम्दा कलाम।
2: एक मतला एक शेर हाजिर करती हूँ

आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आइए इसमें आज सुनते हैं विजयलक्ष्मी के गाए भोजपुरी लोकगीत। इनके स्वर में सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं ये दादरा।

विजयलक्ष्मी के स्वर में अभी आपने सुना ये दादरा, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं खेमटा विजयलक्ष्मी के ही स्वर में।

0: विजयलक्ष्मी के स्वर में आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। संगत कर रहे थे नाल पर मुन्ना अनवर, हारमोनियम पर थे संतोष तिवारी, बांसुरी पर दिगंत सैंकिया और साइड रिदम पर थे शैलेंद्र सिंह। इसी के साथ लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग अब समाप्त हुआ।
1: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा

0: करिए। सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहें, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, महेंद्र कपूर की आवाज में। फिल्म है हमराज़।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लीजिए सुनिए साथ साथ फिल्म का गीत, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में।

फिल्म संगीत के बाकी नगमे हम आपको सुनवाएंगे सुबह 10:20 से। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं न्यूज़ बुलेटिन विश्व दर्पण हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत पेचिंग में जारी। और रूस ने शांति वार्ता के बीच यूक्रेन पर 800 ड्रोन दागे। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले वैश्विक नेता नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। इन नेताओं में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची, थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सिहासक फुआंग केटकेओ, क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज परिला और वियतनाम के उप विदेश मंत्री ग्वेन मिन हेंग शामिल हैं। इसके अलावा मलेशिया के विदेश मंत्री दातो सेरी उतामा, मोहम्मद बिन हाजी हसन और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार भी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में मालदीव की विदेश मंत्री इरुथिशम आदम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत और मालदीव के बीच मजबूत और विशेष साझेदारी की पुष्टि की। इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बैठक में भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को तेज करने, द्विपक्षीय निवेश संधि को आगे बढ़ाने और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार भुगतान को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने पर्यटन, डिजिटल भुगतान और व्यापारिक सहयोग को और मजबूत करने पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान

0: ऐलान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विश्व दर्पण समाचार के लिए चाहत सिंह।
1: सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय ने ये जानकारी दी। ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ और अमेरिका को CXL तथा TRQ कोटा, अग्रिम प्राधिकरण योजना और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेचिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ शिखर वार्ता शुरू कर दी है। इस महत्वपूर्ण बैठक के आरंभ में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे का सहयोगी होना चाहिए, प्रतिद्वंदी नहीं। शी जिनफिंग ने आशा व्यक्त की कि अमरीकी राष्ट्रपति के साथ बातचीत से आपसी मतभेद दूर होंगे और दोनों देशों के संबंध इस वर्ष नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। श्री ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति को महान नेता बताया। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक बेहतर होंगे।
2: I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. It's, I can say in the United States, it's people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
1: इससे पहले पेचिंग में श्री ट्रंप का शानदार स्वागत किया गया। श्री ट्रंप दो दिन की चीन यात्रा पर कल पेचिंग पहुंचे। इस यात्रा का मुख्य एजेंडा केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक भी है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कई बड़े कारोबारी और तकनीकी कंपनियों के प्रमुख भी चीन गए हैं। इनमें एलन मस्क, टिम कुक, लैरी फिंक और जेनसन हुआंग शामिल हैं। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेजगेथ भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ये उनकी पहली चीन यात्रा है। इससे पहले वे वर्ष 2017 में आधिकारिक दौरे पर चीन गए थे। रूस ने कल यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। इसका मुख्य निशाना नेटो सीमाओं के पास पश्चिमी इलाकों का महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा था।
3: इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और अनेक घायल हो गए। यूक्रेन ने बताया कि रूस ने करीब 800 ड्रोन दागे और बाद में मिसाइल हमले भी किए। सोशल मीडिया पोस्ट में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस हमले का समय कोई इत्तेफाक नहीं था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रूस ने यूक्रेन पर ऐसे समय बड़ा हमला किया जब अमरीकी राष्ट्रपति चीन के दौरे पर हैं। रेलवे के बुनियादी ढांचे को 23 बार निशाना बनाया गया, विशेष रूप से प्रोकोवस्क और हुलियापोइल के पास पूर्वी मोर्चे पर भी भारी लड़ाई की खबरें हैं। अपनी सीमा के पास इन हमलों को देखते हुए पोलैंड ने एहतियात के तौर पर अपने लड़ाकू विमानों को तुरंत रवाना किया। स्लोवाकिया ने सुरक्षा कारणों से यूक्रेन के साथ अपनी कुछ सीमा चौकियां समय के लिए बंद कर दी। इस बीच हंगरी ने हमलों की कड़ी निंदा की और रूस के राजदूत को तलब किया। ज़ेलेंस्की ने हंगरी की इस प्रतिक्रिया की तारीफ की। ये हमला रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन की युद्ध विराम संधि के खत्म होने के ठीक बाद हुआ है। विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल।
1: इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान के साथ जारी युद्ध के दौरान संयुक्त अरब अमीरात का गुप्त दौरा किया और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत की। नेतन्याहू के कार्यालय ने इसकी पुष्टि करते हुए बयान जारी किया है और कहा है कि इस मुलाकात से इसराइल और UAE के संबंधों में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। हालांकि इस प्रगति से जुड़ी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। उधर संयुक्त अरब अमीरात ने इसराइल के प्रधानमंत्री की यात्रा से जुड़ी खबरों का खंडन किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने कहा है कि भारत को ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े सभी समझौते पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करेगा कि बाहरी और अनुचित प्रतिस्पर्धा से दोनों देशों के समझौतों पर कोई असर न पड़े। सर्गेई लैवरोव ने कुडनकुलन परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भारत रूस सहयोग की प्रमुख परियोजना बताया। उन्होंने कहा कि संयंत्र की नई इकाइयों के निर्माण का काम जारी है। रूस भारत को गैस, तेल और कोयले की आपूर्ति भी जारी रखेगा। नेपाल की संसद में भारत और नेपाल के बीच आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता समझौते पर चर्चा जारी है। नेपाल की

0: कानून न्याय और संसदीय कार्य मंत्री सोभिता गौतम ने इस समझौते को संसद में चर्चा के लिए पेश किया। प्रतिनिधि सभा से मंजूरी मिलने के बाद यह समझौता लागू हो जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत पेचिंग में जारी। और रूस ने शांति वार्ता के बीच यूक्रेन पर 800 ड्रोन दागे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।

0: घर आंगन माहे बाहर कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
2: 870-001-4242।
3: बदल रहा है भारत तेज है रफ्तार,
4: जुड़ रहा है हर कोना, हर दिल में पल रहा मंजिलों का ख्वाब।
3: एक ऐसा कार्यक्रम
4: जहां मिलती है सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी,
3: विकास की बातें, संगीत की मिठास
4: और एक नए भारत की आवाज़।
3: जुड़िए हर शाम 5:45 पर,
4: सुनिए बदलते भारत की धड़कन नई उड़ान के साथ आकाशवाणी लखनऊ के विशेष कार्यक्रम।

प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म दुनकी से, आवाज है अरिजीत सिंह की। इस गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने और गीत इरशाद कामिल का।

0: डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सो गर्ल्स क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
4: RBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
5: अब हम आपको सुनवा रहे हैं तड़प फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे जहर फिल्म का ये प्यारा सा गीत केके की आवाज़ में। इसी के साथ कार्यक्रम चित्रपट से अब समाप्त होता है।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब को

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण धड़कन देश की। श्रोताओं, दिन के 11 बजे हैं। अब से बस थोड़ी देर में हम लेकर हाजिर होंगे फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें।
3: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
4: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: मीडियम वेव के मीटर पर श्रोताओं, अब पेश है आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों पर बेस्ड फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। तो हमसे कुछ कहने के लिए हमें जल्दी से फोन लगाइए इस नंबर पर। नंबर है 0522-223-8825। तो जल्दी से लगाइए हमें फोन, क्योंकि मैं हूँ सीमा शाही और हो गई हूँ बिल्कुल तैयार आपको ढेर सारी गाने आपको सुनाने के लिए और आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए। तो चलिए लेते हैं अपना सबसे पहला कॉल और देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो।
5: हेलो, नमस्कार।
2: नमस्कार सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना परिचय दें।
5: मैं राकेश बात कर रहा हूँ हिमालय पर्वत क्षेत्र से।
2: हिमालय पर्वत क्षेत्र से?
5: जी जी।
2: अच्छा अच्छा, तो आप क्या करते हैं राकेश जी?
5: जी मैं बागवानी करता है, हमारे यहाँ जो सेब होते हैं।
2: सेब होते हैं, अरे वाह वाह वाह।
5: कभी आए आप शिमला घूमने?
2: हाँ, शिमला तो मैं नहीं आई हूँ।
5: जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस शिमला से कर रहा हूँ, हिमालय पर्वत हिमाचल प्रदेश शिमला।
2: बहुत अच्छी बात है, आप इतने दूर से हमें कॉल कर रहे हैं। वहाँ के देखिए कीवी जो की है बहुत मशहूर है, सेब मशहूर है, जो हमारे यहाँ तक तो आ जाते हैं, हम शिमला तक ना पहुँच पाए लेकिन वहाँ की चीजें हमारे हम तक पहुँच जाती है ना।
5: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कीवी आती है, सेब आते हैं, नाशपति, अखरोट
2: जी,
5: और ये बादाम जो कहते हैं कि बादाम जो है सेहत के लिए ठीक होते हैं, बादाम भी हमारे यहाँ क्षेत्र में हो जाता है।
2: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और राकेश जी बताएं वहाँ का मौसम कैसा है अभी इस वक्त?
5: मौसम अभी साफ है और बहुत अच्छा मौसम है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और पर मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ आपकी तरह गर्मी से तो शायद हालत बुरी होगी, क्योंकि आपकी तो यहाँ 40-45 डिग्री तक तो जो है तापमान हो सकता है।
2: बिल्कुल, आपको पूरी खबर है, क्योंकि देखिए आपकी आवाज़ सुनकर और आप शिमला से बोल रहे हैं, वहाँ से हमें ठंडक मिल गई है ना, हमारे लखनऊ वाले और आसपास के लोग भी आपसे ठंडक महसूस कर रहे हैं, है ना।
5: इस तपती गर्मी में तभी तो मैं सोचा कि मैं थोड़ी पहला कॉलर बन के ठंडक पहुंचा देता हूँ।
2: क्या बात,
5: थोड़ी गर्मी से रात आप सभी श्रोताओं को मिल जाए, जो दूर दूर से श्रोता जुड़ेंगे और आपके क्षेत्र के भी श्रोता जुड़ेंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, आपने इतनी अच्छी बातें करी। और बताइए, आपने कॉल किया है, आप हमारे पहले कॉलर हैं, तो आपकी फरमाइश को हमें सुनाना तो बहुत ही जरूरी है।
5: बिल्कुल तो बिल्कुल, तो
2: बताएं कौन सा
5: गाना सुनना है
2: जी।
5: और गाने के बोल हैं हमने घर छोड़ा है, अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ मित्रों को याद करते, पर ज्यादा नहीं सब।
2: बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल
5: जी जी। तो सबसे पहले ये आपको गाना डेडिकेट रहेगा, पूरन वर्मा, विजय कुमार पांडे और देवी शंकर प्रसाद और इटावासी राहुल कुमार हैं, भगवान सिंह परमार हैं, और तमाम सुनने वाले श्रोता सभी के लिए गाना ये डेडिकेट रहेगा।
2: बिल्कुल, हम आपकी फरमाइश को सभी को डेडिकेट करते हैं और आपके रेडियो सेट पे पहुंच रहा है ये गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
5: धन्यवाद।

0: श्रोताओ, मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और दिन के 11:11 हो रहे हैं। तो श्रोताओं, जल्दी से लगाएं हमें फोन 0522-22-38825 पर और सुनिए अपने फरमाइशी फिल्म गीत। तो चलिए चलते हैं अपने अगले कॉलर की ओर और जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, नमस्कार सर, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
1: मैं देवी शंकर शुक्ल फतेहपुर से बोल रहा हूँ।
0: जी जी, बहुत बहुत स्वागत है देवी शंकर जी।
1: मुझे गीत जो है पत्थर के सनम का कोई भी सुनवा दीजिए।
0: जी जी, तो आपको
1: मैडम जी, मेरा फोन बहुत कम लगता है।
0: अच्छा,
1: तो 4-5 मित्र है मेरे, आपकी आज्ञा हो तो उनके नाम बता दूं।
0: बिल्कुल सर, हम बैठे ही इसीलिए हैं आपको सुनने के लिए, है ना।
1: प्रेमदास बाबा जी, दिनकर सिंह, राकेश शिमला से, और फूलचंद पाल मनकारी से, और ये क्या कहते हैं मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, और विजय पांडे जी, ये सभी जितने मेरे मित्र हैं और सभी सुनने वालों को, सबको समर्पित है।
0: जी जी, तो देवी शंकर जी, आपने इतने लोगों का नाम लिया, अपने दोस्तों का, हमारा सबका, तो हम आपको और आपके दोस्तों को डेडिकेट करते हैं ये गीत। तो जंगली फिल्म से हम आपको ये गीत सुनवाने जा रहे हैं, है ना।
1: धन्यवाद
0: जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए देवी शंकर जी। नमस्कार
1: नमस्कार।

0: श्रोताओं, मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इस वक्त ये कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है और हमारे कॉलर लगे हुए हैं फ़ोन ट्राई करने के लिए, तो करते रहें फ़ोन ट्राई और नंबर नोट कर लें। हमारा नंबर है 0522-38825। तो जल्दी से करें हमें कॉल और सुनें अपने फरमाइशी फिल्म की। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो,
1: दिन गुजरता है तो गुजर जाने दो, दिन गुजरता है तो गुजर जाने दो, रात गुजरती है तो इसे गुजर जाने दो, खुशियाँ आएंगी फिर लौट कर एक दिन, खुशियाँ आएंगी फिर एक दिन लौट कर, वक्त बदलता है तो इसे बदल जाने दो। मैम गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और ये प्यारी सी आवाज़ किसकी हमारे श्रोताओं को बताएं?
1: जी मैम, मैं पूनम बात कर रही हूँ कानपुर से। मैम कैसी हैं?
0: मैं तो बिल्कुल अच्छी हो गई आपसे बात करके। और पूनम आप बताइए आप कैसी हैं?
1: मैम मैं तो बहुत अच्छी हो जाती हूँ जब आप सभी आर्जे से हमारी बात होती है आकाशवाणी लखनऊ में, तो सच में मन इतना खुश हो जाता है कि बस शब्दों में बयान नहीं कर सकते।
0: क्या बात है, और हम भी शब्दों में बयान नहीं कर पाते जब हम अपने प्यारे प्यारे श्रोताओं से बात करते हैं, है ना?
1: जी मैम बिल्कुल। और मुझे लगता है मैम आज आपसे मेरी पहली बार बात हो रही है।
0: हो सकता है ना?
1: क्योंकि आप सब आजेस हर दिन अलग अलग आप आज सब आती है ना।
0: जी जी,
1: तो सभी से मेरी बात होती रहती है और मुझे ऐसा लगता है कि आज आपसे मेरी पहली बार बात हो रही है तो बहुत खुशी हो रही है। और मैम जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि आप लखनऊ में रहती हैं तो वहाँ का क्या मिजाज है मौसम का भी?
0: मौसम का तो देखिए कभी धूप कभी ठंडी हवाएं। कल तो हमने ठंडी हवा का भी मज़ा लिया, थोड़ी सी बारिश की बूंदों का भी मज़ा लिया और आज कड़कती धूप का भी मज़ा लिया, है ना?
1: मैम, और आज कहते हैं ना आज टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर है और ज्यादा है टेम्परेचर।
0: तो पूनम जी टेम्परेचर तो देखिए बनता रहेगा बिगड़ता रहेगा। आप बताइए अपने बारे में कि क्या करती हैं आप?
1: मैम बताए, मैं भी फोनिंग प्रोग्राम करती हूँ रेडियो आर्यन पर, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है श्रोताओं से बातें करके।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तभी आपने शुरुआत इतने अच्छे अंदाज में की कि दिल खुश हो गया, है ना?
1: इसीलिए तो बहुत अच्छा लगता है आप सभी से अनुभव जो मिलता है हमें सीखने को मिलता है और वही सीखना सिखाना हमारा भी उद्देश्य रहता है श्रोताओं से बातें करना और सभी श्रोताओं की पसंद को पूरा करना।
0: पूरा करना, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी आपकी पसंद को पूरा करने के लिए ही रेडियो सेट पे बैठे हैं। तो पूनम जी आपको हम सुनवा दें आपकी पसंद का गीत?
1: बिल्कुल मैम। मैम कुछ दोस्तों के नाम लेना चाहेंगे, पहले तो आप है, मेरी दोस्त है रिंकी पिंकी जी, गुंजन तिवारी जी और सीतापुर से समा, परवीन जी, अविनाश जी, भगवान सिंह जी, रमेश प्रजापति जी, राम बाबू शर्मा जी, प्रेम सिंह सिसोदिया जी एंड फूलचंद पाल जी और जयपाल भाई और राजू भाई, सभी को गीत सुनाना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने जिन सभी के नाम लिए उन लोगों को भी, आपके परिवार वालों को भी और आपके सारे दोस्तों को हम डेडिकेट करते हैं हम हैराही फिल्म का ये गीत।
1: थैंक यू मैम, बाय बाय
0: बाय।

0: बिल्कुल दोस्तों, सफ़र तो कट ही जाएगा साथ चलने से। अगर आप हमारे साथ होंगे और हम आपके साथ होंगे तो यूं ही ये सफ़र भी कट जाएगा और अच्छी तरह से कटेगा, है ना। तो आप भी हमारे साथ रहिए, यानी आकाशवाणी लखनऊ को सुनते रहिए, क्योंकि है ये धड़कन देश की। तो श्रोताओं, मीडियम वेव के मीटर पर अभी प्रसारित किया जा रहा है फ़ोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे अगले कॉलर हमसे क्या कहना चाहते हैं। हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते सर, परिचय दें
1: जिला
0: अपना।
1: औरैया ग्राम पुराने छल्ला से गगनदीप कमल बोल रहे।
0: गगनदीप जी जिला औरैया से बोल रहे हैं।
1: हाँ दीदी, आप कैसी हो दीदी?
0: मैं तो ठीक हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छी हो गई।
1: जी आप कार्यक्रम बहुत बढ़िया था।
0: बहुत बहुत शुक्रिया गगनदीप जी। देखिए, हमारे श्रोता जब हमसे इंटरेक्ट करते हैं ना और फ़ोन करते हैं इतनी शिद्दत से, तो हम भी बैठे रहते हैं इतनी शिद्दत से आपको गाने सुनवाने के लिए और आपसे बातें करने के लिए, है ना।
1: 7:30 बजे कार्यक्रम आते हैं, रोज सुनते हैं दीदी, बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत बढ़िया बात है, आप लोग हमारे केंद्र के कार्यक्रम सुनते हैं, ये इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए, है ना।
1: फौजी प्रोग्राम आता है वो भी सुनते हैं।
0: तो गगनदीप जी बताएं क्या करते हैं आप?
1: खेती किसानी करते हैं।
0: खेती किसानी, हमारे अन्नदाता हैं आप। जी जी, आपको तो प्रणाम है हमें कि आप हमारे अन्नदाता हैं, किसान भाई हैं, है ना। और तो गगनदीप जी और बताएं औरैया के क्या हालचाल हैं?
1: अभी धूप है दीदी,
0: धूप है,
1: धूप। हाँ बहुत धूप है दीदी।
0: तो सेहत का ख्याल रखिए और काम करिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए।
1: हाँ दीदी,
0: है ना। तो गगनदीप जी, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप कार्यक्रम में?
1: साजन फिल्म का।
0: साजन फिल्म का सुना दें?
1: हाँ दीदी,
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके रेडियो
1: से। अपने पापा सुनाना चाहते हैं रामशंकर कमल को आपको दीदी।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का ये गीत।
2: क्लिक ऑन द बेल आइकन।

0: श्रोताओं, ये था साजन फिल्म का गीत, हमारी श्रोता ने फरमाइश की थी। और अब बढ़ते हैं अगले कॉलर की ओर, क्योंकि आप इस वक्त सुन रही हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और चल रहा है आपका पसंदीदा प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। तो चलिए चलते हैं अपने अगले कॉलर की ओर और जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो
1: हेलो, आदरणीय मैडम जी को नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: जबलपुर एमपी से अशोक सिंह को आपका श्रोता बोल रहा हूँ।
0: जी जी अशोक जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: मैं ठीक हूँ, बस गर्मी है, गर्मी का मजा ले रहे हैं, हर मौसम का मजा लेना चाहिए। आपके इधर का मौसम कैसा?
0: बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ का भी मौसम देखिए गर्मी से भरा हुआ है और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए हम भी दौड़ भाग कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं ना
1: जी।
0: तो ये बताइए, सेहत का ख्याल रखने के लिए गर्मी में आप क्या क्या करते हैं?
1: गर्मी में यही करते हैं, कम सा यानी सुबह सुबह काम है तो निकलते हैं, नहीं तो 10 से 4 बजे तक निकलते नहीं है। अपना ख्याल रखते, बाहर निकलते तो कपड़ा बांध के, मोचा या जो भी है टोपी वोपी और चश्मा लगा के,
0: बिल्कुल,
1: और पानी पी के निकलते हैं, ठंडे पदार्थ खाते हैं जो भी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी,
1: मई और पक्षियों के लिए भी ध्यान रखते हैं, उनके लिए भी दाना पानी रखते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही पक्षियों के लिए भी, कि उनके लिए भी देखिए पानी रखना और दाना रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास तो पैसे नहीं होते, वो खरीद के तो खा नहीं सकते, वो हम पर ही निर्भर होते हैं, प्रकृति पर ही निर्भर होते हैं।
1: पक्षियों का भी ध्यान रखना चाहिए
0: जी,
1: कहना है
0: जी,
1: गर्मी के मौसम में अपना तो रखें, बच्चे बुजुर्गों का भी रखें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही अशोक जी। और बताएं आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: अब आप विजय पथभूमि का सुनवा दीजिए, राम चलते उनसे मुलाकात हो गई।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही देखिए मुलाकात हमारी हो गई है फोन पे, है ना
1: जी मैडम? बहुत दिनों बाद फोन लगता है मैडम, लगता

0: नहीं है।
1: क्या बात है, तभी तो
0: इस बार
1: मुलाकात
0: मुझे
1: हो गई।
0: अनुरोध है कि एक दो हफ्ते बाद लगाएं तो अच्छा है।
1: हाँ, जी, बिल्कुल।
0: जी
1: तो अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए हमारे कार्यक्रम में। आपको सुनवा दें आपकी पसंद का ये गीत।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और हमारे श्रोताओं के लिए उनके प्यारे प्यारे गीत और उनके प्यारी प्यारी आवाज़ में बातें करने के लिए आज हाजिर हूँ मैं सीमा शाही। तो चलिए लगाइए हमें जल्दी से कॉल, नंबर है 0522-22-38825। तो हमें करें जल्दी से कॉल और सुने अपने फरमाइशी फिल्मी गीत। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बताएं अपना नाम बताएं।
1: चांद अधूरा है चांदी के बिना, आसमान अधूरा सितारों के बिना, और हम अधूरे आकाशवाणी लखनऊ के बिना।
0: क्या बात है, और आकाशवाणी लखनऊ अधूरा है हमारे श्रोताओं के बिना, है ना?
1: जी जी, हसीना भी मंसूरी बोल रही पालदाना का इंदौर से।
0: अरे वाह वाह, क्या हाल चाल है हसीना जी?
1: बहुत अच्छे मैडम, थोड़ी गर्मी है ज्यादा।
0: हाँ गर्मी तो बहुत है, क्योंकि गर्मी का मौसम भी हो गया है, साथ ही साथ ताज़े ताज़े आम बेल और पन्ने पीने का भी मौसम आ गया है ना।
1: जी जी, बहुत हाँ। मशक्कत करना पड़ती है आकाशवाणी लखनऊ में फोन लगाने के लिए, और आज आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा तो थोड़ा ऐसा लग रहा है मैडम, अपनी पसंद जी, का गाना जी। नहीं सुन पाएंगे, मगर आपकी पसंद तो अच्छी होगी, वही सुना दीजिए आप।
0: बिल्कुल, हम आपको सुनवाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो जाता है, उसके लिए हमें बहुत बहुत खेद है।
1: मैंने चार पांच फिल्में बताई, इसमें से कोई सा भी सुना दीजिए आपकी पसंद का गाना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुना दूंगी आपको। तो बताए हसीना जी, क्या करती हैं आप?
1: सिलाई करती हूँ मैडम।
0: सिलाई करती हैं, अरे वाह क्या बात है, क्या क्या सिल लेती हैं?
1: ये जूट का काम होता है गनी बेग का, बारदान का।
0: अच्छा अच्छा

0: तो वो काम आप करती हैं?
1: हाँ, सुबह 9 बजे चले जाते मैडम, और भी 6 बजे वापस आ जाते, और
0: ओ चलिए,
1: घर
0: बहुत
1: का भी
0: अच्छा,
1: काम करती हूँ।
0: घर का भी काम करती हैं, बिल्कुल ये तो है
1: मम्मी की
0: ही।
1: थोड़ी तबीयत ऐसी रहती है, सारा काम मेरे को ही करना पड़ता है।
0: तो घर में कौन कौन है?
1: मम्मी है अमीना बी मंसूरी, भाई है मोहम्मद रफी मंसूरी, भाई
0: अरे वाह अरे वाह, क्या बात है। तो
1: है हमारे भाई बहुत अच्छा, क्योंकि वो कॉल लगा लगा के मेरे को ही देता है, मेरे लिए कॉल लगाने के लिए बहुत परेशान रहता है वो।
0: यानी साथ देते हैं आपका कॉल लगाने में।
1: जी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, आपकी मम्मी की तबीयत जल्दी सही हो जाए, और अम्मी जान को हमारा सलाम कहिएगा, और आकाशवाणी लखनऊ की तरफ से आपको ये गीत हम सुनवाने जा रहे हैं।
1: जी,
0: ठीक है,
1: शुक्रिया
0: बहुत
1: मैडम।
0: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र धड़कन देश की। श्रोताओं, दिन के 11:51 और 10 सेकंड हो रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। तो कार्यक्रम में जल्दी से लगाएं हमें फोन इस नंबर पर। हमारा नंबर है 0522-223-8825। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपने अगले कॉलर को। हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: जी मैं दीक्षा पाली बोल रही हूँ, जिला उन्नाव से।
0: जी जी, तो दीक्षा जी, हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने रेडियो सेट की आवाज़ थोड़ा सा कम कर दें क्योंकि दोबारा हमें लौट के आवाज़ आ रही है।
1: जी मैं तो बहुत दूर, चलो और दूर हो गए।
0: अच्छा, तो दीक्षा जी क्या हालचाल हैं आपके?
1: जी मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हो?
0: मैं भी अच्छी हो गई आपसे बात करके, है ना?
1: जी मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: तो क्या करती हैं दीक्षा जी आप?
1: जी मैम मैं घर का सारा काम करती हूँ और तो दोपहर में सिलाई सिखाती हूँ और शाम को कोचिंग पढ़ाती हूँ छोटे बच्चों को।
0: अरे वाह।
1: और थोड़ा बहुत बागवानी भी करती हूँ।
0: क्या बात,
1: अच्छा है। लगता है। और पशु पक्षी जो होते हैं, मतलब बंदर भी आते हैं हमारे घर में।
0: अरे वाह।
1: उनको भी पानी रखती हूँ। चिड़िया बहुत सारी आती हैं हमारे घर में, तो बहुत उनको पानी देती हूँ रोज।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने
1: घर आती हैं चिड़िया, ऐसी हैं कि हम लोगों के अंदर तक आ जाती हैं, इतनी पालतू चिड़िया हो गई कि किचन तक आ जाती है। अगर उनको हम नमकीन वगैरह नहीं देते तो वो जाती ही नहीं।
0: मतलब आपके परिवार के सदस्य हो चुकी हैं एक तरह से वो लोग, है ना?
1: जी वो देखती रहती हैं, जब तक उनको दो ना तब तक वो जाएंगी नहीं यही कहीं। लगता है हमसे कह रही है हमें तुरंत चाहिए।
0: बिल्कुल दीक्षा जी, देखिए प्रकृति का नियम ही यही है कि हम लेने देने में ही विश्वास रखते हैं। अगर हमें कुछ देता है कोई तो हम भी उसको देने की इच्छा रखते हैं, है ना? तो आप जब उनका साथ देते हैं, उनको दाना देते हैं, पानी देते हैं, तो वो भी उसी उम्मीद में आपके पास आते हैं, है ना?
1: रोज मैं नियम से पानी रखती हूँ।
0: जी बहुत अच्छी बात आपने कही। और इसी माध्यम से अपने सारे श्रोताओं को भी हम यही कहना चाहेंगे कि गर्मी का मौसम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, अब धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, तो स्वास्थ्य का ख्याल खुद का तो रखें ही, अपने आसपास के लोगों का, पशु पक्षियों का भी ख्याल ज़रूर रखें, है ना?
1: जी मैं तो करती हूँ और लोगों से भी कहती हूँ कि ज़रूर ये पशु पक्षियों के लिए ज़रूर ऐसा करें।
0: देखिए चिड़ियों की आवाज़ भी आ रही है आपके आसपास से।
1: जी हमारे जहाँ सैतूत के पेड़ के नीचे खड़े हैं,
0: हाँ,
1: और ऊपर चिड़िया भी बैठी हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो दीक्षा जी कार्यक्रम में आपने कॉल किया, कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: जी मैंने जो कहा था आपसे वो मिला नहीं आपको, हाँ, तो जो आपको
0: मेरी पसंद से, है
1: ना? और मेरे पति हैं श्री भीमलाल पाली, बड़े बेटे हैं उल्लास पाली, छोटे बेटे हैं उत्कर्ष पाली, और बीघापुर से हैं धर्मेंद्र भैया, और मनसा घेरे से हैं दिनेश भैया। उन सभी को और आप लोगों को, लखनऊ की सारी टीम को गाना सुनाना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें भी डेडिकेट किया गाना और अपने परिवार वालों को, अपने आसपास के लोगों को, और जिसकी जिसकी आप सहायता करती हैं सबको ये गाना डेडिकेट करते हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं ये
1: गीत। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत
1: धन्यवाद मैम।

बिल्कुल श्रोताओं, हम आपको दिल से पुकारते रहेंगे और यूं ही आप सब से हमारी मुलाकात होती रहेगी इसी कार्यक्रम के अंतर्गत, क्योंकि कार्यक्रम है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, तो हमें फ़ोन लगाते रहेगा क्योंकि ये कार्यक्रम लेके हर रोज़ हम हाज़िर होते हैं आपके साथ और इसी टाइम पर इसी जगह पर। तो इसी के साथ दीजिए सीमा शाही को ये कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त। नमस्कार। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। दिन के 12 बजे हैं और अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: नंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश

0: सबका नमस्कार।
1: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
0: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
0: पगवंदी धमदा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हरखराम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
1: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
0: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
1: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
0: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
1: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
0: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
1: जी श्रोताओं, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
0: जी
1: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
1: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
0: जी
1: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
0: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
1: इसके मुख्य लक्षण है चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
0: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
1: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण है, लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
0: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
1: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
0: ठंडा करने के लिए उसे एक कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
1: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वो सांस भी ठीक से ले पाएगा।
0: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें, लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
1: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें, उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
0: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं।
0: जी।
1: तो भाई, मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी।
0: जी।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
0: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।
1: घास घास थोड़ी सी घास ले ले,
0: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
3: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
0: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
1: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
3: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
1: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो, थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
4: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
5: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
6: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
7: तो बच्चों, सुना आपने, बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल।

0: तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें, तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
2: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
3: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था।

0: कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
1: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। और ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
0: आजा खेलते हैं।
1: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
2: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
1: अच्छा वो क्या?
2: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
1: हाँ
3: दूसरा क्या?
2: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
0: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कड्याल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे। शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि यह भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्य

0: वाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: और मुश्किल, बिल्कुल।
3: देखो चुन्नीलाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
1: हाँ।
3: ये देखो, पास आ जाओ, आ गया हो, आ गया। ये देखो, यदि इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते से।
3: बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा था।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
4: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
3: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
4: जी।
1: अच्छा।
0: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
3: उधर से दुश्मन आ रहे हैं।

0: ही नहीं यही रोक कर रखना। हाँ। मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूँ।
1: ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैन गन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे।
0: अरे चिल्ला,

0: बात करो तो बात नहीं करो। अभी बाजार चखाता हूं मैं।
1: आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
2: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
2: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है। हमने एक एक को भगा देता है।
3: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
2: थैंक यू सर जी, थैंक यू।
1: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वनियांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

0: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: श्रोताओं, मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र, धड़कन देश की। तो श्रोताओं, दिन के 12:30 हुए हैं और अब वक्त हो चला है सदाबहार फिल्मी गीतों को सुनने का। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं सदाबहार नगमे।

0: जी हाँ, आशा भोसले और किशोर कुमार की जुगलबंदी में अभी आपने सुना चलती का नाम गाड़ी फिल्म का ये प्यारा सा गीत। गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत SD बर्मन का था। कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये पहला गीत आपने अभी सुना और अब आइए सुनते हैं एक अंतराल।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है।

0: आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTWP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है। एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: सदाबहार नगमे आप सुन रही हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, और अब चलिए आपको सुनवाते हैं अगला गीत। ये गीत आप सुन रहे हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में, कयामत से कयामत तक, इस फिल्म से।

0: कयामत से कयामत तक। इस फिल्म का गीत आप सुन रही थी उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत था आनंद मिलिंद का। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इस वक्त आप सुन रही हैं सदा बहार नगमे।
1: नई उड़ान में आपके अनुभव की उड़ान हो या हो हौसलों के नए कदम। अगर आप साझा करना चाहते हैं कोई अनुभव या हमें भेजनी हो प्रतिक्रियाएं और सुझाव तो आप हमें मेल कर सकते हैं नई उड़ान AIR@gmail.com पर या लिख भेजिए अपने पत्र। कार्यक्रम नई उड़ान आकाशवाणी केंद्र

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

हम आपके हैं कौन। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रही थी लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे रविंद्र रावल ने और संगीत तैयार किया था राम लक्ष्मण ने। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदा बहार नगमे, और इस कार्यक्रम में अगला गीत अब आइए आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में अंदाज फिल्म से। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमी।

और श्रोताओं लीजिए अब सुनिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म का गीत कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी का गीत है और संगीत है जतिन ललित का।

कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाज में ये था सदाबहार नगमे फिल्म का आखिरी गीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। दिन का 1 बजने को है, अब से बस थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा हिंदी समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है।

0: इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान उनके नाम की घोषणा की। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 3 दिन की यात्रा पर सिक्किम पहुंच रहे हैं। श्री सिंधिया कल टेमी तारकू में सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे और भालेतुंगा में स्काईवॉक परियोजना तथा गंगतोक में ऑर्किडेरियम सहित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर उन पर निशाना साधा। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि श्री गांधी पिछले 22 वर्ष से सार्वजनिक जीवन में हैं और इस दौरान उन्होंने 54 यात्राएं की हैं। श्री पात्रा ने आरोप लगाया कि उनकी विदेश यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रुपये व्यक्तिगत रूप से खर्च किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जागरेटेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जागरेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। ये फेमा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चीन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा के लिए बेहद उत्सुक हैं। श्री जिनफिंग ने ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के
2: श्रोताओं, इसी से संबंधित एक और सूचना सुनिए। 431/184 निवाती टोला कैंपल रोड थाना सआदत गंज लखनऊ के निवासी मोहम्मद यूसुफ ने दिनांक 19 मार्च 2026 को ये सूचित किया है कि मोहम्मद इमरान खान दिनांक 17 मार्च 2026 को निवाती टोला कैंपल रोड लखनऊ से लापता हैं। मोहम्मद इमरान खान का हुलिया इस प्रकार है। उम्र लगभग 34 वर्ष, रंग सांवला, चेहरा लंबा, आँख कान नाक औसत, बाल काले और लंबाई लगभग 5 फीट 6 इंच। इन्होंने ग्रीन कलर की टी शर्ट और नीले कलर की हाफ पैंट पहन रखी है। लगभग 6 वर्ष से इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। उपनिरीक्षक रोहित सरोज, थाना सआदतगंज, लखनऊ। श्रोताओं, इससे संबंधित एक और सूचना सुनिए। बताशे वाली गली गऊ घाट ठाकुरगंज लखनऊ की निवासी श्रीमती रुखसाना पत्नी फिरोज हैदर ने दिनांक 5 अप्रैल 2026 को ये सूचित किया है कि जूही दिनांक 4 अप्रैल 2026 को बताशे वाली गली ठाकुरगंज लखनऊ से लापता हैं। जूही का घुलिया इस प्रकार है।

लगभग 20 वर्ष, रंग सांवला, आंखें काली, बाल काले, लंबाई लगभग 4 फुट 4 इंच, और इन्होंने नीले रंग का सूट, सफ़ेद लाइनदार शलवार पहनी हुई है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। ओमवीर सिंह चौहान, थाना प्रभारी निरीक्षक, ठाकुरगंज, लखनऊ। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में एक और सूचना सुनिए। रामलीला मैदान खदरा थाना मदेगंज जनपद लखनऊ की निवासी आसिफा फारूकी ने ये सूचित किया है कि इनकी पुत्री फलक निगार MH पुत्री फारूकी बिना बताए घर से कहीं लापता हो गई हैं। फलक निगार का हुलिया इस प्रकार है। उम्र लगभग 21 वर्ष, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा, लंबाई लगभग 5 फुट है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। उपनिरीक्षक नागवेंद्र सिंह, थाना मदेगंज, लखनऊ। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया हमें इस पते पर भी सूचित कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, महानगर, लखनऊ। इसी के साथ खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना अब समाप्त हुई।

मीडियम बीफ 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। दिन का 1:10 होने को है। अब से बस थोड़ी देर में हमारी केंद्र से नशर की जाएंगी इलाकाई खबरें। करें बस थोड़ा सा इंतजार।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ मुनक़दा तब्दीली हिंद के नवे साल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आज हमारे पास 7 मेट्रो शहर है। हिंदुस्तान की पहली रैपिड ट्रेन दिल्ली और मेरठ के दरमियान चली। अमनो अमान के हवाले से उत्तर प्रदेश के मुकर्रर करदा अहदाफ सबके सामने हैं। वज़ीर आला ने कहा कि आप उत्तर प्रदेश में जहां भी जाएं आपको तरक्की, सलामती, रोजगार और ज़रई तरक्की का एक नया मॉडल नजर आएगा। तमाम 75 अजला में बैक वक्त तरक्की हो रही है।
1: भारत का पहला एमआरओ वहां हम बना रहे हैं। लॉजिस्टिक का भारत का सबसे बड़ा हब वहां बनने जा रहा है। क्या नहीं है आज वहां पे कर जा सकती। 7 सिटी हमारी ऐसी है जहां आज के दिन पे मेट्रो का चलन हो। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच, इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ का है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन, चाहे वह नेपाल के साथ हो, बिहार के साथ हो, झारखंड के साथ हो, छत्तीसगढ़ के साथ हो, मध्य प्रदेश के साथ हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो या दिल्ली, सबकी कनेक्टिविटी ये अब।
0: गाजियाबाद में मुनाक़दा प्रोग्राम में मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के प्रेसिडेंट कलर अवार्ड तकरीब में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। प्रोग्राम को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज एनडीआरएफ की खिदमत के लिए जो अलामत दी गई है वो एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ, पंचायत से लेकर रियासत तक पूरी रियासती मशीनरी, एनसीसी, एनएसएस और हजारों की तादाद में खिदमत में लगे हुए लोगों को दी गई है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ के जवानों को देखकर लोग खुद को महफूज महसूस करते हैं। मरकजी काबिना ने 2026-27 के लिए मार्केटिंग सीजन के लिए खरीफ की 14 फसलों के लिए कम से कम सहारा कीमत में इजाफे को मंजूरी दे दी है। इत्तलात और नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में काबिना की मीटिंग के बाद कहा कि हुकूमत ने किसानों के लिए मुनाफा बख्श कीमतों को यकीनी बनाने के लिए खरीफ की फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कम अज कम सहारा कीमत में इजाफा करने के मरकजी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस फैसले से न सिर्फ किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और ज़रई तनु की हौसला अफजाई होगी बल्कि खुशहाल किसान, मजबूत हिंदुस्तान के अज़्म को भी तकवीयत मिलेगी। रियासत भर के किसानों ने खरीफ के फसलों के लिए एमएसपी में इजाफे पर खुशी का इजहार किया है। मगरबी एशियाई तनाजा से पैदा होने वाले तनाई के आलमी बुहरान के तनाजुर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मरकजी और रियासती हुकूमत ने ईंधन की बचत के इकदाम को तेज कर दिया है।

घर आंगन कार्यक्रम है तैयार और सब श्रोता पंचन का ममता के नमस्कार। श्रोता बेनी, आजकल कतना ज्यादा गर्मी पड़ रही, काहे कि ये तो भाई जेठ के महीना है, जीमा घूंघट काढ़ दाब ढांक के घर से बहरे निकरे का परत है भाई। जेठ से तो पर्दा होता है कि नहीं। तेज घाम बहनी खूबसूरती का नजरिया सकत है। और ई गर्मी माँ बिरवन के भी बड़ा बुरा हाल है। एक तो प्रदूषित पर्यावरण और दूसर गर्मी जौन हरियाली का बर्बाद कह रहा है। कहे कि पर्यावरण और हरियाली के अटूट संबंध है। सब जब चारों ओर या हरियाली हुई तो भाई पर्यावरण भी शुद्ध हुई, जौन स्वास्थ्य खातिर बहुत आवश्यक है। और यह का खातिर कि हरियाली बनी रहा है, हम सब स्वस्थ रही तो हरियाली से दोस्ती करब, मने प्रकृति से दोस्ती करब बहुत जरूरी है। मने घर इन माँ मेर मेर के लाभदायक बिरवा लगावा जाए। और हम मेहर हुए देखो घर इन माँ ग्रह वाटिका बनाए सकित है। वह माँ साग सब्जी जैसे बैगन कद्दू लौकी तरोई शिमला मिर्च टमाटर सब अपने ग्रह वाटिका माँ लगावा जा सकत है। बनी देखो हमहूँ अपने घर माँ फूल पाती के साथे ई सब के भी बिरवा लगाए हन। ई सब से हमका सबका ताजी तरकारी भी मिलत है और पौष्टिकता भी। और हाँ बहनी, घर माँ हम फलों लगाए सकित है, मने आम।

आम, पपीता, अमरूद सब घर हिन में कितना निक लागत है। घर में ये सब फल सब्जी के बिरवा लगावे से सब बढ़िया चीज मिलत है, मने शुद्ध चीज, कोनो रासायनिक खाद नहीं होत है जो उन बिरवन का नुकसान करत है। घर में सब प्राकृतिक खाद डारा जात है जो उन गैया भैंसिन के गोबरे से और सड़ी फूल पाती से और सड़ी जो वो देखो जो सब्जी है छिकला छीला जात है वो का सड़ाई के खाद बनाए लीन जात है तो वो बढ़िया सब वो शुद्ध होत है। बनी जब हम सब घरहीन में फूल पाती के साथ है यह सब बिरवन का लगाई, बिरिया बिरिया पर खाद पानी दे, समय अनुसार फल सब्जी लगाई तो रहबे ना हरियाली से के करीबे। ई दोस्त होते हैं हमार सबके जिनसे हम हमार जो है हम सब इनसे बातचीत भी कर सकी थे, है कि नहीं। कोई का देखो हम लोग जो कहते हैं कि माँ के नाम पेड़ लगावा जात है तो वैसे हम इनका अपने परिवार निहायत अगर पाला पोसब तो भाई नहु हमका हरियाली भी दें और पर्यावरण भी शुद्ध रखिए, है कि नहीं। तो देखो हर बिरवन के अपन महत्व और मौसम भी होते हैं तब इन पर्यावरण और हरियाली बनी रहत है। और हम सब जब प्राकृतिक और शुद्ध चीज़ पाई थे तो बहनी हरियाली के बात करी तो देखो हरे बांसन से बेना चटैया बांसुरी और कितने चीज़ बनत हैं और इका शुभ भी माना जाते है। पूजा पाठ ब्याह गौने माँ बांसन के बड़ा महत्व है। बिना बांस के माड़ो के बिना बांस के माड़ो के ब्याहो नहीं होते। तो चलो भाई फिर यह बात पर आप सब आनंद उठाओ। ई माड़ो गीत के स्वर है मीनू खरे एवं रश्मि खरे बहनी के।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम।
2: पर दादी
0: हाँ
2: आपके नाम?
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो।
2: क्या
4: आरबीआई कहता है?
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: आज तो पार्टी चाहिए।
7: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
8: आइडिया यही करते हैं पार्टी।
6: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
9: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
6: बाय गर्ल्स कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
10: श्रोता बनी आज के वर्तमान समय में का डिजिटल युग कहा जा लग मने मोबाइल और कंप्यूटर जी का देखो वाके लगे है। इस सहारे में नहीं बलु गावन माँ ये बहुत बड़ी जरूरत बन चुका है। तो यह के लिए यह के शिक्षा हम सब और हमरे लड़कन बच्चन खातिर बहुत जरूरी है। तब ही सामाजिक और आर्थिक प्रगति हुई और हो भी रहा है। मने कंप्यूटर साक्षरता आज की आवश्यकता है। यह विषय पर विस्तार से अपने वार्ता में रंजना यादव बहनी हम सबका बताई है। तो चलो आप सब भी सुनो ये वार्ता।
11: मैं डॉक्टर रंजना यादव आज आपका ध्यान एक ऐसे विषय पर खींचना चाहूँगी जो हर जगह हर समय हमारे चारों ओर मौजूद है। लाखों शिकायतें होने पर भी और बहुत चाहकर भी उससे विमुख नहीं हो सकते, ना उससे दूर जा सकते हैं और ना ही उसे अपने से दूर कर सकते हैं। वो है घर घर की जान मोबाइल और कंप्यूटर। ये जादू का पिटारा कब और कैसे हमारे जीवन में धीरे से प्रवेश कर गया और आज हमारे जीवन के हर पहलू पर अपनी छाप छोड़ रहा है, इसी विषय पर एक छोटी सी वार्ता लेकर आज मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है कंप्यूटर साक्षरता आज की आवश्यकता। साक्षरता शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में तुरंत पढ़ने लिखने की क्षमता का विचार आता है। 70-80 के दशक में साक्षरता अभियान चलाकर सरकारों ने देश के कोने कोने में शिक्षा की अलख जगाई। परिणाम स्वरूप कई जिले ही नहीं राज्यों ने भी 100% साक्षरता का लक्ष्य हासिल किया। अगर हम गौर करें तो 80 के दशक का उतार और 90 के दशक की शुरुआत हमारे देश में कंप्यूटर क्रांति को समर्पित रही, जिसका सारा श्रेय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को जाता है। हर घर कंप्यूटर पहुंचाने के उद्देश्य से उन्होंने इस पर से सरकारी कंट्रोल हटा दिया, जिससे असेंबल किए गए कंप्यूटर्स की आवक देश में शुरू हो गई और आम लोगों तक इसकी पहुंच सरल हो गई। जहां तक भारत में पहले कंप्यूटर के प्रयोग का सवाल है तो बताते चलें कि कोलकाता में इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी कि ISI ने पहला कंप्यूटर बनाया 1950 में, जो एक कैलकुलेटर की तरह काम करता था और अनुसंधान और वैज्ञानिक कार्यों के लिए उपयोगी था। बाद में इसमें ट्रांजिस्टर का भी प्रयोग होने लगा और सबसे पहले रेलवे

रिजर्वेशन सिस्टम में इसका प्रयोग किया गया, जिसमें सरकार को अभूतपूर्व सफलता मिली। फिर धीरे धीरे सरकार की मदद से प्राइवेट सेक्टर कंपनियों ने भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू कर दिए और बीते समय के साथ साथ भारत कंप्यूटर और मोबाइल का एक बड़ा बाजार बनकर उभरा और अब तो यह डेटा का भी बड़ा हब बन चुका है। डेटा सस्ता होने के कारण हर हाथ में मोबाइल है। समय बदल चुका है। पढ़े लिखे होने के साथ साथ डिजिटल दुनिया को समझना भी उतना ही आवश्यक हो गया है। इसी समझ और क्षमता को हम कंप्यूटर साक्षरता कह सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ केवल कंप्यूटर को ऑन ऑफ कर लेना भर नहीं है। इसका अर्थ है डिजिटल उपकरणों का सही उपयोग करना, इंटरनेट पर जानकारी प्राप्त करना, ईमेल भेजना, ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाना और डिजिटल भुगतान वगैरह करना। और हमारी पीढ़ी के लोग ये सब अपने बच्चों से सीख रहे हैं। यह कहने या मानने में हमें किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का उपाय है, जिसे मैंने भी अपनी बेटी से सीखा है और समझा है। वास्तव में आज हम ऐसे दौर में हैं जहां डिजिटल सुविधा धीरे धीरे डिजिटल अनिवार्यता बनती जा रही है। बैंक की लंबी कतारों की जगह मोबाइल बैंकिंग ने ले ली है, कागजी आवेदन की जगह ऑनलाइन फॉर्म ने ले ली है, यहाँ तक कि चिकित्सा परामर्श से लेकर सरकारी प्रमाण पत्र भी डिजिटल माध्यम से ही उपलब्ध हो रहे हैं। COVID-19 याद है ना, लॉकडाउन महीनों का। इस महामारी के दौरान हमने बहुत स्पष्ट रूप से देखा कि तकनीक ने समाज को जोड़े रखने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्कूल कॉलेज बंद थे लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहीं, कार्यालय बंद थे लेकिन वर्क फ्रॉम होम जारी रहा। लोगों ने वीडियो कॉल के माध्यम से अपने परिवारों व कार्यस्थलों से संपर्क बनाए रखा। इससे यह सिद्ध हो गया कि अब तकनीकी विलासिता नहीं आवश्यकता है, बल्कि अनिवार्यता कहा जाए तो बेहतर होगा। ऑनलाइन स्टडी और वर्क फ्रॉम होम का कल्चर इधर साल 2025-26 में बहुत तेजी से विकसित हुआ है, जिसने शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में बहुत से नए रास्ते खोले हैं। देखा जाए तो कार्य और निजी जीवन के बीच हमेशा से तलाशे जाने वाला संतुलन वर्क फ्रॉम होम से ही संभव हो पाया, लेकिन उत्पादन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वर्क फ्रॉम होम के समय आत्म अनुशासन बनाए रखने की प्रबल आवश्यकता होती है। डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन जैसे क्षेत्रों में ऑनलाइन कोर्सेज की जबरदस्त मांग के चलते स्किल डेवलपमेंट के तमाम अवसर उपलब्ध हैं। हालांकि तकनीक के बढ़ते प्रयोग के साथ साथ कई चुनौतियां भी सामने आई हैं, जैसे कि आज साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। फर्जी कॉल, OTP धोखाधड़ी, नकली वेबसाइट और सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं लोगों को अक्सर भ्रमित कर देती हैं। इसीलिए डिजिटल साक्षरता का एक महत्वपूर्ण पक्ष डिजिटल जिम्मेदारी भी है। हमें ये समझना होगा कि इंटरनेट पर उपलब्ध हर जानकारी सही और मानक के अनुरूप नहीं होती। किसी भी संदेश को बिना जांच के आगे बढ़ाना सामाजिक स्तर पर नुकसान पहुंचा सकता है। विवेकपूर्ण ढंग से समझदारी के साथ ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ ही ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर लगातार घंटों स्क्रीन के सामने बने रहने से आँखों की समस्या और तमाम दूसरे प्रकार की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फोकस और अनुशासन भी बनाए रखना कम चुनौतीपूर्ण नहीं होता। लेकिन कुछ भी हो, कंप्यूटर साक्षरता से शिक्षा के क्षेत्र में विशेष क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। एक विद्यार्थी इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों के व्याख्यान सुन सकता है। इस तकनीक का उच्च ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी और विभिन्न एजुकेशनल ऐप्स सीखने की प्रक्रिया को अधिक सुलभ और लोकतांत्रिक बनाते हैं। हमारा ग्रामीण भारत भी कंप्यूटर साक्षरता के लाभ से अछूता नहीं है। आज हमारे किसान मौसम की जानकारी, बीज और खाद के बाजार मूल्य मोबाइल पर प्राप्त कर रहे हैं। छोटे व्यापारी डिजिटल भुगतान के माध्यम से अपने कारोबार का विस्तार कर रहे हैं। महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन प्रशिक्षण लेकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

0: ध्यान देने की बात यह भी है कि कंप्यूटर साक्षरता बुजुर्गों के लिए भी उतनी ही उपयोगी है जितनी कि युवाओं के लिए। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक मोबाइल बैंकिंग या डिजिटल भुगतान सीख लेता है तो कई दैनिक कार्य वह स्वयं कर सकता है। इससे उनका आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता दोनों बढ़ते हैं। दूसरी ओर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाली कार्य संस्कृति अभी और आंदोलनकारी बदलाव देखेगी। समय के साथ कदम ताल बनाए रखने के लिए आने वाली पीढ़ी को अनिवार्य रूप से कंप्यूटर साक्षरता को अपनाना ही होगा। सरकार द्वारा चलाए जा रहे डिजिटल इंडिया, PM ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान और ऐसी कई अन्य परियोजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही हैं। लेकिन जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार इस तकनीकी सुविधा का भी उपयोग या दुरुपयोग किया जा सकता है। इसी मोबाइल या कंप्यूटर के उपयोग से हम अपने व्यक्तित्व को निखारने के नए आयाम चुन सकते हैं, सफलता की नई ऊंचाइयों की परिभाषा गढ़ सकते हैं, जबकि इसका दुरुपयोग हमें बैठे बिठाए किसी मुसीबत में ढकेल सकता है। डिजिटल जागरूकता के प्रसार और उपयोग में परिवार और समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम तकनीक को डर या संकोच की दृष्टि से ना देखें, बल्कि सीखने और प्रगति के अवसर के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि डिजिटल दुनिया में वही व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा जो समय के साथ स्वयं को अपडेट रखेगा। अंततः यही कहा जा सकता है कि जिस प्रकार कभी शिक्षा को विकास का आधार माना जाता था, उसी प्रकार आज कंप्यूटर साक्षरता आधुनिक जीवन की आधारशिला बन चुकी है। यह केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, जागरूकता और सशक्तिकरण का साधन है।
1: कंप्यूटर साक्षरता आज की आवश्यकता ई विषय पर अभी आप सब सुनियो ई वार्ता, जिके बारे में विस्तार से रंजना यादव बहिनी हम सबका बताइन। तो यह का खातिर इनका धन्यवाद दे दीन जाए। और अब श्रोता बहिनी, अभी हम आपसे फिर से मिलब एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
3: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
4: सुगंध क्या हो रहा है?
5: बिल

0: बुकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोता बहनी, फिर से पर्यावरण की ओर यह बढ़ चला जाए और जाना जाए यह के सबसे बड़ा कारण का है, एक लघु नाटिका के रूप में। और यह के शीर्षक है प्लास्टिक एक मीठा जहर। तो चलो सुनो ये लघु नाटिका।
6: आज कितनी हवा चल रही है, पता नहीं ऊपर वाले को क्या मंजूर है। मेरी पत्तियां भी देखो कैसे टूट कर बिखरी जा रही हैं। मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। और देखो तो घोंसले भी जो है परिंदों के फूट गए हैं, वो भी बेचारे परेशान हैं। क्या करूं?
7: कोई रोको मुझे, कहाँ कोई सहारा नहीं मिल रहा है। किधर जाऊं मैं, कौन सा सहारा ढूंढूं मैं अपना। यहाँ पे सही रहेगा।
6: रात से सुबह हो गई, अभी तक हवा नहीं रुक रही है। कम तो कुछ पड़ गई है पर रुक नहीं रही।

0: से कैसे चलेगा?
1: ये कौन है नीचे? ये मेरे नीचे कौन है?
2: कौन है यह? कौन है यह? यह कौन है जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी? हटो हटो, दूर हटो मुझसे।
3: हट जाती हूँ मैं। सखी सखी, तुम परेशान ना हो, मैं चली जाती हूँ।
2: रुको रुको, अब बताओ क्या हुआ? मुझे बताओ, कौन हो तुम? यहाँ कैसे? मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? बोलो, कुछ तो बोलो।
3: मैं भी किस्मत की मारी इस हवा के झोंके से उड़ती फिरती सहारा ढूंढते ढूंढते आपके कदमों में आ गई।
4: कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब मुझसे नफरत करते हैं। मुझे एक बार इस्तेमाल करके सब फेंक देते। आप कुछ नहीं कर सकती मेरे लिए। सब मुझसे बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग मुझे नफरत भरी निगाह से देखते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता।
2: नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। अच्छा, पहले तुम अपना रोना तो बंद करो। हाँ, अब बताओ, बोलो क्या हुआ तुम्हें?
4: क्या आप मेरी दास्तान सुनना चाहेंगी?
2: हाँ बिल्कुल, यदि तुम चाहती हो तो जरूर सुनना चाहेंगे। तुम बताओ कुछ अपने बारे में भी।
4: आप जानती हैं मेरी हालत आज उन बच्चियों और महिलाओं सी है जो दुनिया में तो आ जाती हैं पर अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ती रहती हैं। कुछ को इंसाफ नहीं मिलता और जिनको मिलता भी है वो इस दुनिया से जा चुका होता है।
2: मैं समझी नहीं, कहना क्या चाहती हो?
4: जानती हो सखी, मेरा जन्म 1907 में लियो बैकलैंड के घर में एक बने लैब में फॉर्मल्डिहाइड और फेनॉल जैसे केमिकल के साथ खेल करते करते एक आविष्कार के रूप में हुआ।
2: अच्छा,
4: जिस तरह एक बच्चे की पैदाइश पर खुशियां मनाई जाती हैं, उसका नामकरण किया जाता है, ठीक वैसे ही मेरा भी नामकरण हुआ। मेरे भी आने पर सब ने खुशियां मनाई।
2: खुशी की बात है, फिर इसमें रोने वाली कौन सी बात है?
4: हाँ, खुशी की तो बात है। मुझे सबसे पहले बैकलाइट नाम दिया, बाद में पॉलीमर और फिर प्लास्टिक कहने लगे। इस तरह मेरे नामकरण के साथ ही लियो बैकलैंड रातों रात सुपरस्टार बन गए और टाइम पत्रिका ने उन पर कवर स्टोरी भी की।
2: अच्छा, तो वो तुम ही हो जिसने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है, बच्चों के खिलौनों से लेकर रसोई बाथरूम और तो और डिस्पोजेबल सिरिंजों के उपयोग में हर जगह छाई हो।
4: जी जी हाँ, वो मैं ही हूँ।
2: तुम ही हो जिसकी वजह से आज दुनिया खतरे में है और मैं भी।
4: क्या ये मेरा कसूर है? मेरी अच्छाई तो सबको नजर आई, वजन में हल्की हूँ, स्टाइलिश हूँ, पर किसी को उस वक्त क्यों नहीं मेरी बुराई नजर आई?
2: बुराई? बुराई तो इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलती है। तुम बुरी नहीं हो, हाँ, क्योंकि तुम्हारा विखंडन सरलता से नहीं होता है। तुम्हें विखंडित करने के लिए सैकड़ों साल लग जाते हैं, खासकर एकल उपयोग वाली प्लास्टिक। और जानती हो, तुम्हारी वजह से वन्य जीव को भी बहुत खतरा है। तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े को वन्य जीव निकल जाते हैं, ऐसा करने से उनका जीवन भी खतरे में पड़ जाता है।
4: फिर तो मैं बहुत बुरी हूँ, है ना? यदि शुरुआत में ही मेरी बुराई आप सबके सामने आ जाती तो आज मैं यहाँ इस तरह सबके सामने नहीं रोती, गिड़गिड़ाती, लोगों से अपने वजूद की भीख मांगती, फिर मैं यहाँ नहीं किसी और मुकाम पर होती।
2: जानती हो, तुम्हें तो जलाना भी मुसीबत है। तुम्हें जलाने पर जो दूषित गैस उत्पन्न होती है उससे पूरा वातावरण प्रदूषित हो उठता है, साथ ही लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है और सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है।
4: एक बात पूछूं?
2: हाँ हाँ पूछो।
4: क्या तुम भी समझती हो मुझे जीने का हक?

0: बोलो ना, तुम चुप क्यों हो गई?
1: हाँ, पर मेरे मानने या ना मानने से क्या, तुम्हारी वजह से मेरे साथ साथ पूरी दुनिया को नुकसान पहुंच रहा है। उसका क्या, पौधों को, जानवरों को, और तो और जमीन के जिस जगह पर भी फेंकी जाती हो या फिर जिस जगह जलाई जाती हो, उस जगह की मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती। यहाँ तक किसानों को भी नुकसान हो रहा है। सोचो सोचो जरा, जब फसल ही नहीं होगी तो लोग कैसे जिएंगे? इसके बारे में तुम क्या कहती हो? आज तुम हर जगह मौजूद हो, जमीन पर, नदी में, यहाँ तक के समुद्र और महासागरों में भी। तो और किसकी वजह से है ये सब? बोलो, चुप क्यों हो गई?
0: पर इसमें मेरी क्या खता? जरूरत पड़ने पर सब ने मेरा भरपूर इस्तेमाल किया, लोगों की पार्टी का हिस्सा बनी, हल्की होने की वजह से पिकनिक में, सफर के दौरान भी मुझे ले जाया जाता है। उसके बाद क्या, मुझे यूं ही इधर उधर फेंक दिया जाता है? अरे, जब मुझे ले जाने में किसी को कोई तकलीफ नहीं, फिर मुझे वापस लाने में क्यों, इधर उधर क्यों फेंको? मुझे अपने साथ वापस लेकर आओ, या फिर किसी ऐसी जगह डालो जहाँ से पुनः उपयोग के लिए ले जाया जाता हो।
1: क्या कहूँ और कैसे कहूँ, बात तो तुम ठीक कह रही हो। तुम जितनी देखने में आकर्षक हो, उससे कहीं ज्यादा नुकसानदेह भी हो।
0: इस तरह देखें तो आज मैं भी उन बच्चियों और महिलाओं की कतार में शामिल हो गई, जो दर दर लोगों से अपने वजूद की गुहार लगा रही हैं, और जो दुनिया में तो आ जाती हैं पर अपनी मर्जी से जी नहीं सकती। आज मैं लोगों की ज़रूरत तो हूँ, पर मेरे लिए कोई नहीं खड़ा है। मुझे अपने आप को बचाने के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी।
1: हाँ सखी, तुम ठीक कह रही हो, हर किसी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है।
0: सखी, मेरे दिल पर एक बोझ था, पर तुमसे बात करके अब कुछ अच्छा लग रहा है।
1: हाँ सखी, तुमसे बात करके मुझे भी अच्छा लगा, पर तुम्हारी मौजूदगी से हम सबको बहुत नुकसान हो रहा है।
0: सखी, तुम्हें मेरी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। परेशान ना हो तुम, मैं चली जाती हूँ। ये तेज़ हवा बहती हुई न जाने मुझे कहाँ ले जाए।
2: मीठा जहर। अभी ई विषय पर सुने लघु नाटिका जी के आलेख रहा इरम मिर्जा बहिनी के, और हम ममता सक्सेना और इरम मिर्जा बहिनी इमा भाई प्रतिभागी कलाकार भी रहन। तो श्रोता बहिनी, देखो ये तो बात भई पर्यावरण के, और अब तनी भई योजना के ओरिया बढ़ चला जाए जो हमारी सरकार द्वारा चलाई जाती। तो आज हम योजना लेके आए हैं श्रोता बहिनी। आज काल देखो भाई, गर्मी बहुत पड़ रही है कि नहीं, और के खपत भी कितना बाढ़ गवा है। घर माँ कहूँ कहूँ कहूँ पंखा, तो कहूँ कहूँ कूलर, और शहरन माँ तो देखो घरन माँ जो है वातानुकूलक यंत्र लाग है, मने एसी, और जो है जिमा विद्युत ऊर्जा के खपत ज़्यादा होत है। तो यह सब खपत का ध्यान में राखी के सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024-25 के बजट में शुरू भई, जी के तहत 75,000 करोड़ रुपया से अधिक के निवेश से छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली, मने छत पर सोलर पैनल लगवावे के खातिर सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है। इमा 30,000 से 78,000 तक सब्सिडी मिली, और ई योजना 26 से 27 तक चली। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिली, मने सूर्य देव की किरण, सूर्य देव किरणन से ऊर्जा बनी, और हमार सबके बिजली के बिल में कमी आई, और पर्यावरण का भी बचाई। यह हमारा पात्रता है, आवेदक भारतीय नागरिक होए, आपन घर होए का चाहिए पक्का, छत होए, और भाई बिजली के वैध कनेक्शन होए का चाहिए, और यह हमारा आवेदक आवेदन करे खातिर जरूरी दस्तावेज हैं आधार कार्ड, बिजली के बिल, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, घर के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र, और भाई पासपोर्ट के नाप के फोटो, और अगर किराएदार हैं तो भाई NOC जरूर ले लें मकान मालिक से, नहीं तो वो लगवावे ना दें। तो भाई यह के आवेदन करे खातिर ये वेबसाइट पर जाए के परी, pmsuryaghar.government.in, तब भाई पंजीयन आपूर्ति करता के अनुसार

हुई तो बहनी जल्दी जल्दी ईमा घर के मालिक आवेदन करें और यह के लाभ उठावें, बिजली के बिल बचावें, है ना बढ़िया योजना। श्रोता बहनी ये तो बात भाई इतनी बढ़िया योजना के कहे कि आज काल देखो ननुहारो भाई बिना पंखा एसी के रह नहीं पावत है। तो भाई जब ननुहार के बाद भाई तो चलो सुना जाए एक बढ़िया सा बधावा रश्मि श्रीवास्तव बहनी के स्वर में।

अभी हमारी ग्रामीण महिलाएं सुन रही थीं अपना पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। और अब प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए ईमेल और पत्रों पर आधारित कार्यक्रम

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। और अब प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए ईमेल और पत्रों पर आधारित कार्यक्रम जवानों के लिए।

फौजी भाइयों जय हिंद। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में सुनते हैं सबसे पहले ये गीत, और इसके बाद आपको बताएंगे कि इस गीत की फरमाइश का मेल हमें कहां से आया है। आइए आपको सुनवाते हैं ये गीत।

नदीम श्रवण की बनाई तर्ज पर समीर का लिखा ये पहला गीत आपने सुना दामिनी फिल्म से। आवाज़ थी कुमार सानू के साथ साधना सरगम की। और श्रोताओं, इस गीत की फरमाइश का मेल हमें आया था देवता दीन मास्टर जी की तरफ से। इन्होंने ये मेल हमें लिखा बेनी जी ग्राम लखन गांव पोस्ट मलका गांव डिस्ट्रिक्ट रायबरेली उत्तर प्रदेश से। आपने सुनना चाहा था इस फिल्म का गीत जो कि अभी हमने सुनाया दामिनी फिल्म से। तो श्रोताओं, जवानों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। और चलिए अब शामिल करते हैं अगला मेल हमें कहां से आया हुआ है। ज़िला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज राजू भानु रामशंकर पत्रकार रक्षा मौर्य राम सागर शाहू रसूलपुर वाले मिर्ज़ा तुराब बेग, इन लोगों ने सुनना चाहा है ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत। आपने हमें मेल भेजा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आपको सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गीत आपकी पसंद का ब्रह्मचारी फिल्म से। गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी के साथ सुमन कल्याणपुर ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और इस गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने। तो आइए आपको सुनवाते हैं ये गीत।

जवानों के लिए, फौजी भाइयों के लिए ये कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। तो श्रोताओं, अगला मेल आइए शामिल करते हैं कार्यक्रम में। जो लिखने वाले हमारे श्रोतागण कहाँ से मेल कर रहे हैं, आइए जानते हैं। किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट ललहौवा जिला खीरी, यहाँ से हमें मेल भेजा है विजयपाल यादव, शुभम यादव, बबलू यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव, बबलू यादव, राजेश कुमार व विजय पांडे जी ने। तो आप सभी ने सुनना चाहा है अपनी फरमाइश पर ये गीत, आइए आपको सुनवाते हैं सदमा फिल्म का ये प्यारा सा गीत। हमें मेल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही मेल करते रहें हमें इस कार्यक्रम में। तो आइए आपको सुनवाते हैं सदमा फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है सुरेश वाडकर ने, गीत को तैयार किया है गुलजार ने, और अपने संगीत से सजाया है इलैया राजा ने। आइए सुनते हैं।

आप सुन रहे थे सदमा फिल्म का गीत सुरेश वाडकर की आवाज में। जवानों के लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, और कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए शामिल करते हैं दबंग फिल्म से राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं फैज अनवर ने, संगीत है साजिद वाजिद का। और आइए आपको बता दें, इस गीत की फरमाइश का मेल हमें आया है सेक्टर 69 मोहाली चंडीगढ़ से। लिखने वाले हमारे श्रोतागण हैं टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप ने। और आपको बता दें, इसी गीत की फरमाइश का एक और मेल हमें आया है कालका से। इसे लिखने वाले हमारे श्रोतागण हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। तो आइए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, इसी के साथ जवानों के लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। फौजी भाइयों, जय हिंद। मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। दोपहर के 2:15 होने को हैं। अब से बस थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा दोपहर समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित

0: दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबूधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और

0: बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजय नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम विज्ञान और किसान, जिसमें आइए सुनते हैं धान का नर्सरी प्रबंधन। इस विषय पर डॉक्टर चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव की भेंट वार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां खरीफ में धान उत्पादन की योजना बनाए हैं तो अब समय आ रहा है धान का नर्सरी प्रबंधन कैसे करें, उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी चुनें और उन्नत कृषि तकनीक कौन सी अपनाएं, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर CP श्रीवास्तव साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां धान की रोपाई करनी है तो धान का नर्सरी प्रबंधन भी जरूरी है, लेकिन शुरुआत में उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी चुनें ताकि अच्छी पैदावार मिले।
4: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, देखें जब हम प्रजातियों की बात करते हैं, किसी भी फसल की प्रजाति उत्पादकता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। धान जहां पर हमारे प्रदेश में लगभग 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में हमारे किसान भाइयों द्वारा लगाया जाता है और उनकी उत्पादकता बहुत हद तक इस बात से प्रभावित होती है कि हम प्रजातियों का चयन किस प्रकार से करते हैं। मुख्यतः उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार की प्रजातियां हमारे किसान भाई लगाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बासमती की बात ज़्यादा होती है, बासमती धान का उत्पादन अच्छा और अच्छी प्रकार से किसान भाई

0: पी लेते हैं। उसी तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान का रकबा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में बड़ा है, किंतु पूर्वी उत्तर प्रदेश में मोटा धान यानी जो दाने हैं वो मोटे होते हैं और उपज भी उनकी अच्छी मिलती है। इसलिए प्रजातियों के चयन में यह ध्यान रखना पड़ता है कि हम मोटे वाली प्रजाति चुनते हैं तो कहीं ऐसा न हो कि हम पतली यानी सुगंधित धान की तरफ चले जाएं, जिसमें प्रमुखता से पीआर समूह, जिसमें पीआर 126 है, एनडीआर की वैरायटी है 99-30 है, 97 है, ये जो प्रजातियां हैं ये अच्छा उत्पादन देती हैं और साथ ही साथ ये मध्यम अवधि में पक करके तैयार हो जाती हैं। अब की बार विशेष रूप से ध्यान देना है कि अलनीनो का प्रभाव, यह संकेत करता है मौसम वैज्ञानिकों के आधार पे, यह कहा जा रहा है कि अब की बार वर्षा अनियमित होगी, आगे चल करके लंबा गैप हो सकता है, जिसकी वजह से जो धान एक ऐसी फसल है जिसमें पानी की लगातार ज़रूरत पड़ती है तो वह प्रभावित हो सकती है। इसलिए मध्यम और कम अवधि में तैयार होने वाली प्रजातियों को ही स्थान देना चाहिए किसानों को, और उसमें HUR 917 यह मध्यम समय में पक करके तैयार हो
1: कितना
0: जाती
1: दिन
0: है।
1: डॉक्टर साहब,
0: ये 130, 135 दिन में तैयार हो जाती है, अन्यथा के स्थिति में जैसे हम सरजू 52 की बात करते हैं तो वो 140 दिन लंबी अवधि में पक करके तैयार होती है। दूसरी बात, इसमें पानी की भी कम जरूरत पड़ती है, जैसे एनडीआर 99-30 की बात हमने कहा, पीबी 1718 की बात कर रहे हैं, HUR 917 जो BHU से निकाली गई है और बहुत अच्छी प्रजाति है, मालवीय सुगंधा है, ये भी काफ़ी अच्छी प्रजाति है जो हमारे किसान भाई मध्यम अवधि में पककर के तैयार होने वाली प्रजातियों को ज़्यादातर अपने खेतों पर लगाने का प्रयास करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ जलवायु परिवर्तन का असर दिख रहा है तो ऐसे में जो कम दिन में तैयार होने वाला धान है उसकी भी तो रोपाई कर सकते हैं किसान भाई?
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखें भैया, सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि धान में जब कम वर्षा या ज़्यादा असिंचन की अवस्था हो तो वहाँ पर DSR विधि का प्रयोग करें,
1: यानी धान की सीधी बुआई,
0: धान की सीधी बुआई करें। तो धान की जब सीधी बुआई करनी होती है तो उसमें पानी कम लगता है, और अपलैंड जो होते हैं ऊपरहार वाली जो भूमि होती है उसमें अच्छा उत्पादन दे देते हैं। लेकिन जहां रोपाई करने की बात आती है तो उसमें नर्सरी खास तौर से उस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि नर्सरी आपकी अच्छी तैयार है, यह हर क्षेत्र में होता है, यदि बच्चे की नर्सरी अच्छी होती है तो वो अच्छा उनका स्वास्थ्य होता है, वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं, उसी तरीके से नर्सरी को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए, खास तौर से रोपाई करने वाले धान की जब विधि में हम इन प्रजातियों का प्रयोग करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक एकड़ धान की रोपाई के लिए कितनी क्षेत्रफल की नर्सरी की जरूरत पड़ेगी और बीज की मात्रा कितनी लगेगी?
0: देखिये, इसमें बीज क्षेत्रफल के ही आधार पर निर्धारित होता है। एक एकड़ क्षेत्रफल में यदि धान की रोपाई करना हो तो लगभग 400 वर्ग मीटर में हम नर्सरी तैयार करते हैं। 400 वर्ग मीटर में एक एकड़ क्षेत्रफल की रोपाई का जो धान का पौध है वो तैयार हो जाता है। अब रही बात ये कि इसमें जो बीज की मात्रा है वो लगभग आप ये समझ लें कि 10 किलोग्राम प्रजातियों के ऊपर, यदि मोटा है तो वो 10 किलोग्राम बीज लगेगा। तो 10 किलोग्राम बीज का मतलब ये हो गया कि आप बीज ले लें और बीज को लगभग 24 घंटे भिगो दें, तो 24 घंटे भिगोने पे क्या होता है, उसका मुंह खुल जाता है और 24 घंटे के बाद उनको पानी में से हम छान करके निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद उसको एक टाट पर, बोरे पर बिछा देते हैं छायेदार स्थान पे, और बोरा ढक देते हैं और बोरे को थोड़ा गीला रखते हैं, नम रखते हैं, वह भी 24 घंटा। और 24 घंटे के बाद जब ये हमारा धान बिल्कुल रोपाई वाले क्षेत्रफल में जाने के लिए तैयार रहता है तो वहां पर नर्सरी वाले क्षेत्र में लगभग 1-2 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए या नम रहना चाहिए। और नम रहने के पहले दो प्रमुख बात का ध्यान रखना चाहिए, अक्सर किसान भाई पूछते हैं। एक तो कम से कम 4-5 कुंटल, देखिए मिट्टी में इस समय आर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम है, नाइट्रोजन की मात्रा कम है, तो उनको अच्छा करने के लिए नर्सरी अच्छे ढंग से हो उसमें कम से कम 4-5 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद, फास FYM जिसको हम

0: कहते हैं कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट या घन जीवामृत, इनका प्रयोग कर दें। अब प्रयोग करने के बाद किसान भाइयों के पास यदि डीएपी है, क्योंकि देखें डीएपी से अच्छा काम करता है एनपीके,
1: बारह
0: बारह
1: बत्तीस
0: बत्तीस
1: सोलह
0: सोलह, तो 12 32 16 का 5 किलोग्राम 400 वर्ग मीटर में उसका
1: पर्याप्त है।
0: पर्याप्त है, उसका प्रयोग कर लें तो उससे नत्रजन, फास्फोरस, पोटास तीनों मिल जाता है। और उसके बाद उसमें FYM या कंपोस्ट या घन जीवामृत जैसा मैंने बताया उसका प्रयोग कर दें और उसमें छिड़क करके नर्सरी को डाल दें। अब नर्सरी को डालने के बाद थोड़ा सा कोशिश ये करें कि उसके ऊपर मिट्टी का बुरकाव कर दें, बालू हो तो बालू का बुरका थोड़ा सा ढक जाए, नहीं
1: जी
0: तो उसका मुंह खुला रहता है तो चिड़िया उसको चुंग लेती हैं कई बार, तो उससे बचने के लिए या तो सड़ी हुई गोबर की खाद हो तो उसका एक
1: बारीक
0: बुरकाव कर
1: करके
0: दें, बारीक करके बुरकाव कर दें, उससे बीज ढक जाता है।
1: डॉक्टर साहब, नर्सरी डालने के पहले बीज शोधन भी तो जरूरी है
0: बिल्कुल भैया,
1: और भूमि
0: देखें
1: शोधन भी।
0: बिल्कुल ऐसा है कि बीज शोधन का इसलिए ज्यादा महत्व है क्योंकि बीज शोधित मिलने लगा है, तो वहां पर मैं ये कहता हूं कि यदि आप प्रमाणित बीज लेते हैं राजकीय बीज भंडार से, जहां पर उनके बैग पर उनके बोरी पे लिखा रहता है शोधित बीज, तो वहां तो जरूरत नहीं है। लेकिन यदि किसान भाई अपना बीज बो रहे हैं घर का, पिछले साल का जो संरक्षित किया हुआ बीज है, तो उसके लिए 2 ग्राम कार्बेंडा जिम से उसका शोधन जरूर कर
1: प्रति
0: लें।
1: किलोग्राम बीज का
0: जी हाँ, तो उससे ये होता है कि जो फंगस से लगने वाले फफूंदी वाले रोग हैं एक तो ये बच जाते हैं, लेकिन यदि उनको ट्राइकोडर्मा उपलब्ध हो तो मैं ये सलाह दूंगा कि ट्राइकोडर्मा से बीज का शोधन जरूर कर दें।
1: माचिस की एक डिबिया 1 किलो बीज।
0: बिल्कुल भैया ऐसे ही कर लें। अब रही बात, आपने बात कही कि उसको बायो फर्टिलाइजर जो जैव उर्वरक हैं उनसे भी शोधन पर कई बार हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है। अब उत्पादकता बढ़ाने के लिए एजिटोबैक्टर का प्रयोग जरूर करें, अपने खेत में जो नर्सरी डाल रहे हैं उसमें डालने के पहले अपने बीज पर जो कल्चर आता है एजिटोबैक्टर का उससे शोधित कर लें और उसके बाद नर्सरी डाल दें।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे धान के नर्सरी प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर है 94 15 15 77 81, 9415157781, 94 15 15 77 81।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का धान के नर्सरी प्रबंधन के बारे में डॉक्टर साहब?
0: धान की खेती हमारे किसान भाई सबसे मन लगा करके करते हैं, मैं यही कहूंगा कि अलनीनो के प्रभाव के समय में सीधी बुआई धान की करें तो अच्छा होगा, और जो किसान भाई धान रोपाई से करना चाहते हैं वह नर्सरी की बेहन 20 मई से लेकर के 5 जून तक जरूर डाल दें, अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा।
1: डॉक्टर CP श्रीवास्तव साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और धान का नर्सरी प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धान का नर्सरी प्रबंधन, इस विषय पर हमारे किसान भाई सुन रहे थे डॉक्टर चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव की भेंट वार्ता, भेंटकर्ता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ। 87
5: नई उड़ान में आपके अनुभव की उड़ान हो या हो हौसलों के नए कदम। अगर आप साझा करना चाहते हैं कोई अनुभव या हमें भेजनी हो प्रतिक्रियाएं और सुझाव, तो आप हमें मेल कर सकते हैं नई उड़ान।

0: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुनिए। रामनगर थाना सादतगंज लखनऊ के निवासी प्रेमा पत्नी गुड्डू ने दिनांक 5 अप्रैल 2026 को ये सूचित किया है कि बिट्टी दिनांक 30 मार्च 2026 को 11 बजे से कैंपल रोड वाजपेयी पोड़ी वाले के पास थाना सादतगंज लखनऊ से लापता हैं। बिट्टी का हुलिया इस प्रकार है। उम्र लगभग 18 वर्ष, रंग सांवला, चेहरा लंबा, आँखें काली व सामान्य, बाल काले, लंबाई लगभग 5 फीट। इन्होंने हरे व नीले कलर की कुर्ती, गुलाबी शलवार और सफ़ेद हवाई चप्पल पहनी हुई है। गुमशुदा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर संपर्क करें। उपनिरीक्षक योगेंद्र कुमार, थाना सादतगंज लखनऊ। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में एक और सूचना सुनिए। ग्राम औका पोस्ट हरखू थाना बक्सा जनपद जौनपुर के निवासी आशुतोष शर्मा ने दिनांक 16 अप्रैल 2026 को ये सूचित किया है कि अशोक कुमार शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्रीनाथ शर्मा दिनांक 15 अप्रैल 2026 को सुबह 7 बजे से गांधी वार्ड KGMU पोस्ट चौक लखनऊ से लापता हैं। अशोक कुमार शर्मा का हुलिया इस प्रकार है। उम्र लगभग 63 वर्ष, रंग गेहुआ, चेहरा गोल, आंखें काली और काले डाई किए हुए छोटे छोटे बाल, लंबाई लगभग 5 फुट 5 इंच। इन्होंने सफ़ेद और भूरे रंग की हाफ टी शर्ट और काली हाफ पैंट पहनी हुई है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। उपनिरीक्षक अजय कुमार सिंह, थाना चौक लखनऊ। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में एक और सूचना सुनिए। ग्रामो पोस्ट मुरादपुर निविया खेड़ा थाना खुटार जनपद शाहजहांपुर के निवासी अर्पित कन्नौजिया पुत्र श्री राजकुमार कन्नौजिया ने दिनांक 8 अप्रैल 2026 को ये सूचित किया है कि लवली दिनांक 8 अप्रैल 2026 को 1:20 से घटनास्थल चारबाग से लापता हैं। लवली का हुलिया इस प्रकार है। उम्र लगभग 26 वर्ष, रंग गोरा, चेहरा गोल, आँखें काली, बाल काले, औसत लंबे और इनकी लंबाई है 4 फुट 8 इंच। इन्होंने मेहरून कलर का शलवार कुर्ता व दुपट्टा पहन रखा है। पेट पर ऑपरेशन का निशान है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। थाना प्रभारी शिवमंगल सिंह, थाना हुसैनगंज लखनऊ। इसी के साथ खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और अब चलिए आपको ले चलते हैं गांव जवार की माटी से जुड़े, संस्कारों से जुड़े लोक परंपरागत गीतों की ओर। कार्यक्रम है लोक माधुरी, जिसमें आइए आपको सुनवाते हैं विजय लक्ष्मी के गाए भोजपुरी लोक गीत। तो शुरुआत करते हैं विजय लक्ष्मी के गाए इस लोक भजन के साथ।

प्रभु आए नगरिया, ये लोक भजन आप सुन रहे थे विजय लक्ष्मी के स्वरों में। जी हाँ, भोजपुरी लोकगीत आज हम लेकर आए हैं लोक माधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत। और अब आइए आपको सुनवाते हैं इन्हीं का गाया खेमटा।

लोक माधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे हैं विजय लक्ष्मी के गाए भोजपुरी लोकगीत। तो आइए अब सुनते हैं इनके स्वरों में ये प्यारा सा कहरवा।

0: प्रभु राम के सुरतिया कौने रंगवाना, ये भोजपुरी अवधि लोकगीत आप सुन रहे थे विजय लक्ष्मी की स्वरों में। कार्यक्रम था लोकमाधुरी। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं, एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। अपराह्न के 3 बजे हैं। अब संपन्न होती है हमारी आज की ये पहली सभा। शाम 5 बजे से अपनी दूसरी सभा के सभी कार्यक्रमों को लेकर हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं। अब हमारी आज की सायंकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ हो रहे हैं। अब से बस थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इस बैठक का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबूधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित होगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल है। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू LPG आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
2: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और LPG प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल वाले 2 जहाज 90,000 मेट्रिक टन से अधिक LPG के साथ कल रात हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए

0: 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि धान का समर्थन मूल्य 2,369 रुपये से बढ़ाकर 2,441 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने विभागों को 50% सरकारी कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। आज गंगटोक में सरकारी खर्च में कटौती के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए एक वर्ष तथा विदेश यात्रा न करने और शनिवार तथा रविवार को कार्य दिवस के रूप में बनाए रखने का भी निर्देश दिया। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी ने पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उधर IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग आज शाम 5:10 पर। नई उड़ान कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 5:45 पर। इसमें हुनर के अंतर्गत क्षेत्र संकलित कार्यक्रम लेकर आएंगी शालिनी। विषय रहेगा व्यावसायिक कौशल संकट।

सतत विकास लक्ष्य और ग्रामीण बदलाव। डॉक्टर हरिश्चंद्र से इस विषय पर वार्ता सुनेगा लोकायतन कार्यक्रम में शाम 6:30 पर। खरीफ सब्जियों की अगेती खेती, डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा से इस विषय पर भेंटवार्ता करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय खेती किसानी कार्यक्रम में आज शाम 6:50 पर।

खेल जगत का प्रसारण होगा शाम 7:31 पर। आज आप सुनेंगे रफ्तार मेरी पहचान है। मेहमान होंगे अभय तिवारी, पूर्व राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री धावक और वर्तमान कोच। इसके अलावा आप सुनेंगे साप्ताहिक खेल समाचार आसिफ इकबाल से। राष्ट्रीय अस्मिता और भारतीय भाषाएं, डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी से वार्ता सुनेगा हिंदी कार्यक्रम में आज रात्रि 8:00। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर देवानंद पाठक का वायलिन वादन प्रसारित किया जाएगा। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज रात्रि 8:10 पर जगजीत सिंह की गाई चंद गजलें सुनी जा सकेंगी। श्रोताओं की फरमाइश पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपकी पसंद आज रात्रि 9:30 पर। ये थे हमारी सभा के शेष कार्यक्रम। और अब लीजिए सुनिए कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। जिले की हलचल का प्रसारण होगा कल सवेरे 9:15 पर। उर्दू प्रोग्राम में कल सवेरे 9:30 पर क्विज प्रोग्राम आकाशवाणी @90 नश्र किया जाएगा। अरबी की उन्नत खेती, इस विषय पर चर्चा करेंगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी कृषि चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 6:05 पर। आम के गुण, इस विषय पर जानकारी देंगी नीना सोनकर। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 7:00। दया धर्म का मूल है, ये विषय है कल प्रसारित होने वाली विविधा का। प्रसारण समय कल प्रातः 7:10। संयुक्त परिवार, जीवन में बाधा या प्रगति का आधार, इस विषय पर परिचर्चा सुनेगा अपराजिता कार्यक्रम में कल दिन में 1:15 पर। प्रतिभागी होंगी श्वेता राजदान अदीब और संगमित्रा चौहान। खरीफ मक्का की उन्नत कृषि तकनीक, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह से इस विषय पर भेंट वार्ता करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय, विज्ञान

किसान कार्यक्रम में कल दिन में 2:30 पर। युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग कल शाम 5:10 पर। नई उड़ान, इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा कल शाम 5:45 पर। इसमें हमारी सेहत क्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन से भेंटवार्ता, जिसका विषय रहेगा निर्बाध रोगी कल्याण में नवोन्मेषी एकीकृत अस्पताल प्रबंधन प्रणाली की भूमिका, औषधि पौधों से स्वास्थ्य संरक्षण। डॉक्टर तरुण पांडे से इस विषय पर वार्ता सुनेगा लोकायतन कार्यक्रम में कल शाम 6:30 पर। खेती किसानी कार्यक्रम में कृषि समाचारों पर आधारित किसान डायरी का प्रसारण होगा कल शाम 6:50 पर। आलेख और वाचन अरविंद कुमार शुक्ल का और संपादक होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। अंग्रेजी कार्यक्रम में कल शाम 7:31 पर एडवोकेट देवांश शर्मा से इंटरव्यू सुनेगा, विषय रहेगा प्रॉपर्टी फ्रॉड एंड सेफ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इन उत्तर प्रदेश। आपसे इंटरव्यू करेंगी डॉक्टर शिवा राकेश। समावेशी समाज की नींव सामाजिक न्याय, डॉक्टर निहारिका कुमार से इस विषय पर वार्ता सुनी जा सकेगी हिंदी कार्यक्रम में कल रात्रि 8:00। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हो चुके हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मांडवी, और मेरे साथ है मेरी दोस्त
1: आयुषी।
0: साथियों, हम दोनों हाजिर हो चुके हैं लेकर के
1: एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन का पिटारा
2: प्रोग्राम युवा तरंग।
1: दोस्तों, आज का दिन काफी स्पेशल है, लेकिन क्यों है क्या आपको पता है? नहीं पता? अच्छा मांडवी, क्या आपको पता है कि आज के दिन क्या खास है?
0: हाँ बिल्कुल आयुषी, हमको पता है।
1: अगर आपको पता है तो हमारे दोस्तों को भी बताइए जरा।
0: आयुषी, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं लोकसभा स्थापना दिवस।
1: अच्छा
0: जी। और आयुषी, कहते हैं कि किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत उसके बड़े बड़े भवनों में नहीं, बल्कि उसके नागरिकों की आवाज में होते हैं। वही आवाज जो कभी सवाल बनकर उठती है, कभी सुझाव बनकर समझ आती है, और कभी बदलाव की मांग बनकर पूरे देश में दिशा तय करती है।
1: बिल्कुल।
0: और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपनी इसी लोकतांत्रिक शक्ति के लिए पूरे विश्व में पहचाना जाता है। यहाँ करोड़ों लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग संस्कृतियों को मानते हैं, अलग अलग परंपराओं में जीते हैं, लेकिन जब बात लोकतंत्र की आती है तो पूरे देश की आवाज एक साथ संसद में पहुंचती है।
1: बिल्कुल मांडवी। मांडवी, लोकतंत्र की सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लोगों की भागीदारी, उनके अधिकारों और उनके विश्वास से मिलकर बनता है
0: जी।
1: और भारत के लोकतंत्र की इसी मजबूत नींव का एक सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ यानी कि पिलर है लोकसभा
0: जी। वैसे आयुषी, आप अगर इसको थोड़ा ब्रीफली बताएं हमारे दोस्तों को तो अच्छा होगा।
1: हाँ हाँ मांडवी, बिल्कुल। लोकसभा यानी जनता का सदन, एक ऐसा मंच जहाँ देश के अलग अलग राज्यों, शहरों और गाँव से चुने गए प्रतिनिधि पहुँचते हैं। कोई किसान की बात करता है, कोई युवाओं की शिक्षा की, कोई महिलाओं की सुरक्षा की, तो कोई देश की अर्थव्यवस्था की।
0: और शायद यही वजह है कि लोकसभा को भारतीय लोकतंत्र की धड़कन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लोग जो फैसले लेते हैं वो सीधे देश के करोड़ों लोगों के जिंदगी को प्रभावित करते हैं। यहीं नए कानून बनते हैं, यहीं राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होती है, और यहीं सरकार से सवाल भी पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम इतनी सहजता से देखते हैं, उसके पीछे कितना लंबा संघर्ष और कितनी बड़ी ऐतिहासिक यात्रा छुपी है? वैसे आज़ादी से पहले भारत में लोगों के पास अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं था आयुषी।
1: अच्छा
0: जी। और फैसले जनता की भागीदारी से नहीं, बल्कि विदेशी शासन द्वारा लिए जाते थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत ने सिर्फ आज़ादी ही हासिल नहीं की, बल्कि दुनिया के सामने एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था का एग्जाम्पल भी सेट किया।
1: और इसी हिस्टोरिकल जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है लोकसभा की स्थापना।
0: बिल्कुल।
1: साल 1952 जब इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार जनरल इलेक्शन

0: हुए, करोड़ों लोगों ने पहली बार मतदान किया और अपने प्रतिनिधियों को चुना। उस समय न इतनी टेक्नोलॉजी थी, न कम्युनिकेशन के आधुनिक साधन, लेकिन लोगों के अंदर लोकतंत्र के प्रति उत्साह और विश्वास जरूर था। सोचिए उस दौर में जब देश अभी अभी स्वतंत्र हुआ था, तब इतने विशाल स्तर पर चुनाव करवाना अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी।
1: बिल्कुल।
0: और उसी के साथ अस्तित्व में आई भारत की पहली लोकसभा।
1: जी, तो आज के प्रोग्राम में आयुषी हम बात करेंगे लोकसभा के इतिहास की, ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में उसकी जो अहमियत है उसके बारे में, और इस बात की कि आखिर क्यों लोकसभा को एक सिर्फ सदन नहीं कहा जाता बल्कि जनता की उम्मीदों और विश्वास का प्रतीक कहा जाता है। लेकिन आयुषी, आगे बढ़ने से पहले क्यों ना एक गाना सुन लिया जाए।
0: दोस्तों, सुन लेते हैं ये गीत।

ਇੰਡੀਆ ਤੂੰ ਆਇਆ ਬਜਿੰਦੜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ।

0: में सर। मानवी, अभी आपने थोड़ी देर पहले बहुत खूबसूरती से लोकतंत्र की बात की, लेकिन अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर लोकसभा क्या है और ये काम कैसे करती है, तो आप जरा इस बारे में भी हमारे दोस्तों को बताइए।
1: बिल्कुल आयुषी, देखिए भारतीय संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें लोकसभा

0: लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य सीधे देश की जनता द्वारा चुने जाते हैं।
1: यानी मानवी, भारत का हर एलिजिबल वोटर अपने क्षेत्र से एक रिप्रेजेंटेटिव चुनता है जिसे हम मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट यानी एमपी कहते हैं।
0: बिल्कुल, और यही एमपी संसद में जाकर जनता की समस्याएं सुनते हैं, उनकी जो मुद्दे होते हैं उनको उठाते हैं और सरकार के सामने प्रश्न भी खड़े करते हैं।
1: लोकसभा की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है मानवी कि ये सीधे जनता से जुड़ी हुई है, यानी यहाँ बैठने वाले प्रतिनिधि जनता के वोट से चुनकर आते हैं।
0: बिल्कुल, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। जनता खुद अपने प्रतिनिधि चुनती है और देश की दिशा और दशा तय करने में भागीदारी देती है।
1: अच्छा मानवी, अभी आप ऑफ द माइक मुझे किसी भेंट वार्ता के बारे में बता रही थी।
0: जी, हम आज अपने दोस्तों को एक भेंट वार्ता सुनवाएंगे जिसका विषय है ऊर्जा सुरक्षा। वार्ताकार हैं प्रोफेसर सनातन नायक और भेंट करते हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। आइए सुनते हैं।
2: शब्द जिसको हम लोग शुरू से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जब से जानने लायक हुए हैं, क्योंकि यह कभी शारीरिक ऊर्जा के रूप में तो कहीं विद्युत ऊर्जा के रूप में या कभी नाभिकीय ऊर्जा के रूप में, तमाम तरह के ऐसे इसके क्षेत्र हैं जिसको हमें सुनने को मिलता है बार बार, और उसके आधार पर हम अपनी जीवन प्रक्रिया जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसमें अपनी सहभागिता भी कभी कभी जब महत्वपूर्ण हो जाती है तो उसको निभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी कोशिश के क्रम में आज हमारे बीच में प्रोफेसर सनातन नायक साहब हैं जो अर्थशास्त्र विभाग यहाँ जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में है उसमें आप कार्यरत हैं, और ऊर्जा की आजकल बात आप सुन ही रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी या फिर जो भी जिम्मेदार व्यक्तित्व हैं वह सभी ऊर्जा को लेकर चिंतित हैं। कारण इसके तमाम हो सकते हैं, उन कारणों में से क्या कुछ है उसको समझते हुए प्रोफेसर साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं स्टूडियो में, फिर जानना चाहते हैं आखिर ये ऊर्जा होती क्या है।
3: नमस्कार, मैं ऊर्जा सुरक्षा के ऊपर में कुछ बिंदुओं की मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। पहले तो मैं ये बताना कोशिश करूँगा कि ऊर्जा सुरक्षा क्या होता है। जैसे हमारा घर पे 24 घंटे के लिए हम लोग पानी और बिजली रहने के लिए रहने पसंद करते हैं, ऐसे ही पूरा देश में जो ऊर्जा हम लोग का व्यवहार में रोज़ की व्यवहार में आता है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोयल है और गैस है, ये अति आसानी से हो और सुलभ दर में मिल जाए सभी लोग को, इसको हम लोग कहेंगे कि ऊर्जा का सुरक्षा है। जैसे कोई रुकावट बीच में ना हो, जैसे अभी पश्चिम एशिया की युद्ध के कारण से बहुत सारी रुकावट हुआ है, इसी परिस्थिति को हम लोग सामने करते हुए अभी ये बात को हम लोग को समझ में आया, पूरा सरकार को साथ साथ में आम आदमी को भी, कि ऊर्जा का सुरक्षा आज के दिन में बहुत ज़रूरी है और मैं मानता हूँ ये एक बहुत अहम मुद्दा है।
2: जी बिल्कुल, मुद्दा तो अहम है ही, और जब कभी इसकी क्राइसिस होती है तब फिर बात और भी शोचनीय हो जाती है। कहा यह जा रहा है कि ऊर्जा की खपत जो है हमारे यहाँ एलपीजी के रूप में हो या तमाम जो ऊर्जा के हम उपभोग कर रहे हैं उसकी बचत करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब उसकी जो उत्पादकता रही है वहाँ से या ट्रांसपोर्टेशन रहा है कुछ ऐसी दिक्कत वाली स्थिति हो गई है कि हमारे तक वो पहुँच नहीं पा रही है। तो ऊर्जा सुरक्षा की बात जो आप कह रहे हैं वह और भी महत्वपूर्ण लगती है, किस रूप में कैसे हम इससे सन्नद्ध हो सकते हैं।
3: पहले तो मैं कहूँगा ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अभी वर्तमान परिस्थिति में जो चर्चा चल रही है देश भरी और पूरा विश्व में, पहला कारण है अभी 2022 के बाद जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुए हैं उसमें ऊर्जा का जो क्राइसिस है, इसका है कि जब रसिया ने यूक्रेन को अटैक किया तो यूरोप ने कुछ रुकावट लगाया है, सैंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थनैतिक हिसाब से बा एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब से कुछ सैंक्शन उन्हें किया, जिस कारण से रसिया ने तेल सप्लाई करना कम कर दिया। तो इसी कारण से यूरोप में बहुत क्राइसिस हुआ था, तेल और गैस का जो दर है, जो रेट है, करीब करीब 10 गुना बढ़ गया था। और दूसरे में इवन भी उसके बाद भी

0: पूरा विश्व में ये हुआ है 2020 में जब कोविड व्यापक रूप में हर देश में हुआ है, और उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जिस कारण से पेट्रोल डीजल और गैस चाहे घरेलू व्यवहार के लिए हो चाहे कारखाना के लिए हो ये सब के लिए बहुत बढ़ गया था, जिसी कारण से सप्लाई इसी हिसाब से नहीं हो पाया था वो समय पर, जिसी कारण से रेट का भी दर बढ़ गया था विश्व स्तर में। जिसमें दूसरा चीज भी हुआ है ओपेक कंट्री जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वो भी जो ऊर्जा का रेट को लेके कभी कभी उसको स्थिर करने के लिए चाहते हैं बा उसको बढ़ाने के लिए चाहते हैं, तो ओपेक का भी बहुत रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है विश्व स्तर में। तो ये पाया गया कि कोविड के बाद लगभग ओपेक देश ने भी जो जितने ऊर्जा एक्सपोर्ट होता है स्पेशली प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम जिसको हम लोग कहते हैं कि कच्चा तेल क्रूड ऑयल, तो उसमें भी काफ़ी रेट में परिवर्तन हुआ है।
1: जी बिल्कुल, रेट में परिवर्तन हुआ है वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन जो आप क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, अपने यहाँ रिफाइनरीज तो पर्याप्त मात्रा में हैं ही एस्टेब्लिश्ड, तो उनके माध्यम से रिफाइनरी में तो कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, खपत जो हमारी है वो वैसी की वैसी बनी हुई है, तो क्या उस खपत में भी अब हमें कोई शिथिलता बरतनी है या फिर इस ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कोई अन्य उपाय अपनाने हैं?
0: अन्य उपाय भारत सरकार ने, बल्कि मैं ये नहीं कहूँगा खाली भारत सरकार, पूरा विश्व स्तर में बहुत सारी रास्ता पिछले 15 साल से और उससे भी ज़्यादा हो सकता है, पिछले 15 साल से हम लोग जिसको कहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे है सोलार एनर्जी और विंड एनर्जी, पवन चक्की कहते हैं उसको, और उसमें भी बहुत वृद्धि हुई भारत में, बल्कि दूसरा जैसे चाइना है, अमेरिका है, यूरोपियन कंट्री में है, सारी ये सब देश में रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत वृद्धि हुई, और स्पेशली इंडिया में, आप भारत में देखेंगे तो मैं ये कहूँगा अगर 2015 से लेकर 2024 तक आप देखेंगे सोलर एनर्जी में बहुत परिवर्तन आया। कुछ डाटा मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा, 2017 से लेकर 2023 तक करीब करीब सोलार एनर्जी में 3 गुना वृद्धि हुई, जिसमें हम लोग कहते हैं उसको इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी करीब करीब 3 गुना वृद्धि हुई। लेकिन एक सवाल ये आता है, क्या सोलार एनर्जी हो या विंड एनर्जी हो, क्या ये पर्याप्त है देश का ऊर्जा को सुरक्षित रखने के लिए, देश का सुरक्षित रखने में? इसमें कहूँगा कि ये दोनों सिर्फ पर्याप्त नहीं है, इसीलिए ये जो सोलार एनर्जी है दिन के लिए सही है, रात में ये कोई ऊर्जा उसमें नहीं होता है, कोई जब जलवायु खराब होता है बा रेनी सीजन में स्पेशली बा दिन भर बादल ढंक के रखता है वो टाइम पे भी सोलार एनर्जी पैदा नहीं होता है, और इस तरीका में विंड एनर्जी जो पवन चक्की हम लोग कहते हैं, जब पवन और हवा तेज़ी से बहता है तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। तो ये दोनों चीज, ये दोनों जो ऊर्जा है ये दोनों का अपना लिमिटेशन है, फिर भी हम कहेंगे जो ये दोनों को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ में बाकी जो जो दूसरे रूप में जो ऊर्जा है, जैसे उदाहरण स्वरूप मैं ये कहूँगा कि न्यूक्लियर एनर्जी है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, इसको भी भारत सरकार बहुत तेज़ी से बढ़ावा दे रहे हैं, और में ये एक चीज़ कह सकते हैं उसको बोलते हैं एनर्जी बास्केट बा ऊर्जा टोकरी, तो ऊर्जा टोकरी में एक सारी चीज़ रहना चाहिए, ताकि केवल सौर एनर्जी या सौर
1: कहने का तात्पर्य आपका ये हुआ कि किसी एक माध्यम पर निर्भर होने
0: निर्भर नहीं होना चाहिए,
1: हमें जितने स्रोत हैं उन स्रोतों का दोहन करना चाहिए
0: करना जरूरी है, और जिसमें सभी लोग को पर्याप्त मात्रा में और सुलभ मात्रा में मिल सके।
1: ये तो मिलने तक की बात रही है, हमारा फिर से वो उसी प्रश्न पर लौटना चाहेंगे कि इसकी बचत की बात जो आज कही जा रही है कि कम से कम ऊर्जा का उपयोग हम करें जिससे कि ये ऊर्जा की बचत हो और उसको हम लंबे समय तक टाल सकें, क्योंकि जो ओपेक देशों की बात आपने कही या खाड़ी युद्ध के द्वारा जो समस्या खड़ी हो गई है उससे निकलने के लिए कम से कम वैकल्पिक

0: वैकल्पिक स्वरूप में हमें क्या कुछ करने की आवश्यकता है, वह समझना चाह रहे थे।
1: सर, इसमें मैं एक चीज़ आपको कहूँगा, इसमें एक चीज़ है जो स्टोरेज फैसिलिटी, बैटरी स्टोरेज आज के दिन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे सोलर एनर्जी दिन में पैदा होता है, रात के लिए हम लोग स्टोरेज करके रखना बहुत ज़रूरी है। और विंड एनर्जी भी इस तरीके में, जब पवन और हवा अगर तेज़ी से बहता है, उसको भी स्टोरेज करके रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें दो चीज़ की ज़रूरत होता है, एक है ग्रिड जो मैकेनिज्म है हमारा देश में, जो ग्रिड मैकेनिज्म है उसको बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जाता है, एक स्टेट की एक जिला से दूसरा जिला तक जाता है, तो वो आज के दिन में की बहुत ज़रूरत है, बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो जिसी कारण से हमारा बेहतर स्टोरेज हो सकता है, जिसी कारण से हम लोग कंजर्व कर सकते।
0: चलिए, अच्छी बात है, और ये कंजम्पशन जो है उसमें थोड़ी शिथिलता हमें बरतनी है, सोच समझ कर खर्च करना है, जो विशेष रूप से एलपीजी की बात की जा रही है या पेट्रोलियम उत्पाद जितने हैं उनकी, और जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं आपने अभी चर्चा के क्रम में सामने लाया है, उन सब का उपयोग करना चाहिए, विशेष रूप से सोलर एनर्जी और फिर इलेक्ट्रिकल पर जाना की आवश्यकता है। ये सब बातें हैं, चलती रहेंगी और आगे बढ़ते रहेंगे, हम लोग फिर कभी इस पर और चर्चा व्यापक रूप से करने की आवश्यकता होगी तो पुनः हमारी आपकी मुलाकात होगी। आज आपने समय निकाला, स्टूडियो आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों, अभी आपने सुनी एक भेंट वार्ता जिसका विषय था ऊर्जा सुरक्षा। वार्ताकार थे प्रोफेसर सनातन नायक और भेंट करता थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। आइए अब सुनते हैं एक गीत।

0: मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आयुष, जब भी लोकसभा की बात होती है तब स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव का जिक्र जरूर आता है।
1: बिल्कुल, साल 1951-52 में भारत में पहला जनरल इलेक्शन कराया गया था। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनावों में से एक था।
0: और सबसे खास बात यह है कि उस समय देश में लिटरेसी रेट बहुत कम था, कई जगह रोड्स और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं भी नहीं थी,
1: लेकिन इसके बावजूद लोगों के अंदर वोट देने का उत्साह अद्भुत था। गांव-गांव जाकर पोलिंग बूथ्स बनाए गए थे उस समय। अच्छा मानवी, आप ये बताइए
0: जी
1: कि आपने कब अपना पहला वोट दिया था?
0: हम देखिए, महीना चल रहा है मई का और मई में हमारा आता है हैप्पी बर्थडे।
1: अच्छा
0: जी, तो जब हम 18 साल के हुए तो उसके 2-3 महीने बाद ही वोटिंग थी, तो हमने मतलब अपना पहला वोट 18 के होने पे दिया।
1: अच्छा, तो क्या आप ये बताएंगे कि आपने अपना पहला वोट किसे दिया?
0: अरे वोट गोपनीय है। अच्छा, वो हम नहीं बताएंगे।
1: चलिए, अब मांडवी तो हमें नहीं बताएंगी कि उन्होंने अपना पहला वोट किसे दिया, लेकिन हम आपको बता दें कि उस समय बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्सेस का इस्तेमाल होता था, आज की तरह ईवीएम मशीन्स नहीं थी।
0: और शायद यही वजह है कि भारत का पहला चुनाव सिर्फ इलेक्शन ही नहीं था, वो लोकतंत्र का उत्सव माना जाता है।
1: अच्छा
0: जी, और आयुषी अब ये बताइए कि आखिर लोकसभा का काम क्या होता है?
1: लोकसभा का सबसे इम्पोर्टेंट काम है लॉ मेकिंग, यानी कानून बनाना।
0: और जब देश के लिए कोई नया कानून बनाया जाता है, पुराने कानून में बदलाव किए जाते हैं, तो उस पर संसद में चर्चा होती है।
1: इसके अलावा लोकसभा सरकार की कार्य प्रणाली पर भी नजर रखती है। एमपी सवाल पूछते हैं, डिबेट्स करते हैं और पब्लिक इश्यूज उठाते हैं।
0: ये और इसका मतलब है कि ये सिर्फ डिस्कशन का मंच नहीं है, यहाँ अकाउंटेबिलिटी भी सुनिश्चित की जाती है।
1: और यही कारण है कि लोकतंत्र में संसद को इतना इम्पोर्टेंट स्थान दिया जाता
0: है। बिल्कुल, और वैसे आयुषी आज दिन कौन सा है?
1: आज है बृहस्पतिवार, यानी थर्सडे।
0: जी, और थर्सडे को हम लोग कुछ स्पेशल करते हैं?
1: बिल्कुल, आज हम अपने दोस्तों को सुनवाते हैं ऐतिहासिक धरोहर, यानी हमारी धरोहर।
0: तो आइए सुनवाते हैं उनको।
1: बिल्कुल
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवा तरंग और आज है दिन बृहस्पतिवार। हर सप्ताह बृहस्पतिवार के दिन आप सुनते हैं हमारी विशेष श्रृंखला ऐतिहासिक धरोहर। इस श्रृंखला में हम आपको भारत की उन अमूल्य विरासतों से परिचित कराते हैं जो केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारे गौरव का जीवंत प्रतीक है। ये धरोहरें केवल पत्थरों से बनी इमारतें नहीं होती, बल्कि इनमें सदियों की कहानियां, संघर्ष, परंपराएं और सभ्यता की झलक समाई होती है। जब हम इन धरोहरों के बारे में जानते हैं तो हमें ये भी समझ में आता है कि हमारा अतीत कितना समृद्ध और प्रेरणादायक रहा है। भारत के अलग अलग शहरों में ऐसी कई ऐतिहासिक इमारतें और स्मारक हैं जो अपने समय की कला, वास्तुकला और संस्कृति की झलक दिखाते हैं। जब हम इन स्थानों के इतिहास को सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय हमें कई सौ साल पीछे ले जा रहा हो। इन्हीं धरोहरों में से एक है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक बहुत ही प्रसिद्ध और भव्य ऐतिहासिक इमारत, बड़ा इमामबाड़ा। ये इमारत केवल लखनऊ शहर की पहचान ही नहीं, बल्कि भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लखनऊ को अक्सर उसकी तहजीब

0: अदब, मेहमान नवाजी और नवाबी संस्कृति के लिए जाना जाता है। इस शहर की गलियों में इतिहास की खुशबू आज भी महसूस की जा सकती है। इन्हीं ऐतिहासिक धरोहरों में से सबसे प्रमुख है बड़ा इमामबाड़ा, जिसे अवध के नवाब आसफ़ुद्दौला ने सन 1784 में बनवाया था। उस समय अवध क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा हुआ था। लोग भोजन और काम दोनों के लिए परेशान थे। ऐसी कठिन परिस्थिति में नवाब आसफ़ुद्दौला ने लोगों की मदद के लिए एक बड़ा और अनोखा निर्णय लिया। उन्होंने एक विशाल इमारत के निर्माण का कार्य शुरू करवाया ताकि अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सके और वो अपनी आजीविका चला सके। इतिहास में ये भी बताया जाता है कि इस निर्माण कार्य से हजारों लोगों को रोजगार मिला। दिन के समय मजदूर इस इमारत का निर्माण करते थे और रात के समय कुछ लोग उस काम के हिस्सों को फिर से तोड़ देते थे ताकि अगले दिन फिर से निर्माण का काम शुरू हो सके और लोगों को लगातार काम मिलता रहे। इस तरह बड़ा इमामबाड़ा केवल एक ऐतिहासिक भवन नहीं रहा, बल्कि ये उस समय की सामाजिक संवेदनशीलता और लोगों की मदद करने की भावना का भी प्रतीक बन गया। बड़ा इमामबाड़ा अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसका मुख्य हॉल लगभग 50 मीटर लंबा और करीब 15 मीटर ऊंचा है। और सबसे खास बात यह है कि इतने बड़े हॉल में कहीं भी लोहे की बीम या सहारे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उस समय की इंजीनियरिंग और वास्तुकला का ये एक अद्भुत उदाहरण माना जाता है। इसी इमारत के ऊपर स्थित है प्रसिद्ध भूल भुलैया, जो सैकड़ों सकरी गलियों और रास्तों से बनी हुई है। कहा जाता है कि इसमें लगभग 1000 से भी अधिक रास्ते हैं, जिनमें कई एक दूसरे से मिलते हैं और कई अचानक समाप्त हो जाते हैं। बिना गाइड के इस भूल भुलैया में रास्ता ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है और यही कारण है कि ये स्थान पर्यटकों के लिए एक रहस्यमय आकर्षण बना हुआ है। बड़ा इमामबाड़ा केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि एक पूरा ऐतिहासिक परिसर है। इसके पास ही स्थित है भव्य रूमी दरवाजा, जिसे लखनऊ का प्रतीक माना जाता है। लगभग 60 फीट ऊंचा ये दरवाजा तुर्की वास्तुकला से प्रेरित होकर बनाया गया था और इसे उस समय लखनऊ शहर का मुख्य प्रवेश द्वार भी माना जाता था। इसके अलावा इमामबाड़े के परिसर में शाही बावली भी स्थित है, जो एक ऐतिहासिक बावली या कुआं है। कहा जाता है कि इस बावली की बनावट ऐसी थी कि पानी में खड़े होकर ऊपर आने वाले व्यक्ति की परछाई देखी जा सकती थी। पुराने समय में इसका उपयोग सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी किया जाता था, जिससे दुश्मनों या अनजान लोगों पर नजर रखी जा सके। समय के साथ साथ बड़ा इमामबाड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। विशेष रूप से मुहर्रम के अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और श्रद्धा के साथ अपनी धार्मिक कार्यों में भाग लेते हैं। इस समय यहाँ का वातावरण बहुत ही गंभीर और आध्यात्मिक हो जाता है। दूर दूर से आने वाले लोग इस स्थान पर अपनी आस्था व्यक्त करते हैं और इस ऐतिहासिक धरोहर को नमन करते हैं। आज के समय में बड़ा इमामबाड़ा केवल इतिहास की एक निशानी नहीं है, बल्कि ये पर्यटन का भी एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। हर वर्ष हजारों लोग यहाँ आते हैं और इसकी भव्यता, इसकी रहस्यमय भूल भुलैया और इसके इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। जब कोई व्यक्ति इस इमारत को देखता है तो उसे केवल एक इमारत नहीं दिखाई देती, बल्कि उसे उन लोगों की मेहनत, उस समय की कला और उस युग की सोच का अद्भुत उदाहरण दिखाई देता है। इस प्रकार बड़ा इमामबाड़ा हमें ये सिखाता है कि हमारी ऐतिहासिक धरोहरें केवल अतीत की यादें नहीं होती, बल्कि वो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। वो हमें याद दिलाती है कि किसी भी समाज की असली ताकत उसकी संस्कृति, उसकी परंपराओं और उसके इतिहास में छुपी होती है। और जब हम अपनी इन धरोहरों को समझते हैं तो हम अपने वर्तमान और भविष्य को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी श्रृंखला ऐतिहासिक धरोहर की आज की कड़ी। अगले बृहस्पतिवार हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायी धरोहर की गाथा के साथ।
1: आयुष, लोकसभा में एक और बहुत इम्पोर्टेंट पद होता है स्पीकर का।
2: बिल्कुल मानवी, स्पीकर लोकसभा की कार्यवाही को

0: संचालित करते हैं, उनका काम होता है कि सदन की प्रोसीडिंग्स सही और व्यवस्थित तरीके से चले।
1: यानी अगर संसद में डिस्कशन हो रहा है, डिबेट्स हो रही हैं या वोटिंग हो रही है, तो सब कुछ स्पीकर की देखरेख में होता है।
0: और ये पद इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि स्पीकर को निष्पक्ष रहकर पूरे सदन को संभालना होता
1: जी,
0: है।
1: जी आयुषी, आज के युवाओं के लिए लोकतंत्र को समझना बहुत जरूरी है।
0: एग्जैक्टली, क्योंकि यूथ ही देश का फ्यूचर है। अगर युवा जागरूक होंगे तभी लोकतंत्र और मजबूत बनेगा।
1: और आज के समय में इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से फैलती है, ऐसे में जरूरी है कि युवा सिर्फ सोशल मीडिया की हेडलाइंस तक सीमित ना रहें, बल्कि देश के मुद्दों को गहराई से समझें।
0: हाँ, और वोटिंग हमारा अधिकार है, हमारी जिम्मेदारी भी है,
1: क्योंकि एक वोट सिर्फ सरकार ही नहीं चुनता बल्कि
0: देश की दिशा और दशा तय करता है।
1: और आयुषी, अब वक्त हो चला है अपने दोस्तों से विदा लेने का।
0: उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे हम किसी दिन नए विषय के साथ।
1: मैं हूँ मांडवी और मेरे साथ है
0: आयुषी।
1: नमस्कार।
2: अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम नई उड़ान।

नई उड़ान कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अच्छा एक बात आप सब मानते होंगे कि हम सब ना जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा नाम, बड़ी पहचान, बड़ी सफलता, लेकिन सच क्या है ये कभी जानने का प्रयास किया है? दोस्तों, हर बड़ी कहानी छोटी शुरुआत से ही शुरू होती है। कोई भी इंसान जन्म से सफल नहीं होता है, ना कोई बड़ा बिजनेसमैन, ना कोई बड़ा कलाकार, ना कोई बड़ा नेता। हर किसी ने शुरुआत वहीं से की जहां आज शायद हम और आप खड़े हैं। किसी ने छोटे कमरे से स्टार्टअप शुरू किया, किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया, किसी ने साइकिल पर सामान बेचते बेचते अपना ब्रांड बना लिया, और सबसे खास बात दोस्तों, उन्होंने सही समय का इंतजार नहीं किया, उन्होंने शुरुआत कर दी और फिर उनका काम बनता चला गया। दोस्तों, अक्सर हम सोचते रहते हैं कि अभी नहीं, थोड़ा और सीख लूं, अभी पैसे कम हैं, लोग क्या कहेंगे। लेकिन याद रखिए, सपनों को सबसे ज्यादा नुकसान डर पहुंचाता है, ना कि असफलता। गलती करना हार नहीं है, कोशिश ना करना असली हार है। आज अगर आप छोटा काम शुरू करते हैं तो वही छोटा कदम कल आपकी बड़ी पहचान बन सकता है, लेकिन अगर आज आपने शुरुआत ही नहीं की तो फिर सोचिए कि संभावना किस तरफ है, किस तरफ इशारा कर रही है, और आप क्या समझ सकते हैं कि आप कभी सफल होंगे या नहीं, क्योंकि हमने तो शुरुआत की ही नहीं है। हो सकता है कि आप पढ़ाई कर रहे हों, नौकरी ढूंढ रहे हों, या कुछ नया शुरू करना चाहते हों, तो आज खुद से एक सवाल पूछने की ज़रूरत है कि मैं शुरुआत कब करूँ, क्यों करूँ, कैसे करूं, क्या यही सही समय है। अक्सर हम ये देखते हैं दोस्तों कि जब हम कुछ करने के लिए सोचते हैं ना, तो हम बहुत सारे लोगों से सवाल पूछते हैं। हम उन लोगों से सवाल पूछते हैं हमें जब लगता है कि ये हमसे थोड़ा सा अनुभवी हैं या हमें अच्छा रास्ता बता सकते हैं। हम पूछते हैं सवाल उनसे, लेकिन हमें निर्णय अपने मन से भी लेना होगा, अपने दिमाग से भी लेना होगा, और अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को सुनना होगा, उनके अनुभवों को भी अपना सहारा बनाना होगा। कई बार क्या होता है ना कि या तो हम घबरा जाते हैं कि अगर हमने किसी से जिक्र किया, मान लीजिए कि आज हमने एक छोटी सी दुकान खोली और हम चाहते हैं कि अपना एक बड़ा ब्रांड स्थापित करेंगे, हमने लोगों से पूछा तो लोग कहते हैं अरे बहुत मुश्किल सफ़र है, बहुत समस्याएं होंगी, ऐसे नहीं होता है, इतना आसान काम नहीं है, तो हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि यार सच में ये बात हमारे

लायक तो शायद नहीं है या हम नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि अपने कदम को आगे बढ़ाएं, उस दिशा में लेकर के अपने आप को चलें जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं, तो यकीनन हमें मंजिल मिलेगी। लेकिन अगर हम ठहर कर बस सोचते ही रहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपने सपनों को एक नई उड़ान दें, इसीलिए नई उड़ान कार्यक्रम में तमाम बातें आपके लिए हमेशा लेकर के आते रहते हैं आपके सपनों से जुड़ी हुई। तो आज भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत सी गीत की बारी है जो आपको इसी सकारात्मक सोच से भर देने वाला है।

तो हम हमारे मन में कई सारे सवाल हों या हम कई दुविधाओं से घिरे हुए हों, और उस दौरान हम उस शुरुआत को करें इसलिए कि हमें अपनी मंजिल को पाना है, तो वो शुरुआत बहुत ज़रूरी होती है हर किसी के जीवन में। और एक लम्हा ज़रूर ऐसा आता है जब हम ये फैसला नहीं ले पाते हैं कि हमें वास्तव में करना क्या चाहिए। ऐसे समय में हमेशा हमें उन लोगों को अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए जिन्होंने वास्तव में अपने जीवन में कुछ अर्जित किया हो, कुछ पाया हो, कुछ अचीव किया हो। जब आप उनके जीवन के संघर्षों

0: हमेशा हमें उन लोगों को अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए जिन्होंने वास्तव में अपने जीवन में कुछ अर्जित किया हो, कुछ पाया हो, कुछ अचीव किया हो। जब आप उनके जीवन के संघर्षों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इससे तो बहुत सही स्थिति में मैं हूँ, है ना। और जब ये आपके मन में आ जाएगा तो आप कुछ भी करने के लिए अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे और अपनी मंजिल को आप पा पाएंगे। अच्छा, इस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारी मदद करती है वो होता है हमारी कौशल, है ना। हमारे पास कितनी क्षमता है, कितना हुनर है, ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है हमारी सफलता पर। तो आज के इस कार्यक्रम में हुनर के सेगमेंट में हम आपको व्यावसायिक कौशल के बारे में बताएंगे। खास करके हम बात करेंगे व्यावसायिक कौशल संकट पर, इसमें क्या चुनौतियां हैं और क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इस विषय में तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं या जो जनता की राय है वो आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। ये बातें आप तक पहुँचाने के लिए हमारा सहयोग किया है हमारी सहयोगी शालिनी सिंह जी ने। तो आइए ज़रा ध्यान से सुनते हैं कि आखिर व्यावसायिक कौशल संकट क्या है, इसके लिए चुनौतियां क्या हैं और प्रयास क्या करने की जरूरत है।
1: हाथ में फाइल, मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा, जमे
2: रहो। आखिर क्यों डिग्रियों से भरी दुनिया में हुनर की कमी महसूस की जा रही है? क्यों कंपनियां कहती हैं काम करने वाले लोग कम हैं और युवा कहते हैं काम मिलने के मौके कम हैं? क्या सचमुच हमारे सपनों और रोजगार के बीच कौशल की कोई अधूरी कड़ी छूट गई है? क्या बदलते समय की तकनीक ने युवाओं के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है या फिर जरूरत है सोच बदलने की? नई उड़ान के सफर में मैं शालिनी इन्हीं तमाम सवालों के साथ निकल पड़ी उन लोगों के बीच जो तराश रहे हैं खुद को हुनर के साथ। व्यावसायिक कौशल संकट, चुनौतियां और प्रयास। अपने इस विषय के साथ आज मैं पहुंची हूं गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अलीगंज में। चलिए आपको भी ले चलते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर और जानते हैं कि यहाँ पढ़ने वाले लोगों का अनुभव कैसा है, वो क्या सोच रहे हैं और साथ ही साथ जानेंगे एक्सपर्ट से भी।
3: क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम राहुल है और मैं गवर्नमेंट ITI कॉलेज से हूँ अलीगंज। मैं इंग्लिश स्टेनो ग्रेड से हूँ।
3: स्टेनो के बाद आप किधर विकल्प तलाशेंगे जॉब का?
4: मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम इसमें बहुत कंपटीशन है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऑप्शन है और प्राइवेट सेक्टर में भी ऑप्शन है और मैम बहुत जगह ऑप्शन है, न्यूज़ रिपोर्टर से लेके हम हर एक फील्ड में।
3: तो आपके आत्मविश्वास से लग रहा है कि आप पूरी तैयारी से हैं?
4: जी बिल्कुल, क्योंकि अगर तैयारी है तो फिर किसी से क्या।
3: लेकिन टेक्नोलॉजी काफी अपडेट होती जा रही है,
4: AI से आप हेल्प ले सकती हैं और सब कुछ AI नहीं कर सकता। ह्यूमन वर्क और ऑफिस वर्क कभी AI पे या फिर स्मार्ट वर्क पे डिपेंड नहीं होगा।
3: क्या नाम है आपको?
5: गुंजन।
3: गुंजन किस ग्रेड से हो आप?
5: स्टेनो हिंदी से।
3: अच्छा, ये कोर्स आपने क्यों चुना?
5: ये कोर्स हमने इसलिए चुना क्योंकि हर गवर्नमेंट सेक्टर में इसका स्कोप है, लेकिन अच्छा। मुझे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है, ITI हमने कर लिया है, इसके बाद हम CITS करेंगे। तो CITS करने के बाद 3 साल का हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ताकि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग सके। इसका सिर्फ गवर्नमेंट में ही स्कोप है, प्राइवेट में है नहीं, तो हमें स्किल कौन देगा?
3: ये आपके सामने आपको समस्या
5: जी
3: है। और कोर्स करने से पहले इस बारे
5: नहीं
3: में?
5: कोर्स करने से पहले हमें ये आइडिया नहीं था, अपने से सीनियर से पूछा, से सीनियर 3-4 साल पहले करे हुए हैं, सब कुछ उनका सही है लेकिन वो एक्सपीरियंस की वजह से बैठे हुए हैं, तो इस चीज के लिए मुझे थोड़ा सा लगता है कि गलत तो नहीं कर दिया इसमें आके।
3: आपका नाम?
6: ज्योति यादव।
3: ज्योति, आप किस स्टेट से हो?
6: हिंदी स्टेनो। मेरा आगे का वो है CTI करने का, उसमें 1 साल के लिए मैम कोर्स होता है, उसमें इनकम भी दी जाती है, वो कर लेंगे उसके बाद।
3: यस अप्रेंटिसशिप।
6: यस मैम, वो उसके बाद 2 साल बचते हैं, 2 साल मैम थोड़ा इधर उधर से वो हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है।
3: अच्छा, अभी आप लोगों ने स्टेनो की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ शॉर्ट वर्क करने के लिए हमारे AI टूल्स आ चुके हैं, तो क्या लगता है कि ये संभावनाएं आप लोगों की घटेंगी या बढ़ेंगी?
6: मैम घटेंगी।
3: तो इसके लिए क्या तैयारी करेंगे आप?
6: इसके लिए मैम फिर अलग से तैयारी करनी पड़ेगी।
3: तो आपको क्या लगता है, आपने जो कोर्स किया है अभी, जब आप करने आए थे तो जानकारी उतनी नहीं थी, अब आपने
6: इसके बारे में जब करने आए थे हमें कुछ भी नहीं पता था,
3: तो क्या लगता है आपको, खतरा लगता है कि नहीं लगता है आपके करियर क्षेत्र में?
6: लगता है मैम।

0: दोस्तों हमारे साथ में कुछ नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए विद्यार्थी जो कि अलग अलग टॉपिक्स पे यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो जानते हैं उनसे, उनके अनुभव, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका?
1: मैम सुमित वाल्मीकि। मैम मैं टर्नर ट्रेस से हूँ और मुझे लेथ के बारे में बताया जाए, जैसे लेथ मशीन पे जैसे कि कोई भी ऑपरेशन करते हैं हम, फेसिंग करना, टर्निंग करना, ड्रिलिंग करना, सारे ऑपरेशन करना, उस पर हम सीखते हैं, ये सब हमसे
0: तो आपका जो सारा काम है इसमें टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट कितना है?
1: मैम ऑल ओवर तो सभी है मैम इसमें टेक्नोलॉजी का, क्योंकि विदाउट टेक्नोलॉजी कहाँ इसमें हम।
0: तो क्या संभावनाएं आपको लगती हैं आपके इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद व्यावसायिक क्षेत्र में?
1: मैम जैसे रेलवे में जॉब्स के चांसेस रहते हैं, एचएल्स में रहते हैं, मारुति सुजुकी में रहते हैं, तो उस पर अप्लाई करके हम जॉब कर सकते हैं।
0: बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बदलने के साथ साथ कुछ खतरे भी आपको नज़र आते हैं, और नज़र आते हैं तो क्या?
1: मैम ऑफकोर्स मैम, क्योंकि मैम हम लोग को बेसिक जानकारी है अभी, तो इतना टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया तो थोड़ा तो मैम प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों को
0: तो
1: लेके।
0: ये एक डर महसूस हो रहा है, इसके कारण से कुछ भी हो सकता है।
1: यस मैम बिल्कुल।
0: क्या नाम है आपका?
2: मैम मेरा नाम दीपक गौतम है, मैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में क्लास में पढ़ता हूँ।
0: तो आपको लगता है कि अब ये जो स्किल आपने सीखी है अब ये आपके लिए काम की है और रोजगार अच्छे से मिल जाएगा?
2: हाँ काम की है, लेकिन इस पे और अपडेट आगे के जो नए हो रहे हैं उनको अगर सीखते रहेंगे तभी वो
0: तो
2: काम।
0: क्या अपडेट की जरूरत महसूस कर रहे हैं?
2: अब सब चीजें अपने आप होने लगी हैं ऑटोमेटिक,
0: नई टेक्नोलॉजी से जुड़ने की जरूरत महसूस हो रही है।
2: यस मैम।
0: और अगर नहीं जुड़ पाते हैं जो आपने सीखा है तो क्या खतरा लगता है?
2: फिर आप अपना खुद का ही खोल के छोटा मोटा कर सकते हैं, लेकिन इसे किसी ऑटोमोबाइल या किसी सेक्टर में काम करना है तो उसमें तो आगे की चीज़ें अपडेट चाहिए ना।
3: मेरा नाम आशु जायसवाल है, मैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में हूँ यहाँ पे।
0: तो अभी यहाँ क्लास में आप क्या सीख रहे हैं?
3: मैम यहाँ पे हम अभी ड्रोन और 3D प्रिंटिंग के कोर्स करने आए थे। ये सब स्किल्स की कोर्स है जिसका काफ़ी आजकल चलन है, जिसे हम सीख के आगे अपने अलग अलग सेक्टर में भी डिमांड है, जहाँ पे हम जॉब की एक्सपेक्टेशन करते हैं इसको सीख के। ट्रेड में भी हमारे डिफरेंट टाइप के गेज इंस्ट्रूमेंट्स सिखाए जाते हैं।
0: अगर व्यवसायिक क्षेत्र में कदम रखना है तो क्या बेहतर रहेगा, स्किल्ड होना या बड़ी डिग्री?
3: मैंने अपने पर्सनली देखा कि अगर स्किल हो तो हम कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करके कुछ अर्न कर सकते हैं, खाली बैठने से तो बेहतर। जैसे कि अभी 4 महीने के लिए हम लोग गए थे, DHT हमारी लगी थी, तो हमने अच्छा खासा वहाँ पे काम सीखा, काम देखा और अर्निंग भी की है। जबकि मेरे साथ के कई बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो फिर तैयारी कर रहे हैं।
0: यानी स्किल बहुत जरूरी है,
3: स्किल मैम जरूरी है, हर सेक्टर में जरूरी है।
0: आपका नाम क्या है?
4: मैम मेरा नाम वंश वर्मा, मैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का छात्र हूँ।
0: तो अभी तो आप यहाँ पे ड्रोन और AI की क्लास में हैं।
4: जी मैम।
0: तो अपने इस कोर्स से उस कोर्स में क्या इम्प्लीमेंट करेंगे?
4: मैम दोनों कोर्सों की समानताएं नहीं है, जैसे कि उस ट्रेड में क्या कहते हैं हमें मशीनें देखनी है और इस ट्रेड में हमें ड्रोन के अलग अलग फील्डों में जाना है, जैसे कृषि में, आर्मी में, या क्या कहते हैं विभिन्न उद्योगों में आजकल ड्रोन का ही काम है।
0: यानी कि मल्टीपल स्किल आप ले रहे हैं।
4: जी मैम।
0: कहीं ना कहीं तो हम सेटलमेंट
4: जी मैम, कि अगर हमारे उस फील्ड में नहीं हुआ तो हम डिफरेंट फील्ड्स में भी अप्लाई कर सकते।
5: तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको।
6: दोस्तों अब चलते हैं और भीतर, यानी कि इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट्स के पास, क्योंकि इन युवाओं ने यहाँ कदम ही इसलिए रखा है कि उन्हें सही राह दिखाई जा सके। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इन्हें जो कंफ्यूजन है वो क्यों है, एक्सपर्ट्स क्या कर रहे हैं तैयारी।
0: हम बात कर रहे हैं यहाँ मौजूद इंस्ट्रक्टर जिल्लुर रहमान जी से। तो जिल्लुर रहमान जी बहुत स्वागत है आपका नई उड़ान में।
7: थैंक यू
0: सर। ये बताएं कि आज व्यवसाय को लेकर के बड़ी सारी चुनौतियां हैं सामने, और आपकी नज़र में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती क्या क्या नज़र आती है?
7: सबसे बड़ी चुनौती मैम अगर हम देखें तो इस समय जो इंडस्ट्रीज की आवश्यकता है और जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है उसमें जो गैप क्रिएट हो रहा है उसके, वो सबसे बड़ी चुनौती है। जो बच्चा हमारे यहाँ संस्थान में जिस तरीके की स्किल्स प्राप्त कर रहा है और जो उसे अपनी जॉब में आवश्यकता है उसमें जो डिफरेंस आ गया है वो सबसे बड़ा जो है कारण है कि बच्चा अपने पोटेंशियल तक अचीव नहीं कर पा रहा है।
0: तो इसका कारण क्या नज़र आ रहा है आपको?
7: इसका कारण ये है कि समय समय पे हमारा जो सिलेबस है उसका अपडेशन ना होना, उसी के साथ साथ जो हमारे ट्रेनर्स हैं, क्योंकि न्यू एज टेक्नोलॉजीज दिन प्रतिदिन आ रही है, आप भी जान रही हैं कि AI इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद EV आ गया है, फिर IoT आ गया है।

0: इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया है। तो बेसिकली हमारा क्या है कि एक हमारा सिलेबस अपडेट होता रहे समय से, और साथ ही साथ क्या है कि जो हमारे ट्रेनर्स हैं उनको भी बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाए, जिससे क्या है कि वो ट्रेनीज को अच्छी ट्रेनिंग दे सकें।
1: अच्छा, आपने सिलेबस चेंज होने की बात की है कि पुराने पैटर्न पे जो काफ़ी समय से कोर्स चलता आ रहा है, तो इस सिलेबस को बदलने के लिए क्या प्रयास किए गए?
0: सिलेबस को जैसे जो हमारा मेन गवर्निंग अथॉरिटी है DGET, वो समय समय पे जो है उसकी कमिटीज़ बैठती हैं और जो है सिलेबस अपडेशन होता है। बट क्या है कि वो धरातल पे पहुंचने में समय लग रहा है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। हर वर्ष जो है हमारे जो नए नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जो रिलेटेड हैं इस वक्त की टेक्नोलॉजी से। फिटर और इलेक्ट्रीशियन में भी बहुत सारी ऐसी मशीन आ गई हैं जो ऑटोमेशन पे वर्क करती हैं। साथ ही साथ जो है शॉर्ट टर्म जो कोर्सेज है वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। हमारे साथ जो UPSDM के कोर्सेज हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, आगे का मोटो है हमारा वो यही है कि हम जो है ऐसी स्किल्स पे काम करना शुरू करें जो सही में जिनके में मार्केट में आवश्यकता है। कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बीच बीच में जो है फीडबैक बच्चों से भी लेते हैं और इंडस्ट्रीज़ को भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस शुरू कर दिया है। उससे क्या होता है कि इंडस्ट्री हमें सजेस्ट करती है कि वो किस तरीके का पैटर्न चाह रहे हैं और किस तरीके की मशीनों के ऑपरेटर्स चाह रहे हैं। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि हम अपने सिलेबस को उसके अकॉर्डिंग ही अपडेट कर रहे हैं।
2: इन सारी बातों से समझ में आया कि पाठ्यक्रम में बदलाव की बेहद जरूरत है मांग के अनुरूप, साथ ही साथ जरूरत है प्रशिक्षकों को तैयार किए जाने की नई टेक्नोलॉजी के साथ। तो दोनों ही दिशा में कदम बढ़ाए जा चुके हैं। अब कदम बढ़े हैं तो क्या बदलाव दिख रहे हैं ये भी जानते हैं।
0: 5 साल पहले जो हमारा कोर्स था वो करीब 1600 आवर्स का था पर ईयर का, बट उसको ट्रिम करके हमने 1200 आवर्स कर दिया है। हमारे कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जिनकी एंट्री 8th क्लास से होती है और कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जो 10th क्लास से हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो 12th क्लास करना चाहते थे बट उनका टाइम ITI में यूज़ होता था तो वो कर नहीं पाते थे। बट हमने सिलेबस को इसमें मॉडर्नाइज किया कि अगर वो टेक्निकल कोर्सेज हमारे यहाँ पढ़े सिर्फ उसके बाद लैंग्वेज कोर्सेज का पेपर दे दें तो उनको क्या होता है उनको 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट भी मिल जाती है। तो ये एडवांटेज, एक 240 आवर्स का कोर्स हमारे यहाँ टीचर्स अवेलेबल हैं जो उनको लैंग्वेज के बारे में पढ़ाते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ 150 आवर्स की OJT होती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, जो इंडस्ट्रीज हमारे एरिया में होती है लोकल, उनसे हम लोग MOU करते हैं और वहाँ पे बच्चे हमारे 15 डेज के लिए 20 डेज के लिए जाते हैं। तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस ले पाते हैं जो ओरिजिनली इंडस्ट्रीज में काम हो रहा है।
2: समय की जरूरत है कि स्किल्ड मैन पावर हमें मिले, और स्किल्ड मैन पावर तभी मिलेगी जब वो प्रशिक्षित होगी। ऐसे में शॉर्ट टर्म कोर्सेज बहुत ही मुफीद जान पड़ते हैं, लेकिन अगर ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज में कुछ कोर्स ऑनलाइन हो तो और भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि समय कम है और मांग ज्यादा स्किल्ड लोगों की। ऐसे में जरूरी है कि हम मल्टीपल स्किल को एक साथ सीखें। इस बारे में भी हमने बात की और जानना चाहा कि इसका समाधान कैसे हो रहा है।
0: ऑनलाइन कोर्सेज जैसे AI संबंधित कोर्सेज है, सोशल मीडिया से संबंधित कोर्सेज है, तो ये कोर्सेज धीरे धीरे इकोसिस्टम में आ रहा है। होपफुली नेक्स्ट 6 months to 1 year में ऐसे कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे जो बेसिकली पूरा फुल टाइम ऑनलाइन होंगे। बट अगर हम ITI की बात करें, हमारे यहाँ जो फिजिकल वर्क है उसको हम लोग स्मार्ट वर्क की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं, और लेकिन क्या होता है कि बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए ही होता है। तो हम ये कर सकते हैं कि मिक्स करें, हमारा थ्योरी बेस्ड पार्ट है उसको हम ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं और जो प्रैक्टिकल बेस्ड पार्ट है वो हम उसको फिजिकल करें।
2: पूरे देश को स्किल्ड करना है, इसके लिए कौशल विकास मिशन जैसी योजनाएं हैं, ITI जैसे इंस्टीट्यूट हैं, समय की मांग के अनुरूप तैयारियां चल रही हैं। जाहिर सी बात है कि जब चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, तो समाधान भी होंगे ही। क्या समाधान निकालने की कोशिश हो रही है वो भी जान लेते हैं।
0: मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में जो बच्चे जाते हैं वहाँ से वो डिमांड होती है उनके लिए कि वो नई मशीनों पर काम करें, तो हम लोग पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। अब क्या है, हम लोग कोडिंग वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बच्चों को नई नई टेक्नोलॉजीज पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तो ट्रेनर्स को भी पहले एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, जो एक्सपर्ट्स हैं इंडस्ट्री के वो आते हैं शॉर्ट टर्म, वो हमारे ट्रेनर्स को सिखाते हैं, फिर वो ट्रेनर्स हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं। तो इससे एक पॉजिटिव इफेक्ट आया है, इंडस्ट्रीज की तरफ से भी फीडबैक अच्छा है कि अब बच्चे जो है एक बेसिक नॉलेज तो उनको हो जा रही है। बाकी इंडस्ट्री का भी एक इकोसिस्टम होता है, वहाँ बच्चे जाते हैं वो एक सुपरवाइजर के अंडर में ही रहते हैं, हमारे यहाँ से बेसिक सीख जाते हैं और देन जिस प्रोफाइल में वो जाते हैं उस तरीके से वो काम कर लेते हैं वहाँ पे।
2: दोस्तों, प्रगति की रफ्तार बदल रही है और बदल रही है जिंदगी की चाल भी। जरूरत है इसे संवारने की, समझने की और आगे बढ़ने की।
3: मुट्ठी में कुछ सपने लेकर

भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं।

होती हैं। तो ये बात सच है कि जब आप कोशिश करते हैं तभी आप सफलता की तरफ आगे बढ़ते हैं, आपको आपकी मंजिल मिलती है। फिलहाल दोस्तों आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें खतों के माध्यम से जरूर बताइएगा। हमारा पता है नई उड़ान कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो दीजिए आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी कि अभिषेक को इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
7: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: हम अपने सुनने वालों को एक बार पुनः याद दिला दें कि आज शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में आप सुनेंगे खरीफ सब्जियों की अगेती खेती के

0: क्रीडाङ्गणे पंजाब किंग्स दलम अद्य मुंबई इंडियंस दलम सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्ध सप्तवादने भविष्यति। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। वैश्विक अनिश्चिततायाः आर्थिक समाह्वानानां च मध्ये ब्रिक्सदेशाः रचनात्मिकां भूमिकां निर्वहन्तीति भारतेन दृढतया प्रतिपादितम्। श्वः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः आबुधाबी यात्रायाः समये भारत यूएई देशौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धान् अग्रिमस्तरे नेतुं सज्जते स्तः। कांग्रेस दलस्य नेता वी डी सतीशन वर्यः केरलम् राज्यस्य मुख्यमन्त्री भविष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी।

0: जय हिंद।
1: रामजीत भैया।
0: हाँ नो भैया।
1: देखो भैया, ये समय जो मौसम का पूरा आवाजाही लाग है और वहीं देखते रहो कि कितना तेज गर्मी पड़त रही।
0: बिल्कुल भैया, और जौन बात कहो गर्मी गर्मी तो ऐस पड़त है कि कबो कबो तो मुड़ मुड़ पेराई लागत है। और हम कल ही देखे हैं कि हमारे घर ही में हमार माई छत पर जात रहीन और एकदम से उठिन और जौन दीवारी कोरा रहे वो लाग गए चुटाई गई। तो जैसे चुटाइन भैया फिर तुरंत तो हम तो पहले सोचन कि घर ही ठीक हो जाए, लेकिन फिर ये कुल नायकी है उन्हें लेके गए डॉक्टर साहेब के यहाँ। और फिर हुआ हम जाए देखन तो ये देखा थे कौ जने एक जने गाड़ी से चुटाई गए रहे, एक जने का बोला था सामान उठावत रहे वो का गोड़े गिराए ले रहे। तो जौन लापरवाही होत है अगर हम पंच अपने जीवन में ना रखी तो जौन घटनाएं हुए वाली हैं उनसे हम पंच बच सकी थे।
1: बिल्कुल भैया सही कहा था, दुर्घटना तो कोई के साथ कब्बो घट सके थे, लेकिन जो हम कहा चाहते रहे हम ये बतावत हैं आपसे कि ये जो मौसम बदल रहा है, गर्मी रही, गर्मी के बाद फिर देखो कहीं कहीं बारिश भय और तेज हवा चली, ठंडक आई गई, तो मौसम के बदले से भी तमाम स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ जाती। तो हम पंचन के यहाँ होत कहा है कि जो शारीरिक स्वास्थ्य खराब बात अपन खेती पाती में यहाँ या दिक्कत शुरू हो जाए या जो अपन काम काज है वह उससे प्रभावित होते हैं, है ना। और काम काज तो प्रभावित होता है और साथ ही साथ ही इलाज करावे में अच्छा खासा पैसा भी हमारे लोगों के लग जाता है।
0: बिल्कुल भैया, तो ये सबसे बचकता है सबसे बढ़िया एक तो ये है कि हम पंच कोशिश करी कि यही मेरे का कोनो दिक्कत ना ही हो, और अगर गलती से हो गए तो वही के व्यवस्था रखे चाहिए। मूल ये कह सबके जो व्यवस्था है वो अपन सरकारों हम पंचन की ताएँ करत है कि अगर ऐसा कोनो हैवी दैवी परी तो जे हम पंचन का कोनो मेर के दिक्कत न हुए।
1: बिल्कुल सही कहा था भैया, जो ना अपन केंद्र सरकार है वो हम पंचन के स्वास्थ्य के दिना बहुत ख्याल रखा थी और यही लिए जो केंद्र सरकार है एक योजना चला रही है आयुष्मान भारत योजना। ये आयुष्मान भारत योजना जो है ये हम पंचन के स्वास्थ्य संबंधी योजना है। ये हमन जे हम पात्र अभ्यर्थी हैं वह यह योजना का लाभ उठा सकते हैं, जाके अपने को नज़दीकी जनसेवा केंद्र में आधार कार्ड और राशन कार्ड ले जाए के अपन पंजीकरण कराए के ये कार्ड का बनवा सकत हैं।
0: बिल्कुल भैया, और कार्ड बनवाई के फिर अपन वही के जौन होते है वही का कार्ड में बनवायु लेते हैं आयुष्मान जगह कार्ड कहा जाता है। और फिर वो का ले के अगर कौन अस्पताल में जाइए तो हुआ जौन उनका इलाज है वो 5 लाख तक उनका निःशुल्क इलाज हो जाए और कोनो मेर के उनके जेब पर भार न पड़ी।
1: बिल्कुल सही कहा तो भैया कि कोनो प्रकार का उनका आर्थिक बोझ न पड़ी। और यह योजना के सबसे खास बात यह है कि योजना ग्रामीण और शहरी दोनों लोगों के लिए है और साथ ही साथ जो सरकारी अस्पताल है वह मन तो निःशुल्क इलाज मिलबे करी, जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहूँ में यहाँ जाए पे यहाँ वह व्यक्ति के यहाँ निःशुल्क चिकित्सा के सुविधा उपलब्ध हो जाए।
0: बिल्कुल भैया, बस यहाँ मन ये चीज़ जरूर ध्यान रखें कि हुआ जाए के आपन कार्ड दिखा लिए और उनसे पूछ ले कि हाँ भैया ई कार्ड पर हमें यहाँ इलाज मिल पाई कि ना मिल पाई, यही के का व्यवस्था है, कैसे हमें का करे है। ई ना हो कि यही झोंक में रह जाए कि हमारे कार्ड जो है हम कार्ड से इलाज कराए लेब, कार्ड से इलाज करा

0: पहले भी पता लाग हुआ, बिल मिल गया हाथे में तो स्थिति और गड़बड़ाई है। तो यही मेरे के चीज़ ना हुआ, पहले जाए के पूरी जानकारी कह लें, अपन कार्ड दिखाए दें, अपन आधार कार्ड दिखाए दें, और जब हर मेयर से संतुष्ट हो जाए तब अपन इलाज आगे बढ़ावें।
1: नहीं बिल्कुल भैया सही कहा, तो जब पंजीकरण हमारा हो जाए, कार्ड आपके हाथ में आ जाए, तो वह कार्ड का दिखावे पर तुरंत रूप में आपका निःशुल्क चिकित्सा अस्पताल का मुहैया करावे का है ना। और ये बहुत बड़ी सुविधा है, कहा से हम पंचन का पता चले कि कहूँ अगर कोनो प्रकार के शारीरिक स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, 2-2 लाख रुपये की व्यवस्था करे पड़े, तो अचानक से हाथ पैर फूल आवत रहा कि कहाँ से अब कर्जा काढ़ा जाए। और सरकार के यह योजना के लाभ से ही है कि कोनो प्रकार के अगर कोनो रोग व्याधि आ जाती तो अब यह के चिंता करे जरूरत नहीं है कि अब धन कहाँ से आवे, साहूस कर्जा लेके साहूकार से कि कहाँ से का करे है।
0: बिल्कुल भैया, और यह सब चीजें जब धीरे धीरे हो जाती हैं तब तो हम पंच देखा अब पहले से कितना आगे बढ़ गया है। पहले से अपन गांव घर, पहले घर कच्चा रहता रहा, अब घर देखो सबका पक्का हुए लाग है। पहले कितना मने बीमार पड़ रहे और कितना काल के गाल में चला जात रहे, मूल देखो अब गांव के गांव खुशहाल रहे लाग है। और यही कहा जात है सतत विकास, यानी जौन धीरे धीरे विकास चल रहा वह हो, अपन आस पास जौन चीज़ें हैं उन्हों बची रहें, हमार जौन पीढ़ी है और जौन आवे वाली पीढ़ी है दोनों केर फायदा होए।
1: बिल्कुल सही कहा, तो भैया ई नहीं क्योंकि विकास के लक्ष्य ई रहा है कि खाली हम आपन पेट भर ली, मतलब जो संसाधन है वह का अपना तो उपयोग में लेके आई, लेकिन वह का यह लायक न छोड़ी कि जो आवे वाली पीढ़ी है वह वह का समुचित ढंग से अपने प्रयोग में ले आवे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी चीज़ है कि जब हम विकास करी तो यह मेरा विकास रहा है कि जो भी संसाधन है वह का वह सुरक्षित रहा है, और जौन स्थिति जो आवे वाली पीढ़ी है वह का प्रयोग में लेके आवे। और ई देखो जो आज आपने बैठकी है यमन, यही सब विषय पर हम जानकारी लेके आए हैं।
0: बिल्कुल भैया, जानकारी तो हो इनका चाहिए, काहे बदे वह नहीं जानकारी से देखो कितना कुछ हम पंचायत सीख पाई थे, और अपने गांव घर में जौन बदलाव हो रहा है, जौन चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में जानकारी ली थे। तो यही बदे आज के बैठकी विषय यह है कि सतत विकास लक्ष्य और ग्रामीण बदलाव, और यही पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर हरिश्चंद भैया। तो आप यह जानकारी का सुना जाए, समझा जाए और जाना जाए।
1: बिल्कुल भैया सुना जाए।
2: वास्तव में सतत विकास लक्ष्य का मतलब रहा है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों और उनके अवसरों को सुरक्षित रखा जाए। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संगठन ने वर्ष 2015 में लक्ष्य निर्धारित किए थे और यह था 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्यों की पूर्ति कर ली जाए। उद्देश्य जो माने गए थे, भूख और कुपोषण को समाप्त करना, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, छोटे किसानों का समर्थन भूमि प्रौद्योगिकी और बाजारों का सामान पहुंच सुनिश्चित करना, गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य स्वच्छता, लैंगिक समानता एवं पर्यावरण संरक्षण, कुल 17 घटक सतत विकास में निर्धारित किए गए थे। और इन घटकों के माध्यम से यह निश्चित किया गया था ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाएंगे। इसका प्रमुख कारण ये भी है कि भारत में लगभग 63% आबादी अभी भी गांव में रहती है, और हमें भलीभांति स्वीकार करना होगा कि भारत में सतत विकास की सबसे बड़ी प्रयोगशाला गांव ही हैं। शहर विकास का चेहरा दिखा सकते हैं पर गांव विकास की जड़ बताते हैं, इसलिए सतत विकास लक्ष्यों की सफलता खेत, पंचायत, महिला समूह, स्कूल, आंगनबाड़ी, तालाब, जल, जमीन, जंगल, जलवायु, सड़क और ग्रामीण आजीविका में दिखाई देनी चाहिए। यद्यपि इस दिशा में सतत और सघन प्रयास हुए हैं जो बदलाव के रूप में देखा जा सकता है, जैसे हर रूप में गरीबी का अंत, इस दिशा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण परिवारों को राशन, आवास, पेंशन सुविधाएं तो उपलब्ध कराई गई हैं, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान, किसान सम्मान निधि, बैंकिंग जन खाता के माध्यम से लोगों को वित्तीय सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं ने ग्रामीण जीवन में सुधार आया है। आजीविका की मजबूती है तमाम रोजगार आयाम

0: विकसित हुए हैं, जैसे मनरेगा में 100 दिन के बजाय 125 दिन की मजदूरी, और इस योजना का नाम अब जो रखा गया है वो है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और एवं आजीविका मिशन। स्वरोजगार, डेयरी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कौशल विकास के लिए तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, इंटरनेट की व्यवस्था, उद्योग बढ़े हैं। हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों का बाजार व्यवस्था, जिला में उत्पाद को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर विकसित किए जा रहे हैं। महिलाओं के समूह सहायता ने भी परिवार के रोजगार में सृजन बहुत मजबूती से किया है। कृषि विकास पर जाएं तो आधुनिक कृषि तकनीक का उपयोग, उन्नत बीजों का प्रयोग, नगद फसलों पर रुझान, किसानों की सिंचाई सुविधाएं, सोलर का बढ़ावा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि मंडियों और भंडारण की सुविधाएं, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, फसल बीमा योजनाओं में प्राकृतिक आपदाओं की सुरक्षा मिली है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विद्यालयों में बालिका शिक्षा में डिजिटल एवं स्मार्ट क्लास में डिजिटीकरण, मातृ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वच्छ जीवन शैली, पोषण अभियान, मिड डे मील, बच्चों के स्वास्थ्य पर बढ़ावा दिया गया है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी अच्छे प्रयास हुए हैं। स्वयं सहायता समूहों में प्रशिक्षण ऋण, पंचायतों में महिलाओं की भूमिका, महिला हेल्पलाइन सुरक्षा कार्यक्रम से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है। बैंक खाता और विभिन्न कार्यों में हिस्सेदारी, सामाजिक स्थिति में सुधार, जागरूकता के कारण काफी महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है। स्वच्छता और पेयजल, शौचालय का उपयोग, खुले में शौच की समस्या को कम करना, पेयजल एवं पाइपलाइन की व्यवस्था, जल संरक्षण, जल संचयन, लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है, कचरा प्रबंधन, सफाई, बेहतर परिणाम आए हैं। स्वच्छता वातावरण में ग्रामीण स्वच्छता भी एक स्वास्थ्य में सुधार लाया है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी हमारी अच्छी पहल हुई है, जो ग्रामीण बदलाव के लिए एक अच्छा सूचक है। वृक्षारोपण की प्रवृत्ति बढ़ी है, भूमि संरक्षण के प्रति लोगों के प्रति रुझान हुआ है, रासायनिक खेती के बजाय प्राकृतिक जैविक खेती पर ध्यान दिया गया है, नदियों तालाबों की सफाई और जल भराव पर बल दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा पर प्रमुखता के साथ साथ सतत विकास के लिए पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के प्रयास जारी हैं। जीवन स्तर में भी सुधार आया है, लोगों की पर कैपिटा इनकम दुगुनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी आय के संसाधन थे वो बढ़े हैं। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में भी हम लोगों ने 100% का स्कोर प्राप्त किया है, जो सतत विकास लक्ष्य का एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। हाँ, चुनौतियां भी हैं। उन चुनौतियों को सामना किए बगैर अच्छा ग्रामीण बदलाव की कल्पना करना उचित नहीं होगा। पात्र लाभार्थियों को रोजगार देना, पात्र लाभार्थियों को लाभ दिलाना, कौशल विकास के लिए क्लास 6 से लेकर डिग्री तक कौशल विकास किया जाए, बच्चों को जोड़ा जाए, प्रशासनिक लापरवाही के प्रति तत्काल कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो, फसल नुकसान, प्राकृतिक आपदाओं के क्षति का लाभ तुरंत दिया जाए, कृषि उत्पाद के विपणन में बिचौलियों की दंडित किया जाए, ग्रामीण उत्पाद के मूल संबंधन का प्रशिक्षण देकर स्थानीय स्तर पर उद्यम स्थापित हों, वृक्षारोपण के लक्ष्य से ज्यादा उनके संरक्षण और उनकी उपलब्धि मानी जाए, स्नातक बच्चों को रोजगार उन्मुखी बनाना, औद्योगिक संस्थानों को जोड़ना और प्लेसमेंट कराना हमारा ध्येय होना चाहिए। ग्रामीण पेयजल केवल पाइपलाइन से ही नहीं सीमित रखा जाए, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता कैसी है उस पर विशेष बल दिया जाए, वन कटाई को रोका जाए, शिक्षा की गुणवत्ता, बौद्धिक विकास के लिए बौद्धिक क्षमता और कौशल विकास पर बल दिया जाए, फसल उत्पाद के पहले ही राज्य एवं राज्य के बाहर अच्छी कीमत दिलाना और बाजार सेवा देना हमारा समर्पण होना चाहिए, भूगर्भ जल संरक्षण हेतु जहाँ जहाँ समरसेबल बोरिंग हुई हैं उनको पंजीकृत किया जाए, उत्तर प्रदेश ने एक्ट बनाया है उसको कठोरता से लागू किया जाए, ग्रामीण मूल्य संवर्धन के लिए हमें व्यापक ध्यान देने की आवश्यकता है।
1: भैया
2: हाँ, रामजी भैया,
1: कितना बढ़िया तना जो

0: ओकर विकास हो रहा वही के बारे में बताएं डॉक्टर हरिश्चंद्र भैया। तो सतत विकास लक्ष्य और ग्रामीण बदलाव पर इतनी बढ़िया तरह जानकारी दीन, तो इसके लिए डॉक्टर हरिश्चंद्र भैया के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल भैया, और देखो ये जानकारी के बातें हो ही गए, बतवही बहुत हुई गए, अब अपने पंचन भाई का इंतजार हुई कुछ गीत गो नहीं गए।
0: बिल्कुल भैया इंतजार हुई, काहे कोनो पैरवा जौन है ना वो थिरका तो है, तो आओ चलो सुनवाए दिन जाए एक नकरा जौन है अल्पना मेहरोत्रा बहनी का आवाज में।
1: बिल्कुल।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: रामजीत भैया।
4: हाँ अनु भैया।
3: जाना तो जो अपन पंचे हैं, ये समय जो खेती पाती है, वही खेती पाती के खरीफ के फसल के तैयारी में लाग हैं। कुछ लोग जो हैं वह कुछ सब्जी जो कद्दू वर्गी हैं वह के बुआई किए हुए हैं, कुछ के फल टूटे लगे हुए हैं। अब होत का है, हम पंचे जो अपन फसल है वह का कीट पतंगा से बचावे खाती जो उनकी हमारे फसल का नुकसान पहुँचावत हैं, तमाम तरह के रसायन के प्रयोग पर लावा जाता है।
4: बिल्कुल भैया, अब देखो अपन जौन फसल ठाड़ है वह पे हम पंच इतनी मेहनत लगाई थे, इतना पैसा लगाई थे, तो ऐसे तो हम वही का छोड़ न देवे भाई। लड़का के ना वही का पाला जाता है, बड़ा कीन जाता है, और जब फिर वो सब्जी बाजारे में जाता है तो वह का जब दाम बढ़िया मिला था तो और अच्छा लागत है। मूल यह सब बीच में जौन बात कहो कि जौन कीड़ा है वह सब अगर लग जाते तो फलों खराब हो जाते, अपन पेड़ों कबो कबो खराब हो जाते, और कबो कबो तो बहुत नुकसान हो जाते, तो उन सबसे तो हम पंचन का बचाहीन का चाहिए।
3: बिल्कुल सही कहा तो भैया, हम पंचन का कीट पतंगन से अपने फसल का बचाव चाहिए, लेकिन वो एक आजात है, कबो कबो हम पंचे थोड़े सा लापरवाही कर दी थे। कारण से ये है कि जो नहीं कृषि रसायन का हम लोग प्रयोग करी थे अपनी खेती पाती में, ये जैसे कीट पतंगन का नष्ट करते हैं, तो अगर इनके प्रयोग के करत समय में हम सब पंचे सावधानी न बरतब कि सावधानी यह तरीके से कि वह अपने स्वास्थ्य का कोनो प्रकार से नुकसान न पहुँचाए, जैसे इनके छिड़काव करते समय कहीं से आँख में न चले जाए, या हम छिड़काव करते समय जो हाथ है वह का पूरा दस्ताना का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि हाथ ढका रहा है और त्वचा के संपर्क में ना आवे, नहीं तो उसे कोनो प्रकार के समस्या हो जाए, जलन पैदा हो लागे, और जो कपड़ा है वो फुल आस्तीन के पहना जाए, और सबसे मेन चीज ये है ध्यान रखे का कि वह समय में हम सब कुछ खाए पिए ना, अपने मुंह का ढक के रखी और मास्क लगाए रही, नहीं गमछा से कस के बांधे रही कि वह का जो गंध है वो अपने सांस के द्वारा भीतर शरीर के न जाए, नहीं तो कोनो प्रकार के रोग व्याधि के हम सब चपेटे में आ जाए।
4: बिल्कुल भैया, अब वही परसों में घटना है, हम काव की हन कि संझा का अपने डिब्बा बांधन और दवाई डाले लागे, तो पत्नी पीछे से आई, कहीं देख नहीं रहे हो हवा कौनी वार चल रही, तुम डाय कौनी वार रहे हो, कुल तोहरन ऊपर आई और बीमार हो गए। संजक फिर हमसे न कहो कि हमें ई लायक दो, हमें ऊ लायक दो, और कही हो बहुत ठीक ना हुई, तनी भैया गुस्साए गए, जब गुस्साए गए तो हम ऊपर समझन और फिर हम अपन दिशा सही कह ली हन। तो यहू केर जो ध्यान है वही का जरूर रखे चाहिए कि दवा ववा डाल समय अगर हवा ववा तेज है तो वह दिशा में ना डाले कि वही दवाइया जौन है अपने न ऊपर आवे, तो वो से अगर सांस के माध्यम से कौन कौन माध्यम से या त्वचा पड़ जाए तो हम पंचन के स्वास्थ्य खराब हो सकते हैं।
3: बिल्कुल सही बात है भैया, और देखो एक बात और है कि कोशिश ई की जाए कि जितना मात्रा में हमें जरूरत है उतने में लेके आए वह के प्रयोग कर ली कि वो खत्म हो जाए, घर में रखने की जरूरत न पड़े। और बहुत कहा कब कब हम पंचे सोचे थे कि कोनो खाली डब्बा कंटेनर बढ़िया दवाई के मिलेगा तो वह कल आग घर में रख ली तो वहाँ कुछ और चीज मिला के रखे लागे, तो यह प्रकार से तमाम प्रकार के दुर्घटना घटक संभावना घर में रहा थी, तो वही चीज लेके आई जितना उपयोग में आ जाए, वह खाली कंटेनर या डब्बा रहा वह का हम नष्ट कर दिया, कोनो डब्बा में माटी के अंदर दबा दी।
4: बिल्कुल भैया, मूल कौदा ऐसा होता है कि हमारे जोत वतनी बड़ी नहीं है और जौन हम दवाई लाए न वो के मतलब मात्रा हमें डावक बहुत कम है मात्रा।

0: कुछ ना कुछ तो बचिन जात है।
1: हाँ।
0: तो वहू के ताएं हम पंचन का ई करक चाहिए कि सबसे पहल अपन जौन छोट लड़का हैं उनके पहुंच से दूर रखे चाहिए।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: ताखा बयाला जौन जगह हुए हुआ ऐसे जगह न रखें कि धूप आवे या हवा आवे तो गिर जाए डब्बा और फिर वही के क्यों हाथे लग जाए या नुकसान हो जाए या जमीन में गिर जाए। तो ये सब चीजन से तनी बचे चाहिए। दूसरी चीज अगर दवाई बच गया है तो यहो देख लिए कि वो कब तक वही के इस्तेमाल हो सकत है, नहीं तो कऊ जने का हो सालन साल दवाई धरे रही है कहीं भैया अगले सीजन में आए तो हम

0: तो यहो सबका ध्यान रखे चाहिए। तीसर यह चीज कि कहू दाएं अगर डब्बा खत्म हो जाता है तो हम पंच यहो कह दी थे कि यहार वहार डाय दिहन नाले में डाय दिहन, तो वही के यह मेर इस्तेमाल बिल्कुल ना करे चाहिए। काहे ताए नलियों जैसे भाई गांव घर के मवेशी है पानी भर गया पानी पिए थे तो वनहु पंचन का नुकसान हो सकत है जानवरों का। तो ये सब चीज का ध्यान रखे चाहिए। और जौन डिब्बा या वक्के जौन पन्नी हुआ था
1: कुल मिला के कि वहाँ का कोनो जगह पर ले जाए के नष्ट कर दी कि कोनो उस प्रकार से वही के संपर्क में दोबारा ना आवे पावे।
0: बिल्कुल भैया वही के कुल मिला के इस्तेमाल वो जौन रक्षा है वही का ध्यान रखे चाहिए और वकरे साथे आपन जौन सुरक्षा है वो का समझ चाहिए। कहे ते अगर कहूँ स्थिति गड़बड़ाई गए तो निश्चित जौन है वो हादसा बड़ा हो सकत है। और एकरे साथे साथे अपने खेती पाती में हम पंच का ज्यादा फायदा किता है। हम पंच का करी थे कि अगेती खेती की जात है
1: जो जल्दी तैयार हो जाए।
0: और जल्दी अगर खेत बाड़ी तैयार हो जाता है जल्दी अपन फसल तैयार हो जाता है तो बाजारे में वही का दामो तनी बढ़िया मिल
1: अच्छा मुनाफा हो जाता है। तो देखो बात बिल्कुल सही कहा था कि अगेती खेती के तो आज के जो अपन बैठकी है ये बैठकी में हम यही विषय से संबंधित जानकारी लेके आए हैं जो विषय है खरीफ सब्जियों की अगेती खेती। यह पर जानकारी दी नहीं डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा और इनसे बतकही करी नहीं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो आओ यह का सुना जाए और लाभ उठावा जाए।
0: बिल्कुल भैया
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन आप कर रहे हैं तो खरीफ सब्जियों की अगेती खेती कैसे करें ताकि मार्केटिंग कर अच्छा मुनाफा कैसे कमाएं, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश से संयुक्त निदेशक शाक भाजी डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जहां खरीफ सब्जियों की अगेती खेती करना चाहते हैं किसान भाई बहन तो क्या सलाह है?
3: किसान भाइयों बहनों नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जून के पास में हमारी जो गर्मी की जितनी भी हम जायद में सब्जियां करते हैं वो समाप्त होने वाली लगती हैं और जो खरीफ की मेन सब्जियां होती हैं उनको प्रारंभ होने में फलाने में देर लगता है। इसलिए इस समय में अगर हम खरीफ में होने वाली अगेती सब्जियां कर लेते हैं तो उससे में आमदनी ज़्यादा होता है और किसानों को बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है।
2: यानी खरीफ सब्जियों की अगर अगेती खेती कर लिया जाए तो जायद सब्जियां खत्म होने से पहले ही तैयार हो जाएंगी?
3: हाँ, जायद सब्जियां खत्म होने से पहले तैयार हो जाएगी और जो हमारी मुख्य फसल खरीफ वाली आती है उससे पहले मिल जाती हैं तो इससे हमें लाभ ज़्यादा होता है। और जो हम खरीफ में सब्जी लगाते हैं मुख्यतः वही सब्जी ही हमारी क्या नाम है अगेती के रूप में लगाई जा सकती हैं। उसमें विशेषकर जो हमारी सब्जियां हैं वो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं जो लता वाली होती हैं।
2: जैसे
3: खीरा है, लौकी है, करेला है, तुरई है, चिचिन्ना है, कुम्हड़ा है और इसके साथ साथ भिंडी भी हम लगा सकते हैं।
2: डॉक्टर साहब खेत का चुनाव कैसा हो?
3: जैसा कि बरसात प्रारंभ होने वाला होता है और इससे मेन बचाव की हमारी होती है कि वहाँ पानी लगने ना पाए, इसलिए ऐसे दोमट मिट्टी का चयन करना चाहिए जहाँ ढाल हो, मिट्टी रुकने ना पाए, थोड़ा ऊंचाई पर हो और इसकी बुआई भी हमें मेड़ों पर ही करनी चाहिए जिससे पानी लगने की समस्या ना हो। पानी लग जाएगा तो उसकी जड़ें गल जाती हैं और कई प्रकार के फिर फंगस वाले रोग लगते हैं।
2: और नर्सरी में भी सावधानी रखनी हो?
3: हाँ, जैसा कि उस समय गर्मी का मौसम रहता है जब बरसात हमारी 20 जून से या उसके बाद में होती है, अगर किसान भाई उस समय बीज की बुआई करते हैं, जैसा कि हम प्रायः देखते हैं कि जो भी ये जायद वाली सब्जियाँ होती हैं लता वर्गीय सब्जियाँ होती हैं इनके किसान भाई सीधे बीज को ही जमीन में लगाते हैं, यदि जमाव होने के पहले बरसात हो जाती है तो वो बीज सड़ जाएगा, जमाव नहीं होगा। इसलिए दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि या तो बरसात होने के पहले पानी लगने के पहले इसका जमाव हो जाए, अंकुरण हो जाए, कम से कम दो पत्तियां तीन पत्तियां हो जाए, अथवा किसान भाई को ऊंची जमीन पर कहीं ऐसे पर पौधे लगाना चाहिए जहां पर वो पॉलीथीन से ढक के जो किलो टनल कहते हैं कि पॉलीथीन के लगा के उसके नीचे लगा दें जहां बरसात ना होने पाए और उसके अंदर पौधों को लगा दें। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने होती है कि जो हमारी लता वर्गीय सब्जियां होती हैं यदि हम उनको उखाड़ के पौधे के रूप में लगाते हैं तो पौधे मर जाते हैं। उद्यान विभाग में लगभग सभी जनपदों में हाईटेक नर्सरियां खोली गई हैं जिसमें हम प्लग टेक्नोलॉजी के बीच से जैसे अंडे के खाने होते हैं इसमें हम अंडे रखते हैं, ऐसे हमारी प्लग टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम कोकोपीट

0: और
1: वर्मी
0: मास
1: कुल है।
0: हाँ कोकोपीट, बर्मी कुलाइट और परलाइट मिला के उसमें हम पौधों को लगाते हैं। और चूंकि वो पाली हाउस में रहता है तो बरसात का और गर्मी का असर नहीं होता है, तो हम उसमें लगभग 15 से 1 महीना जो आम फसल होती है उससे पहले हम बेहन तैयार कर लेते हैं। वह किसान भाइयों के लिए उपलब्ध है और उसमें चूंकि मिट्टी के साथ में पौधा मिलता है तो वो फील्ड में जाने का मरता नहीं है। इसलिए किसान भाइयों को कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ भी उद्यान विभाग की हमारी हाई टेक की नर्सरियाँ हैं वहाँ से अपने पौधे पहले से आरक्षित करा लें और उसमें अच्छी प्रजातियाँ भी रहती हैं। किसान भाई चाहें तो स्वयं अपना बीज दे के और वहाँ पर उगवा सकते हैं। अगर अपना बीज देते हैं तो उनसे कम पैसे लगते हैं और अगर उद्यान विभाग अपना बीज के सहित पौधे देगा तो थोड़े से उसकी क्या नाम है दर ज़्यादा होता है।
1: यानी हर जनपद में जो हाईटेक नर्सरियां हैं उद्यान विभाग की और कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं,
0: बिल्कुल
1: वहां से
0: बिल्कुल
1: पौध ले सकते हैं किसान
0: हाँ
1: भाई बहन खरीफ सब्जियों की अगेती रोपाई के लिए, बुआई के लिए। डॉक्टर साहब, बीज शोधन और भूमि शोधन भी तो जरूरी है।
0: हाँ बिल्कुल, चूंकि नमी जमीन में ज़्यादा रहती है, वायुमंडल में नमी ज़्यादा रहती है, इसलिए जो भी कवकजनक बीमारियाँ होती हैं वो ज़्यादा लगती हैं। इसलिए किसान भाइयों को लगभग 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से फोरेट बुआई के लगभग 15 से लेकर 1 महीने के पहले से उसको ट्रीटमेंट कर दें और बीज को भी थीमेट से पर किलोग्राम बीज की दर से ट्रीटमेंट
1: यानी 3 ग्राम
0: कर दें,
1: प्रति किलो
0: प्रति
1: बीज के
0: किलोग्राम
1: हिसाब
0: बीज
1: से
0: को
1: बीज शोधन कर दें।
0: करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं जिनका चुनाव करें खरीफ सब्जियों के लिए? डॉक्टर साहब,
0: क्योंकि अगेती फसलें उगानी हैं तो हमें प्रजातियों का चयन बहुत ही शिद्दत से करना चाहिए। जैसे अगर लौकी करते हैं, काशी गंगा, काशी बहार, ये हमारी वाराणसी से निकली हुई प्रजातियां हैं, पूसा नवीन, पूसा समर, प्रोलिफिक लांग, और अर्का से जो हमारी IIHR बंगलोर से निकालती हैं उनकी भी वरायटियाँ हैं अर्का बहार, और कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज से नरेंद्र माधुरी और नरेंद्र शिवानी, ये लौकी की प्रजातियां हैं जो अगेती के रूप में बहुत अच्छी तरह से उत्पादन में लिया सकता है।
1: करेला में डॉक्टर साहब?
0: करेला में काशी उर्वशी, काशी मयूरी, पूसा दो मौसमी, पूसा विशेष, प्रिया, नरेंद्र बारहमासी, ये बहुत उपयुक्त प्रजातियां हैं। इसी प्रकार तुरई के लिए पूसा नसदार, चिकनी तुरई, काशी दिव्या, काशी किरण, पूसा चिकनी, स्वर्ण मंजरी, नरेंद्र पूजा, आजाद तुरई एक, ये बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं। किसान भाई लगा कर इनका अच्छा लाभ ले सकते हैं।
1: और कद्दू कुम्हाड़ा में?
0: और कद्दू में काशी हरित, काशी धौल, अर्का सूर्यमुखी, पूसा विश्वास, नरेंद्र अग्रिम, इसी प्रकार से एक चिचिन्ना जो किसान भाई लगाते हैं उसमें भी काशी दिव्या, काशी सुधा और पूसा चिचिन्हा, ये प्रजातियां अच्छी हैं।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ भिंडी अगेती लगाना चाहते हैं खरीफ के लिए, तो उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं?
0: भिंडी की अगेती प्रजातियां हैं काशी चमन, काशी निधि, काशी लालिमा, आजाद क्रांति, काशी विभूति, अर्का नामिका, प्रभनी क्रांति, बरसा उपहार, ये सब अगेती भिंडी के लिए अच्छी प्रजातियां हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने कहा कि नर्सरी भी महत्वपूर्ण है, तो कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो अगेती लगाना चाहते हैं, उनकी नर्सरी में कौन कौन सी खास सावधानियां हैं?
0: नर्सरी में जैसे हमने बताया कि उस समय बरसात का सीजन होता है या गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हमें ऊंचे स्थान पर लगाना चाहिए कि जहाँ पर पानी ना भरवा पाए वहाँ ढाल हो, और अच्छा होगा कि वो किसी पॉलीथीन से उस पर आवश्यकता अनुसार ढकने की व्यवस्था हो, दिन में ज़्यादा गर्मी हो तो हम उसको छाया कर सकें और बरसात हो तो उसको भीगने से पानी भरने से बचा सकें। और इसमें पौधे लगाने के बाद में मल्चिंग की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि बरसात के दिनों में जैसे ही पानी बरसात होती है बहुत ज़्यादा खरपतवार उगते हैं, यदि हम किसी खरपतवार से या प्लास्टिक सीट से हम उसको बिछा देते हैं,
1: यानी मल्च कर
0: हाँ
1: दें।
0: मल्च कर देते हैं, तो खरपतवार नहीं उगते हैं और हमें गर्मी के मौसम में या बरसात समय से नहीं हुआ तो नमी भी संरक्षित रहता है।
1: डॉक्टर साहब, खरीफ सब्जियों की अगेती खेती की बात चल रही है, तो क्या मचान पद्धति को भी अपना सकते हैं?
0: बिल्कुल, मचान पद्धत बहुत ही जरूरी होता है। जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि एक तो पानी भर जाता है, दूसरे जब जमीन पर फल लगते हैं, पौधे लगते हैं, तो ढेर सारे के कीट और पतंगे और रोग लग जाते हैं, फल को पौधे को नुकसान करते हैं। यदि हम मल्चिंग करके उसको ऊपर लेके जाते हैं तो पौधा भी सुरक्षित रहता है, फल की संख्या ज़्यादा होती है, फल का आकार बड़ा होता है और फल का नाम है ज़्यादा मात्रा में पौधे उत्पादन बढ़ती है,
1: यानी गुणवत्तापूर्ण उत्पादन होता।
0: गुणवत्तापूर्ण उत्पादन होता है। उद्यान विभाग किसानों को 10,000 पर हेक्टेयर की दर से मचान के लिए अलग से छूट भी देता है, तो किसान भाई अपना उद्यान विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करा के इसका लाभ ले सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब,

0: वैसे तो जल निकास का प्रबंध करेंगे, बरसात की फसल होगी, खरीफ सब्जियां, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो बूंद बूंद सिंचाई भी फायदेमंद होगा क्या?
1: हाँ बिल्कुल, उद्यान विभाग जो टपक टपक सिंचाई होती है, स्प्रिंकलर सिंचाई होता है, इस पर 90% अनुदान विभाग देता है। अगर किसान भाई इसको लगा लेते हैं तो निश्चित रूप से उत्पादन ज़्यादा मिलता है, पानी की बचत होती है और पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ लेता है और फल भी साफ सुथरा रहता है।
0: डॉक्टर साहब, चाहे सीधी बुआई करें जो खरीफ सब्जियां हैं उनकी अगेती, या अगर पौध नर्सरी से मिल जा रही तो उसकी रोपाई का अंतरण क्या होगा, लाइन से लाइन की दूरी, पौध से पौध की दूरी?
1: जो हमारी लाइन से लाइन जितने भी हमारी लता वर्गीय सब्जियां हैं उनकी लाइन से लाइन 1 मीटर से लेकर 2 मीटर तक हम रखते हैं। जैसे कद्दू हैं, लौकी हैं, जो ज़्यादा बढ़वा लेती हैं उनमें थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और खीरा है या चुकनी तुरई है उसको हम 1 मीटर से लेकर 2 मीटर तक रखते हैं। और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो हम 60 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा बड़ी कारण है कोई प्रजातियाँ, जैसे प्रोलिफिक लांग है, तो हम उसको दूरी 2 मीटर तक कर देते हैं पौधे से पौधे की भी।
0: फसल की भूख मिटाने के लिए खाद और उर्वरक का प्रबंधन कब, कितना और कैसे करना है डॉक्टर साहब?
1: खाद एवं उर्वरक के लिए तो जहाँ तक हो जाए किसान भाइयों को गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई पत्ती का उपयोग करना चाहिए, और रासायनिक खादों से कम उपयोग करना चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में हम जैविक खादों का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो 40-25-25 के दर से, यानी 1 एकड़ में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटास की मात्रा को देना चाहिए,
0: तत्व के रूप में
1: देना चाहिए। और जो भी खाद मिलते हैं उससे गणना कर लेनी चाहिए कि क्या नाम है, इन पोषक तत्वों उस खाद में कितनी मिलती है उसी अनुसार से इनको डालना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ सब्जियों की अगेती खेती के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके उद्यान निदेशालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: मेरा मोबाइल नंबर है 9415197845979785957 94-5-1-9-7-8-5-9-7
0: डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ सब्जियों की अगेती खेती कैसे करें, किसान भाई बहन कौन कौन सी उन्नत तकनीक अपनाएं और उद्यान विभाग से जो सुविधाएं मिल रही हैं उनका लाभ कैसे लें, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो भैया।
3: हाँ रामजीत भैया,
2: देखो डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा भैया कितना बढ़िया तना बताएं कि कैसन हम जो सब्जी के खेती में काउ कौन सावधानी रखे के कैसन कैसन फसल अपनावे है सब्जी के बीज। तो खरीफ सब्जियों की अगेती खेती पर इतनी बढ़िया जानकारी देखते हैं डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा भैया कर, उतने बढ़िया उनसे पूछ सकते हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया कर, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो भैया, ये जौन जानकारी के बात है और ये सब चीज़ है, ये सब पंचन हम पंच तो लेके अवे करी थे, साथ ही कुछ गीत गौने हो जाता है तो अपन कार्यक्रम का जौन आनंद है वो बढ़ ही जाता है।
3: बिल्कुल भैया, तो देखो
2: हाँ एक ठीक नकटा लायन है तनी सुनवाई दे।
3: हाँ भैया, जौन आज नकटा है ये है, एक बोल है आपन जीरा संभारी की तो है बलमा, और एक गायन ही वनिता शर्मा बहनी, तो आओ पंच भाई सुना जाए।
2: बिल्कुल।

0: राम जीत भैया।
1: हाँ भैया अनूप, देखो कितनी बढ़िया तना वनिता बहनी सुनाए रहे ना, और बिल्कुल सही बात है। कबो कबो अपन जियोरो संभाले पड़त है, और जो अपने साथी संगी हैं मनोक मतलब सहारा दिए पड़त है।
0: बिल्कुल भैया, ये तो है ही है, जब घर परिवार है आपन तो दोनों लोगों का एक दूसरे का पूरक बने
1: बिल्कुल
0: पड़त
1: है,
0: है।
1: यही वजह तो अपने खेती पाती में खेती और पाती दोनों साथे राखी जात है, और यही मेरे देखो अपन जो बैलगाड़ी है वो धीरे धीरे धीरे धीरे आगे बढ़त है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल। और खेती पाती पे यहाँ, जब खेती पाती की बात करो तो अपने जो पशु पहिया है उन्हों को जो है यह मियाँ शामिल है वो।
1: बिल्कुल भैया, हरहा गोरू है अपन, खेती पाती भय मौसम भय कुल चीज से अपन खेती पाती जौन है वो आगे बढ़त है। और अब पंचन का तनी मौसम के हाल चाल बताए दीन जाए।
0: मौसम का जो हाल है भैया वो रामजीत भैया, देखो जो सूचना है मौसम विभाग द्वारा मिली हुई
1: हाँ,
0: वह
1: अब
0: का
1: बताए दीन
0: पंचन का
1: जाए।
0: बताओ।
1: बिल्कुल भैया, तो भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार जौन आज के तारीख 14 का कहूं कहूं पर गरज चमक के साथ बौछार पड़े के संभावना है पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश दोनों जगह। और दिनांक 15 से लई के 18 तक मौसम शुष्क रहे के संभावना है। साथे ने आज के दिनांक में अगर चेतावनी कर बात की जाए तो वज्रपात के साथ झोंकेदार हवा के चेतावनी है, और 15 से लई के 18 तक कहूं कहूं पर उष्ण लहर चले के संभावना है, और बाकी मौसम ठीक है। तो
0: हमारे
1: यह है
0: तेज
1: मौसम की अब
0: तेज हवा के
1: जानकारी।
0: झोंका चली है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: भैया, और अब तनी जौन पंच भाई इंतजार कर हुई है बाजार भाव के, तो जौन चार मंडी के बाजार भाव है उन्हों का अपने पंचन का बताए दिन जाए।
0: बिल्कुल भैया, देखो जो बाजार भाव हमें मिला है प्रमुख चार शहरन के अपने, लखनऊ, कानपुर नगर, अयोध्या, गोंडा। यह हमन गेहूं दड़ा लखनऊ में है 2,590 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर नगर में है 2,585 रुपया प्रति क्विंटल, अयोध्या में है 2,585 रुपया प्रति क्विंटल, गोंडा में है 2,225 रुपया प्रति क्विंटल। चावल कामन है लखनऊ में

0: 1460 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर नगर में 3410 रुपया प्रति क्विंटल, अयोध्या में 3090 रुपया प्रति क्विंटल, गोंडा में 2975 रुपया प्रति क्विंटल, लखनऊ में है चना छोटा 6600 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर नगर में 6310 रुपया प्रति क्विंटल, अयोध्या में 6400 रुपया प्रति क्विंटल, गोंडा में 6750 रुपया प्रति क्विंटल।
1: बिल्कुल भैया, अब शुरुआत की जाए मटर सफ़ेद से, तो लखनऊ मंडी के बाज़ार भाव रहा 4350, कानपुर नगर 4570 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, अयोध्या 4270 और गोंडा 4220 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से। आलू जोन सफ़ेद होते वहीं का लखनऊ मंडी के बाज़ार भाव 700 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर नगर 640, अयोध्या 720 और गोंडा 715 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। प्याज लाल लखनऊ मंडी के बाज़ार भाव 1330, कानपुर नगर 1280, अयोध्या 1250 और गोंडा 1300 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से। अगर हम लहसुन की बात करें तो लखनऊ मंडी के बाज़ार भाव रहा 6930, कानपुर नगर 6550, अयोध्या 6900 और गोंडा 7800 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से। टमाटर जोन पक्का होता है वही के लखनऊ मंडी के बाज़ार भाव रहा 1320, कानपुर नगर 1360, अयोध्या 1950 और गोंडा 2025 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से। बैंगन के लखनऊ मंडी के बाज़ार भाव रहा 1840, कानपुर नगर 1740 और अयोध्या 2250 और गोंडा में रहा 3000 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से। ये रहे चार मंडी के बाज़ार भाव। और अब बात कह लीन जाए भैया कल के कार्यक्रम के, तो कल कार्यक्रम में लोकायतन में भैया कहा रही?
0: भैया कल लोकायतन में अपने पंच भाई सुनी है औषधीय पौधों से स्वास्थ्य संरक्षण, यह पर जानकारी दी हैं डॉक्टर तरुणा पांडे बहनी, और साथ ही खेती किसानी में जो है किसान डायरी कृषि समाचार पर आधारित यह कर आलेख एवं वाचन है अरविंद कुमार शुक्ल भैया का, और संपादन के नहीं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
1: तो यह है पंचो कल के कार्यक्रम, और अगर कार्यक्रम में कोनो बदलाव चाहें, कोनो चीज़ हम पंचल का बतावे चाहें, तो वही की तहें कागज कलम उठाए लें और लिखें हम पंचन केर पता। तो कार्यक्रम लोकायतन खेती किसानी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ पिन नंबर 226001। और साथ ही हम पंचन का यह बतावें कि अगर कोनो चीज़ आप अपने वस्तु चाहत हैं कि हमें यह के जानकारी मिल जाए, ये चीज़ हमें
0: सुझाव
1: नहीं सुने खे, तो वह सब हम पंचन का बता सकते हैं और वही का हम पंच अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करवाए।
0: तो भैया हाँ बिल्कुल भैया, आपके जो विचार हैं वो हमारे लिए बहुत मूल्य हैं, तो इसलिए हमें पाती जरूर लिख कर भेजो।
1: और यही के साथ है भाई, आपन जौन खेती पाती है वही का बढ़िया तना आपन आगे बढ़ाओ, और जौन आपन हरहा गुरु हैं वनों को ध्यान
0: हाँ।
1: रखो, आपन ध्यान रखो, और यही के साथ है देखो अपने बैठकी हाँ। केर समय हो चुका है, तो पंचन से लीन जाए आज्ञा। जय हिंद, जाए हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।

0: मुख्य समाचार। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत। 24 घंटे में सर्वे पूरा कर मुआवजा जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने का आह्वान। गाजियाबाद में NDRF के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 7 क्षेत्रीय रिस्पॉन्स सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और आगरा में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन। पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, पशुपालक समितियों को एक महीने में ही भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर तत्काल सर्वे पूरा कराने का निर्देश दिया है, जिससे मुआवजा जारी किया जा सके। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने, पेड़ गिरने और बिजली के खंभे गिरने की घटनाओं से हुई हैं। इनसे बिजली आपूर्ति और सड़क तथा रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: वहीं मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जिलों में प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। चंदौली के अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व राजेश कुमार ने बताया कि नुकसान का आकलन करने के लिए संबंधित अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में तेजी से कार्य कर रहे हैं। जनहानि के प्रकरण में मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को आपदा राहत कोष से लाभ दिलाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
2: हम लोग सभी अवयवों पर, सभी कंपोनेंट्स पर काम कर रहे हैं और जो पोल इत्यादि टूटे हैं उनके मरम्मत, उनको लगवाने जाने का काम जारी है। इसके अलावा जो पेड़ इत्यादि गिरे थे उनको भी हटवाकर जो है यातायात सुचारू कराया गया है। जो मानव मृत्यु के केस हैं उनको भी नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जा रही है, और इसी प्रकार जो मकान क्षति हुई है, मकान क्षति में भी नियमानुसार जो भी आर्थिक सहायता बन रही है उसको भी दिलाया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से ईंधन की बचत की अपील के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ईंधन की बचत के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, कार पूलिंग के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने 7,700 से अधिक गो आश्रय स्थलों में संरक्षित 15 लाख से अधिक गोवंश के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट आधारित सामूहिक किचन मॉडल विकसित करने की बात कही, जिससे LPG पर निर्भरता हो सके। लखनऊ में निजी मीडिया संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। हर नागरिक का दायित्व है कि वो राष्ट्र के साथ खड़ा होकर अपना योगदान दे।
3: अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए या अपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वह सुविधा है, हम उसका उपयोग करें, तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं, तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने, काफिला कम करने की अपील के मद्देनजर विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने परिषद की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है। वहीं कानपुर स्थित छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में पेट्रोल डीजल वाहनों के प्रयोग पर कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने आदेश जारी किए हैं। अब विश्वविद्यालय के कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक और दूसरे अधिकारी परिसर में आधिकारिक कार्यों के लिए ई कार्ट या इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करेंगे। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय की बैठकों को अधिक से अधिक ऑनलाइन आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
4: हमने अपने स्टूडेंट्स को भी कहा है कि वो साइकिल या ई कार्ट का प्रयोग, हम लोगों ने ये भी एक नियम निकाला।

0: है कि जो लोग शहर में जा रहे हैं तो ई व्हीकल का यूज, तो पेट्रोल बचाना और ऊर्जा को बचाना, यह विश्वविद्यालय का अपना कर्तव्य।
1: इसी क्रम में अयोध्या नगर निगम ने तय किया है कि अब सप्ताह में एक दिन यानी हर सोमवार को महापौर, पार्षद और अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के जरिए नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे। इसके साथ ही महापौर का एस्कॉर्ट वाहन भी बंद कर दिया गया है। वाराणसी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल बचाओ जागरूकता अभियान चलाया। नई सड़क स्थित कोदई चौकी से इलेक्ट्रिक स्कूटी रैली निकाली गई और पेट्रोल की बचत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गाजियाबाद स्थित 8वीं एनडीआरएफ बटालियन में राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वीर जवानों को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया और 6 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई शिलान्यास और 1 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि एनडीआरएफ ने 2 दशक के कम समय में ही देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से न केवल जोखिम को न्यूनतम करने के लिए कार्य किया गया है, बल्कि प्राकृतिक आपदा को कम करके उससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
2: आज देश भर में कहीं पर भी जाते हैं, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, इस घोष वाक्य के साथ काम करते हुए एनडीआरएफ के जवानों के प्रति न केवल समग्र देश, जहां जहां दुनिया में गए वहां आपने प्यार भी अर्जित किया है और लोगों का भरोसा भी अर्जित।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में आज स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम थीम पर डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि निराश्रित गोवंश सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश की सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है और प्रदेश सरकार पशुपालक समितियों को मजबूत करते हुए 1 माह में ही भुगतान करने का काम करेगी।
3: निराश्रित गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है और इसको उत्तर प्रदेश में हम सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में, देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और भारत का हिस्सा उत्तर प्रदेश में दूध का सबसे अच्छा है। आज हम दुग्ध महोत्सव के माध्यम से पशुपालकों को, दुग्ध समितियों को मजबूत करते हुए महीने के अंदर ही हम दुग्ध उत्पादकों का भुगतान कराने का काम करेंगे और ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसमें दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी हो।
1: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का लखनऊ के बैकुंठ धाम में आज अंतिम संस्कार किया गया। उनकी पत्नी अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सपा नेता शिवपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव और सैफई परिवार के सदस्यों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि अब 17 मई कर दी गई है। परिषद के अनुसार 11 मई तक कुल प्रवेश क्षमता 2,71,093 सीटों के सापेक्ष 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जा चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत, 24 घंटे में सर्वे पूरा कर मुआवजा जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने का आह्वान। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और आगरा में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन, पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा पशुपालक समितियों को 1 महीने में ही भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल जगत।
2: खेल जगत में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता है आपका मेजबान आसिफ इकबाल। नमस्कार। सबसे पहले भेंटवार्ता के अंतर्गत आपको सुनवाते हैं पूर्व राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री धावक और वर्तमान कोच अभय तिवारी से सुभाष खन्ना की बातचीत।
3: दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। और दोस्तों जैसा आपको पता ही है कि खेल जगत में हम किसी ऐसे विशेषज्ञ को, किसी ऐसे खिलाड़ी से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने जीवन में वो बड़े मकाम पाए हैं, खेलों में बड़ा नाम किया है, कई वर्षों तक उसमें अपना योगदान दिया है। और सर्वप्रथम बात तो ये कि भाई इससे उन्होंने क्या अर्जित किया है, ये ढेर सारी बातें आज हम एक ऐसे खिलाड़ी से करेंगे। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपकी मुलाकात कर रहा हूँ श्री अभय तिवारी से। आपने एथलेटिक्स में, नेशनल्स गेमों में पार्टिसिपेट किया है, राष्ट्रीय स्तर पर आपने कई वर्षों तक भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
4: थैंक यू।
3: सर्वप्रथम जब हम खेलों की बात करते हैं कि आपने खेलों में नेशनल खेला हुआ है, तो ये बड़ा मुकाम है कि भाई राष्ट्रीय स्तर तक खेल लेना। क्या बचपन से ही रुचि थी कि हम खेलों में जाएंगे या हम इस विधा में लगातार प्रयास करेंगे?
4: हाँ, बचपन से क्या रुचि थी, पापा हमारे स्टेडियम में थे
3: जी,
4: तो उनकी प्रेरणा से आया जाया करते थे वे, तो हम लोग उनके साथ कभी कभी चले गए स्टेडियम। तो वहीं पर एक बार हम रनिंग कर रहे थे तो कोच सर ने बोला दौड़ रहा है। हम 9th में एडमिशन मेरा हुआ था
3: जी जी जी,
4: तो उन्होंने हमको बुलाया और कहा कि भाई कहाँ से आए, तो मैंने बताया कि मैं श्री HP तिवारी, मेरे फादर हैं, उनका बेटा हूँ, यहीं पे बाबू हैं शूटिंग रेंज में। तो फिर वो उन्होंने कुछ बोला नहीं, फिर उसके बाद पापा को बुलाए और कहा कि भैया आपका बेटा तो बहुत अच्छा जो है रनिंग करता है, उसको भेजिए हमारे पास, हम कोचिंग देंगे। फिर हमने ध्यान नहीं दिया, फिर 2-3 महीने के बाद गर्मियों की छुट्टी हुई, तब फिर मैंने उनको ज्वाइन किया और वहीं से मेरा कैरियर शुरू हुआ। और धीरे धीरे फिर मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में भी मैंने ज्वाइन किया, फिर मैं वहाँ पर भी मैंने प्रैक्टिस करी। कमल सर हमारे कोच थे, भाटिया सर कोच थे, उनके अंडर में मैंने प्रैक्टिस करी। और वहीं से फिर मैंने पहली बार मैं झांसी गया खेलने, लॉन्ग जंप पहले मैं करता था
3: जी,
4: तो लॉन्ग जंप में मैंने पहली बार सिल्वर जीता, तो मुझको बहुत संतुष्टि हुई और वहाँ पर मुझको प्राइज भी मिला, मेडल भी मिला। बस वहीं से मेरा प्रोत्साहन बढ़ा आगे और धीरे धीरे बस फिर मैं इस फील्ड में आया। फिर जब मैं KD सिंह में आया तो हमारे कोच से विक्रम सर
3: जी,
4: विक्रम सिंह, वो ट्रिपल जंपर थे, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट थे, उनके अंडर में मैंने ट्रेनिंग ली और फिर मैं लॉन्ग रेस करने लगा, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और क्रॉस कंट्री। मैंने हाफ मैराथन भी खेली है, चेन्नई मैराथन और इलाहाबाद मैराथन। तो वहां पर मेरी बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन तब भी मैं अंडर 33 में था और अंडर 33 जो रेंज होती है वो बेस्ट मानी जाती है
3: जी,
4: इस फील्ड में। तो वहां भी मुझको प्राइज मिले, फिर मैंने वहीं से अपना कारवां शुरू किया। फिर मैंने 2000 में मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। फिर यहाँ से थोड़ा सा मेरा कैरियर ऊपर की तरफ चढ़ा, यहाँ पे टीमें बाहर जाती थी, इंडिविजुअल गेम था, मैंने यहाँ परफॉर्मेंस किया, अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया। लखनऊ में जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता और फिर यहीं से मैं क्रॉस कंट्री पहली बार कोच्चि गया खेलने के लिए, केरलम, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी अरनाकुलम में है, वहाँ पे पहली क्रॉस कंट्री हुई, मैं पार्टिसिपेट मैंने वहाँ किया। तो वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा समझ लीजिए कि बिल्कुल हील था और वहाँ बहुत ज़्यादा पथरीला रास्ता था, तो पहली बार हमने देखा ऐसी भी दौड़े होती हैं, हमको भी यहाँ पे समतल मिल रहा था
3: जी, जी जी जी,
4: लेकिन जब वहाँ मैंने कठिन ये रेस देखी तो वहाँ से मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस लिया। और दोबारा जब फिर मैं गया तो मैं फिर अंडर 33 में आ गया। उसके बाद 2004 में मैंने मेरा सिलेक्शन हुआ एज ए HL में स्पोर्ट्स में
3: जी,
4: बेंगलोर में मैं रहा 1 साल। लेकिन फिर मुझको ये लगा कि लखनऊ छूट रहा है, घर में सबसे छोटे थे और तैयारी भी थोड़ा सा कम हो रही थी, वहाँ पैसा मिलने लगा था
3: जी, जी, जी, जी।
4: फिर मैं लखनऊ आ गया। यहाँ से 2005 और 6 में BPED शुरू हुआ, तो फर्स्ट बैच में मैंने 2000 BPED किया, फिर MPED किया, MPhil में एडमिशन हुआ, तब तक वैकेंसियाँ आ गई VCSBTC की, मेरा उसमें हो गया। आज मैं टीचर हूँ और जॉब कर रहा हूँ और ये महर्षि यूनिवर्सिटी है IIM पे, यहाँ पे भी मैं एज अ गेस्ट टीचर हूँ और 3.5 घंटे की क्लास

0: मैं शाम को 3 से 6:30 बजे तक वहाँ देता हूँ। सुबह मॉर्निंग मेरी एकेडमी है जिसमें यूपीपी, यूपीएसआई, एनडीए, सीडीएस और दिल्ली पुलिस और असिस्टेंट कमांडेंट जितने बच्चे हैं मेरे पास ट्रेनिंग लेते हैं। और 2008 से लेकर और 2026 चल रहा है, मेरे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ट्रेनिंग करके और जॉब कर रहे हैं एज ए फिजिकल में।
1: क्रॉस कंट्री का आपने जिक्र किया,
0: क्रॉस कंट्री हाँ
1: जी, तो क्या ये जो बाकी दौड़ है उससे अलग है? ये
0: बहुत अलग रेस है ये
1: जी।
0: क्रॉस कंट्री एक रेस ऐसी होती है कि इसमें आपको हील मिलेगा, इसमें आपको समतल मिलेगा, इसमें आपको ऊबड़ खाबड़ रास्ता मिलेगा, इसमें आपको झरना मिलेगा, उसको पार करते हुए बाधा जैसी दौड़ होती है, बहुत कठिन रेस होती है। उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद जो परफॉर्मेंस आता है उससे ही आदमी का अचीवमेंट लिया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें होता क्या है कि इसमें थर्ड और सिक्स प्राइज तक नहीं दिया जाता है, इसमें 33 प्राइज तक सबको दिया जाता है
1: जी।
0: और 33 मतलब बहुत हो गया, क्योंकि इतनी कठिन रेस जो है चढ़ना, एक बार हील पे चढ़ना पैदल और सोचे दौड़ते हुए चढ़ना, फिर उतरना, फिर हील मिल जाए, फिर चढ़ना, फिर उतरना, तो उसमें बहुत कठिन रेस मानी जाती है ये पूरे एथलेटिक्स में। स्टेपल चेस के बाद, स्टेपल चेस तो पहले नंबर पे नहीं, दूसरे नंबर पे है
1: जी, जी, जी।
0: लेकिन जो क्रॉस कंट्री है वो पहले नंबर की सबसे हार्ड रेस मानी जाती है एथलेटिक्स में। तो उसमें मैंने अचीवमेंट किया और लगातार लखनऊ यूनिवर्सिटी को मैंने 2007 तक रिप्रेजेंट किया और रिप्रेजेंट करने के बाद नेशनल लेवल पर तक खेलते रहे।
1: क्या अभी भी खेलते हैं?
0: अभी भी खेल रहा हूँ मैं, अभी भी बच्चों को एकेडमी में मतलब ट्रीट कर रहा हूँ। बच्चे हमारे अभी पिछले बैच में यूपी 63 बच्चे मेरे जो है यूपीएसआई और कांस्टेबल में सेलेक्ट हुए हैं। अभी 26 तारीख को अप्रैल को पीओपी हुई है। अभी मैं झांसी गया था, कुछ बच्चों ने वहाँ हमारे बैच के बुलाए थे और उनको वहाँ पे भी सम्मानित किया गया था और बच्चों ने बताया कि सर हमारे कोच थे, अगर ये ना होते तो आज हमको ये नौकरी ना मिल पाती। तो आज भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, रोज 8-9 किलोमीटर रनिंग करता हूँ और बच्चों को भी अपने साथ रनिंग करवाता हूँ। कोई मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं उन बच्चों से फीस लूँ या कुछ लूँ, फीस का मेरा कोई मोटिव नहीं रहता। अगर गरीब बच्चा है या कुछ करना चाहता है तो हमारे पास ट्रेनिंग भी लेता है आकर और कोशिश करता है कि अच्छा हम परफॉर्मेंस करें।
1: इतने बरस का करियर रहा आपने, कई दशक इसमें गुजारे हैं, खेलों के अलावा जैसे आपने कहा कि भाई हमने विनिंग की, हमने 30 अबव हमने रैंक लाई, हम लगातार प्रेजेंट करते रहे, हमने अवार्ड्स जीते, इसके अलावा स्पोर्ट्स को कैसे देखते हैं आप किसी व्यक्ति के जीवन में?
0: पहली बात तो सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में इतनी बीमारियां हैं, इतना सब कुछ है, फिटनेस, अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो कभी आपको किसी के पास जाना नहीं है, डॉक्टर से कोई सलाह नहीं लेनी, आप फिट रहेंगे और अच्छे लगेंगे, आपकी पर्सनालिटी ही बिल्कुल अलग दिखेगी
1: जी, जी,
0: और
1: जी,
0: आप
1: जी,
0: दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं इसमें आने के लिए और अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए अपनी फिटनेस के लिए। और दूसरा इसमें कि अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो हमारे इंडिया में, हमारे प्रदेश में स्पोर्ट्स कोटे की जॉब निकलती है हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो नेवी में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे रेलवे में हो, उसमें आप परफॉर्मेंस करिए और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको नौकरी मिल जाती है। स्पोर्ट्स से अच्छा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि बच्चा जो मेहनत करेगा वो पढ़ नहीं पाएगा। तो स्पोर्ट्स के जितने बंदे होते हैं, बहुत कम ऐसे बंदे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, ऐसे गर्ल्स और बॉयज होते हैं जो अपना परफॉर्मेंस दे के ही नौकरी पाए हैं।
1: ये तो आपने कहा कि जब हम शीर्ष पर पहुंच गए, हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल पर, और नौकरी में आ गए। बहुत बार जब हम अभिभावक होते हैं या हम बच्चे होते हैं, कई बार जो हमारे परिवारजन हैं वो ये कहते हैं कि भाई खेलों में ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका करियर खराब हो जाएगा या आप करियर बेहतर नहीं बना पाएंगे। बहुत बार जो पेरेंट्स हैं उनमें ये मनोभाव होता है, हमारे उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे?
0: पेरेंट्स को तो मैं ये कहना चाहूंगा, जितना हो सके आजकल के दौर में, आजकल के परिवेश में
1: जी,
0: बच्चों को जरूर स्पोर्ट्स में डालिए। मेंटली और फिजिकली वो बहुत मजबूत होता है स्पोर्ट्स में, तो इसलिए बच्चों को तो प्रॉपर आप स्पोर्ट्स कोई ना कोई गेम जरूर खिलाइए, क्योंकि बच्चा आजकल मोबाइल का समय है, थोड़ा समय मिला नहीं, माँ बाप ने उनको मोबाइल थमा दिया, बच्चा उसी में मस्त है, उसी में खेल रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। स्पोर्ट्स में बच्चा स्कूल से आया, आपने किसी स्पोर्ट्स में उसको डाला, बच्चा थक गया, आएगा सोएगा, फिर अपना होमवर्क करेगा, सो जाएगा, उसका कोई टीवी से, कोई लैपटॉप से, कोई मोबाइल से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहेगा। और जो लोग इसमें मिलते हैं स्पोर्ट्स में वो सब मेहनती मिलते हैं और मतलब सज्जन और अच्छे बच्चे मिलते हैं। कुछ ही 5% बच्चे होते हैं जो बिगड़े हुए होते हैं, लेकिन तब भी वो धीरे धीरे अपना कैरियर उसमें बना लेते हैं। हम तो गार्जियन से कहते हैं कि जरूर अपने बच्चे को स्पोर्ट्स का कोई भी इवेंट्स कराइए, लेकिन उसको स्पोर्ट्स कराइए जरूर, फिटनेस के लिए, मेंटल के लिए बहुत जरूरी है।
1: ये बड़े लेवल पर आपने बात की, बहुत बार पेरेंट्स नहीं समझ पाते कि एडमिशन कहाँ दिलाना है या कौन सी ऐसी एकेडमी ले जानी है, क्या सरकार ने भी कोई ऐसी व्यवस्था कर रखी है। बहुत बार हम छोटे जिलों से आते हैं, हम नहीं समझ पाते कि शायद क्या वहां भी अवेलेबल है स्पोर्ट्स की ऐसी एंट्री, ऐसे कॉलेज, ऐसे गेम के स्टेडियम।
0: बिल्कुल, जैसे अपने यहाँ केडी सिंह बाबू स्टेडियम है, चौक स्टेडियम है, स्पोर्ट्स कॉलेज है, साई है, आपकी कैपेबिलिटी उसमें देखी जाती है। 5th के बाद स्पोर्ट्स कॉलेज

0: एडमिशन होते हैं, उसमें फिजिकल होता है, फिर रिटर्न होता है। वो बच्चा पास आउट होता है उस क्राइटेरिया के अंदर अगर आता है तो उसका एडमिशन होता है, फिर लगातार वो 6 साल तक वहाँ रिप्रेजेंट करता है। वहाँ एज ए स्पोर्ट्स वहाँ खिलाया भी जाता है, वहाँ पे 4-5 घंटे की पढ़ाई भी होती है, बोर्डिंग होता है। वहाँ 12 पास करने के बाद बच्चा कहीं ना कहीं अपना करियर जरूर बना लेता है। ऐसे ही साई अभी ये सरोजिनी नगर में जल्दी ही लेटेस्ट खुला हुआ है, 10 साल हुए हैं। इसमें बहुत बच्चों ने, रेसलिंग में अभी हमारी टीम गई थी, उसने भी 6 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, सब बच्चों को नौकरी मिल गई है। ये रिंकू सिंह क्रिकेट से ही आते हैं, इनको भी अभी DSP की पद मिला हुआ है, अभी जल्दी में ही इनको मिल गई नौकरी। तो स्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत अहम है, और हम तो चाहते हैं कि हर गार्जियन को, हर मदर एंड फादर को अपने बेटे को कोई ना कोई एक्टिविटी स्पोर्ट्स की जरूर करानी चाहिए।
1: हमारे बच्चों को क्या संदेश देंगे जो कई बार उनको लगता है कि शायद हम केवल मजे के लिए खेल रहे हैं और उतना पोटेंशियल नहीं देते हैं, उतनी ऊर्जा के साथ नहीं खेलते हैं, हमारे बच्चों को क्या संदेश देंगे?
0: संदेश तो हम ये देना चाहते हैं कि आप जो भी काम करिए, किसी भी स्पोर्ट्स को करिए, उसको लगन से करिए और उसमें निरंतरता बनाए रखिए। आप मतलब डेली आपका रूटीन रहे तो आप हमेशा उसमें सक्सेस रहेंगे। ऐसा नहीं होता है, कुछ बच्चे साथ के होते हैं, यार यार क्या कर रहे हो, तो इसमें क्या रखा है, पढ़ाई कर लो तो ऐसा हो जाएगा, पढ़ाई कर लो तो वैसा। पढ़ाई भी अपना अलग ही मोटिव, लेकिन खेल आप निरंतरता अगर बनाए रखे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी तरक्की हो जाएगी।
1: कहने का मतलब यह है कि भाई गेम में भी करियर बनाया जा सकता है, बशर्ते यह है कि आप उसमें अपनी ऊर्जा दें, अपना सकारात्मक प्रयोग करें और लगातार कठिन परिश्रम
0: करते रहिए, पॉजिटिव रहिए हमेशा। किसी ने कुछ बोल दिया तो फिर हमको नहीं करना है, पॉजिटिव होना चाहिए आपका। और ये होना चाहिए कि परमानेंट हमको जाना ही है, मेहनत करनी है,
1: अनुशासन हो कि नियम से।
0: हाँ, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है।
1: जी जी जी,
0: सब चीजें बहुत जरूरी होती है।
1: तो हमारे वो सभी श्रोता जो सुन रहे हैं, खास करके वो जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को जरूर खेलने के लिए भेजें। और जो बच्चे हैं वो जहां भी आप जा रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप गेम में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, अपना 100% दीजिए, बेस्ट दीजिए, हार्डवर्क करिए, करियर हर जगह बन जाएगा, बशर्ते आप खेलते रहें। और खेल का एक दूसरा पहलू भी है कि हम ढेर सारी ऐसी बातें सीखते हैं, हमें नेतृत्व का गुण आता है, हमें एकता विकसित होती है, हमें साथ रहने की भावना जगती है, और सबसे ज्यादा के आत्मविश्वास जगता है। साथ ही साथ हम संघर्ष करते हैं, हम हारते हैं, जीतते हैं, और जीवन के प्रति जो नजरिया है वो हमारा बदलता है। तो खेलों में भाग लें, और सर ने जैसा भी बताया कि हर जगह ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप वहां जाएं, अपना एडमिशन कराएं और खेलते रहें। बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी और हमारे श्रोताओं को, विशेषकर हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया आपने।
0: थैंक यू।
2: अभी आपने सुनी एक रोचक भेंट वार्ता, अब समय है साप्ताहिक खेल समाचारों का। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में विराट कोहली ने कई रिकॉर्ड्स बना डाले। कोहली ने नाबाद 105 रन की पारी खेली, इसी के साथ वे T20 क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने IPL में 12वीं बार 400 से ज्यादा रनों का आंकड़ा भी पार किया। वे लीग इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी भी बन गए हैं। IPL 2026 के लीग स्टेज में अब 13 मैच बाकी हैं। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ से बाहर हो चुकी हैं, जबकि बाकी 8 टीमें टॉप 4 की रेस में बनी हुई हैं। कोलकाता को हराकर बेंगलुरु पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच गई है। गुजरात और बेंगलुरु दोनों के 16-16 पॉइंट्स हैं, लेकिन बेहतर रन रेट की वजह से बेंगलुरु पहले स्थान पर है। बुधवार की हार के बाद कोलकाता की राह मुश्किल हो गई है, टीम को अब बचे हुए सभी मैच जीतने होंगे। पंजाब किंग्स लगातार 4 मैच हारकर 4थे स्थान पर खिसक गई है, टीम के 13 पॉइंट्स हैं और हर मैच अहम हो गया है। पंजाब का मुकाबला आज मुंबई से होगा, जहां उसे जीत चाहिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले महीने लॉर्ड्स में होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड ने बुधवार को अपनी 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। नए नेशनल सिलेक्टर्स मार्कस नॉर्थ ने ऑस्ट्रेलिया से एशिया सीरीज हारने वाली टीम में 7 बदलाव किए हैं। सबसे चौंकाने वाला फैसला ओपनर जैक क्रॉली को बाहर करने का है। क्रॉली की जगह डरहम के एमिलियो गाय को टीम में शामिल किया गया है। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने बुधवार को जारी ताजा ICC टेस्ट रैंकिंग में अपना नंबर 1 का स्थान बरकरार रखा है। टेस्ट बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत के यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल 8वें और 9वें स्थान पर हैं। तो श्रोताओं, ये थे साप्ताहिक खेल समाचार। खेल जगत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दें अपने मेजबान आसिफ इकबाल को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत, इसे आपकी सेवा में पेश किया आसिफ इकबाल ने। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए फिल्म तेरे मेरे सपने के इस गीत के साथ, जिसे लिखा है नीरज ने और धुन बनाई है SD बर्मन ने।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म हाथ की सफाई का ये गीत, जिसे लिखा था गुलशन बावरा ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। इसके साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम।

0: हिंदी कार्यक्रम के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी से वार्ता, जिसका विषय है राष्ट्रीय अस्मिता और भारतीय भाषाएं।
1: भाषाएं भारतीय सांस्कृतिक विविधता में एकता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। भारतीय भाषाओं में एक ही विचार तत्व की प्रधानता है, जो हजारों वर्षों से निरंतर प्रवाहमान है। भारतीय भाषाओं में अभिव्यक्ति चेतना राष्ट्रीय अस्मिता को मजबूत करती है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसके माध्यम से भाषा को आधार बनाकर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से भाषा को आधार बनाकर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। सांस्कृतिक विविधता को दृष्टिगत रखते हुए उसके विकास के लिए निरंतर प्रवाह को बनाए रखने के लिए समय समय पर इस प्रकार के प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन किसी विषय को सकारात्मक दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर उसमें विचलन आ जाता है, विकास की गति प्रभावित होती है। भाषा का गुण है प्रवाहमान बने रहना, और यदि उसमें कोई बाधा उत्पन्न होती है तो धीरे धीरे संकुचन बढ़ने लगता है। जिस भाषा का साहित्य जितना समृद्ध होगा वो भाषा उतनी ही दीर्घजीवी होगी। संस्कृत भाषा का व्यवहार करने वाले कम ही लोग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो अपने समृद्ध साहित्य के आधार पर पूरे विश्व में अपना एक अलग स्थान रखती है। उसके विकास की गति नित्य प्रवाहमान है। संस्कृत भाषा

ने दूसरी भारतीय भाषाओं का अतिक्रमण नहीं किया बल्कि उन्हें विस्तार दिया, और यही कारण है कि संस्कृत को समस्त भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाता है। उसके शब्द किसी न किसी रूप में लगभग भारतीय भाषाओं में विद्यमान हैं। भारतीय भाषाओं के मध्य संस्कृत भाषा समन्वय का कार्य करती है। भाषा विवाद का विषय नहीं है, वो संवाद का माध्यम है। भाषा अपने साहित्य के माध्यम से अकादमिक जगत को अपना एक अलग स्थान बनाती है। भाषा अपने साहित्य के माध्यम से अकादमिक जगत में अपना एक अलग स्थान बनाती है। आम बोलचाल में भाषा से थोड़ा ऊपर उठकर परिनिश्चित शब्दावली का उपयोग करते हुए लेखक पत्रकार अपनी रचना धर्मिता के माध्यम से भाषा को उस ऊंचाई पर ले जाते हैं जहां से वो निश्चित दायरे का अतिक्रमण करते हुए एक नया विस्तार प्राप्त करती है। कन्नड़ के प्रतिष्ठित साहित्यकार एसएल भैरप्पा जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से कन्नड़ भाषा को समृद्ध किया, लेकिन कन्नड़ में अभिव्यक्त उनके विचार अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से साधिकार पूरे भारत में विस्तार को पा रहे हैं। अनेक भारतीय भाषाओं में शब्द पाठक के मनोमस्तिष्क से कुछ इस प्रकार से अपना स्थान बना लेते हैं कि वो अपनी चेतना के साथ स्वयं को अभिव्यक्त दे रहा होता है, तो उसे स्वयं ही यह अनुभव होता है कि वो किसी भाषा विशेष की अस्मिता से ऊपर उठकर संपूर्ण भारतवर्ष में प्रतिनिधि के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम है। हाल ही में देश में कुछ राज्यों में चुनाव संपन्न हुए जिसमें ये देखने को मिलता है कि अनेक क्षेत्रीय दल पूर्व की भांति एक बार फिर से भाषाई अस्मिता को सामने रखकर चुनाव में सफलता प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बंगला भाषी अस्मिता बनाम अन्य का परिणाम सबके सामने है, और वही हाल कमोवेश तमिलनाडु में भी हुआ, क्योंकि आम जनमानस धीरे धीरे इस बात को भली प्रकार से समझने लगा है कि भाषाई अस्मिता की अनावश्यक लड़ाई के कारण नुकसान भाषा का हो रहा है और देश का हो रहा है। भारत सरकार ने भाषाई अस्मिता को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय अस्मिता को मजबूत बनाए रखने के लिए काशी तमिल संगम के रूप में एक ऐसे कार्यक्रम का शुभारम्भ किया जिससे भारत की दो संस्कृतियाँ जो कि हैं तो एक लेकिन दो भिन्न भाषाओं में अभिव्यक्ति पाती हैं उनके बीच एक बार फिर से सहज संवाद स्थापित किया जा सके। हजारों वर्षों से भारत के नागरिक भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक की यात्रा करते रहे हैं। प्रायः इन यात्राओं के केंद्र में धर्म होता है, और इन्हीं यात्राओं के माध्यम से भारतीय जनमानस भारत की सांस्कृतिक विविधता को समझने का प्रयास करता है। भारतीय भाषाओं पर विचार करते हुए ध्यान उन लोक भाषाओं की ओर भी जाता है जिनके माध्यम से कोई एक भाषा स्वयं को समृद्ध अनुभव करती है। लोक भाषाओं का अपना महत्व है। वर्तमान में हम हिंदी भाषा का जो स्वरूप देख रहे हैं, मध्यकाल की दो प्रमुख भाषाएं रही हैं जिनका साहित्य बहुत ही समृद्ध है। वर्तमान में इन पर लोक भाषाओं के रूप में विचार किया जाता है, लेकिन लोक भाषा के रूप में इन पर विचार किया जाना इन भाषाओं की गौरवशाली अतीत के कारण है। हिंदी भाषी प्रांतों में अनेक लोक भाषाओं का व्यवहार किया जाता है। इन लोक भाषाओं में निरंतर साहित्य भी लिखा जाता है। हिंदी भाषा में स्थापित अनेक साहित्यकारों ने अपनी अपनी लोक भाषाओं में भी लेखन कार्य किया जिसमें उन्हें प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई। उनका ऐसा करने का उद्देश्य हिंदी भाषा की उस ताकत को रेखांकित करने का था जिसके कारण पूरे विश्व में हिंदी की तूती बोलती है। ऐसे लेखन से वो पता चलता है कि हिंदी भाषा समाज के भीतर कितना गहरे तक विस्तार कर पाती है। अवधि, ब्रज, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मेवाती, मारवाड़ी, कन्नौजी इत्यादि से होते हुए हिंदी भाषा की समृद्ध परंपरा सभी भारतीय भाषाओं से कुछ न कुछ ग्रहण करती हैं। जब आप किसी भारतीय भाषा का व्यवहार करते हैं तो आप अपनी ही संस्कृति के साथ होते हैं, लेकिन जब आप किसी के ऐसी भाषा का व्यवहार करते हैं जिसका अपनी संस्कृति से कोई तालमेल नहीं है तो आप उस भाषा से संस्कारित तो होते रहते हैं लेकिन संस्कृत से संस्कारित होने का कोई लाभ न तो आपको मिलता है न आपके देश में समाज को मिलता है। भारत की भाषाई अस्मिता पर विचार करते हुए अनेक आश्चर्यजनक तथ्य उभर

0: कर आते हैं। अनुसंधान से पता चला है कि अनेक ऐसे शक्तियां जिन्होंने भारतीय क्षेत्रीय अस्मिता को और भाषाई अस्मिता को आगे रखकर स्वयं को अस्मिता से प्रचार प्रसार करके केंद्र उनके केंद्र सुदूर किसी जंगल में स्थापित हुए। उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ ऐसा विपन्न ग्रामीण अंचल में जमीन खरीदी, वहाँ कार्य निर्माण कार्य कराया और फिर अपनी गतिविधियों का संचालन प्रारंभ कर दिया। आसपास के लोगों को उन केंद्रों से जोड़ने का प्रयास किया और धीरे धीरे व्यवस्था में एक भाड़ा भारी परिवर्तन खड़ा कर दिया। ऐसे भारतीय परंपरा के विद्यालयों का स्थान मिशनरीज के विद्यालयों ने ले लिया। हिंदी भाषी प्रांतों में भी ऐसी मिशनरीज विद्यालयों का बोलबाला हो गया जिसमें केरल के चर्चों में से प्रशिक्षित होकर शिक्षक पढ़ाने का कार्य करने लगे। भारतीय शिक्षा पद्धति, भारत की ज्ञान परंपरा, भारतीय भाषाओं के माध्यम से जनमानस की चेतना को झंकृत करती है, लेकिन जब भारतीय शिक्षा पद्धति को उसकी ज्ञान परंपरा से को अवरुद्ध करते हुए एक तथाकथित विस्तारवादी नीति के अंतर्गत मिशनरीज के विद्यालयों के माध्यम से एक ऐसी दृश्य का प्रचार प्रसार किया जाता है जिसमें परंपरा बोध का अभाव है और भारतीय जनमानस के लिए हितकर नहीं हो सकता, विद्यालय और समाज दोनों में कोई तालमेल नहीं रह जाता, ऐसे विद्यालयों ने ही अनेक विमर्शों को जन्म दिया। भारत का भाषाई विमर्श इन्हीं विद्यालयों की देन है। यह बात तब और अधिक स्पष्ट हो जाती है कि भाषाई अस्मिता की लड़ाई लड़ते लड़ते राज्य किसी और दिशा की ओर बढ़ जाते हैं। भला हुआ साहित्यकारों का जिन्होंने जनमानस के मनोमस्तिष्क में इस प्रकार के भाव विकसित करने का प्रयास किया कि भारत एक है, भारत की सांस्कृतिक विविधता ही भारत का सौंदर्य है।
1: राष्ट्रीय अस्मिता और भारतीय भाषाएं, अभी आप डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी से ये वार्ता सुन रहे थे। श्रोताओं, आज के अंक से अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं जगजीत सिंह। आप सुनेंगे आज आपकी गाई हुई चंद गज़लें।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की गाई चंद गज़लें। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

हम अपने सुनने वालों को एक बार पुनः याद दिला दें कि जिले की हलचल का प्रसारण होगा कल सवेरे 9:15 पर, और उर्दू प्रोग्राम में कल सवेरे 9:30 पर क्विज़ प्रोग्राम आकाशवाणी @90 नशर किया जाएगा।

संयुक्त परिवार जीवन में बाधा या प्रगति का आधार, इस विषय पर परिचर्चा सुनेगा। अपराजिता कार्यक्रम में कल दिन में 1:15 पर प्रतिभागी होंगी श्वेता राजदान अदीब और संघमित्रा चौहान। खरीफ मक्का की उन्नत कृषि तकनीक, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह से इस विषय पर भेंटवार्ता करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में कल दिन में 2:30 पर।

नई उड़ान कार्यक्रम का प्रसारण होगा कल शाम 5:45 पर। इसमें हमारी सेहत क्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन से भेंटवार्ता, जिसका विषय रहेगा निर्बाध रोगी कल्याण में नवोन्मेषी एकीकृत अस्पताल प्रबंधन प्रणाली की भूमिका। औषधि पौधों से स्वास्थ्य संरक्षण, डॉक्टर तरुणा पांडे से इस विषय पर वार्ता सुनेगा लोकायतन कार्यक्रम में कल शाम 6:30 पर। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट से।

और अब लीजिए सुनिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा, आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया फिल्म कारवां का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

0: अभी आपने सुना फिल्म समाधि का यह गीत, जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत आर डी बर्मन का था और स्वर लता मंगेशकर का। इसके साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। होर्मूज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग

0: को मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाले सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
1: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
3: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली

0: में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
2: एन इंडियन डो
3: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
2: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
4: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
5: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
4: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए क्षित कुमार वैद्यान।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: हमेशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच

0: के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
1: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
0: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Division Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will

0: मोदी ने कहा है कि इस बरस भारत की सदारत में ब्रिक्स कसीर सतहियत को मजबूत करने, पायदार तरक्की को फ़रोग देने, इक्तसादी मज़ाहिमत को बढ़ाने और मज़ीद शमूलियत वाले आलमी निज़ाम की तश्कील के लिए मिलकर काम करेगा। आज नई दिल्ली में वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात के लिए आने वाले ब्रिक्स ममालिक के वज़राए खारजा और वफद के सरबराहान के साथ बातचीत करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उभरती हुई मईशतों के दरमियान तआवुन को बढ़ाने और आलमी जुनूब की उमंगों को आवाज़ देने की गरज से ब्रिक्स एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। ये मीटिंग नई दिल्ली में इन दिनों जारी ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग से अलग मुनक़िद हुई। इससे कल ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग में अपने इफ्तिताही बयान में वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अमन और सलामती को आलमी निज़ाम में मरकज़ी हैसियत ही हासिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हालिया तनाज़ात, मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत ही को उजागर करते हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इन दिनों जारी तनाज़ात, इक्तिसादी गैर यकीनी की सूरत हाल और तिजारत, टेक्नोलॉजी और आबोहवा से मुतालिक चैलेंजेस आलमी मंजरनामे को शक्ल सूरत दे रहे हैं और इस नौ की तवक्कुआत बढ़ रही हैं कि ब्रिक्स इस सिलसिले में एक तामीरी और इस्तेहकाम अता करने वाला किरदार अदा करे। इस मीटिंग का मौजू है मज़ाहिमत, इख्तराआत, तआवुन और पायदारियत के लिए तामीर, इंसानियत को अव्वलियत देने और ब्रिक्स के अवाम मरकूज होने के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विजन से इस मौजू के लिए तहरीक मिली है। कल दूसरे दिन ब्रिक्स मेंबरान और शरीक ममालिक एक इजलास में हिस्सा लेंगे जिसका मौजू है ब्रिक्स एट द रेट 20, मज़ाहिमत, इख्तराआत, तआवुन और पायदारियत के लिए तामीर। इसके बाद आलमी हुक्मरानी और कसीर सतही निज़ाम में इस्लाहात के मौजू पर इजलास होगा। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात एशिया की तेज़ी के साथ बढ़ती हुई इक्तसादी शराकत दारियों में से एक को मज़ीद तौसी देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आला सतही तबादला ख्याल की गरज से कल अबू धाबी पहुँच रहे हैं। इस तबादला ख्याल में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के तहफ्फुज़ और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी इक्तसादी मसरूफियात में तेज़ी के साथ होती हुई पेशरफ्त के माबैन हो रहा है। भारत मुत्तहिदा अरब अमारात की तिजारत माली साल 2024-25 में 100 अरब अमरीकी डॉलर के निशाने से तजावुज़ कर चुकी है। ये 2022 के जामे इक्तसादी शराकत दारी के मुआहिदे या CEPA के तहत मुकर्रा हदफ को मुकर्रा वक्त से 5 साल पहले ही हासिल करना है। इस साल के अवाइल में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के भारत के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों ने 2032 तक बाहमी तिजारत के निशाने को बढ़ाकर 200 अरब डॉलर मुकर्रर किया था। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों मुल्कों के दरमियान गहरी इक्तिसादी शराकत दारी के लिए मुसलसल कोशा हैं। जुमे के रोज़ होने वाली बातचीत में तवानाई के तहफ्फुज़ पर तवज्जो मरकूज़ किए जाने का इम्कान है। UAE में भारत की तरफ से होने वाली बरामदात 36.63 बिलियन डॉलर से तजावुज़ कर गई है, जिसके सबब मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया भर में भारत की जानिब से होने वाली बरामदात का दूसरा बड़ा मुल्क बन गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि खुद किफालत और मिलकर काम करने की पहल दोनों ही कलीदी नौइयत की खुद मुख्तारी हासिल करने और उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए मुस्तकबिल में तैयार रहने की गरज से लाजमी हैसियत रखते हैं। जनाब सिंह ने नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे एडिशन के इफ्तिताही इजलास के दौरान एक वीडियो पैगाम में ये बात कही। वज़ीर मौसूफ ने खुद किफालत को न सिर्फ एक इक्तसादी हदफ बल्कि एक कलीदी ज़रूरत भी करार दिया। उन्होंने वजाहत की कि अगर कोई मुल्क अहम तरीन दिफाई सलाहियतों के लिए दूसरों पर ज़्यादा ही मुनहसर हो तो वो बहरान के दौर में जद पजीर रहता है। जनाब सिंह ने कहा कि भारत अपने कौमी निज़ाम के अंदरून अहम नौइयत के दिफाई निज़ाम को वज़ा करे, तैयार करे, बनाए, बरकरार रखे और इन्हें अपग्रेड करता रहे ताकि वो कलीदी नौइयत की खुद मुख्तारी हासिल कर सके। महकमा दिफा के वज़ीर मुमलिकत संजय सेठ ने ऑपरेशन सिंदूर को एक तारीखी कामयाबी करार दिया, जिसने भारत की मुल्क में ही तैयार हथियारों और निज़ामों को इस्तेमाल करते हुए इंतहाई तेज़ और तालमेल पर मबनी ऑपरेशन अंजाम देने की सलाहियतों का मुजाहरा किया। भारत के चुनाव कमीशन ने ऐलान किया है कि राय दहिंदगान की फहरिस्तों पर खसूसी नजरसानी SIR मरहला 3 शुरू किया जाएगा। इसे 16 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मरहलेवार मुनक़िद किया जाएगा। इस मरहले में जो रियासतें शामिल हैं उनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तराखंड शामिल हैं।

बाराबंकी से बलवंत सिंह, कांशीराम कॉलोनी अभयनगर बाराबंकी से रमेश चंद्र, विशाल नगर मुंजापुरवा मसौली से अमित कुमार शर्मा, उजरवारापुरवा फतेहपुर बाराबंकी से आदर्श वर्मा, ललित वर्मा सिहाली फतेहपुर बाराबंकी से डॉक्टर अवधेश कुमार और अंशु मिश्रा, जानकीपुरम विस्तार लखनऊ से राजकुमार शर्मा, शुभम शर्मा और अनुज शर्मा, पुलिस लाइन बाराबंकी से विमलेश शर्मा। तो लीजिए सुनिए आप सबके अनुरोध पर फिल्म सरगम का ये गीत।

कार्यक्रम चल रहा है आपकी पसंद, और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विकास चंद्र शर्मा। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म आन मिलो सजना से, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। इसे सुनने का अनुरोध किया है किसान रेडियो क्लब ग्राम और पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से विजयपाल यादव, शुभम यादव, बबलू यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव, राजेश कुमार और विजय पांडे। तो लीजिए सुनिए आप सबके अनुरोध पर फिल्म आन मिलो सजना का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म दो रास्ते से स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। सुनने के लिए ईमेल किया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, सांडी हरदोई से विजय लक्ष्मी कुशवाहा, कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11, पुराना शहर बरेली से अनोखेलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य और एरोही और स्वाति मौर्य। तो लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म दो रास्ते का ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म रोटी का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और स्वर किशोर कुमार और लता मंगेशकर के हैं। सुनने का अनुरोध किया है रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज राजूभानु, रामशंकर, रक्षा मौर्य, रामसागर, दिनेश कुमार, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास चनेटी बरेली से, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ प्रदेश से रामचंद्र माखीजा, शंकर लाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और पूरा माखीजा परिवार के सभी सदस्य। तो लीजिए सुनिए आप सबके अनुरोध पर फिल्म रोटी का ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सुहाना सफ़र का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। सुनने का अनुरोध किया है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। मलोट कैंट पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया अनमोल, धर्मपाल और रमेश मिगलानी ने। तो लीजिए सुनिए आप सबके अनुरोध पर फिल्म सुहाना सफ़र का ये गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का आपके पसंद कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। अपने दोस्त डॉक्टर विकास चंद्र शर्मा को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, रात्रि के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए लता मंगेशकर का गाया फिल्म मेरा गांव मेरा देश का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

दो रास्ते, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब आप सुनेंगे। स्वर लता मंगेशकर के गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

और अब लीजिए सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म राम और श्याम का ये गीत, जिसे लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत नौशाद का है।

और अब लीजिए सुनिए फिल्म हिमालय की गोद में। इस फिल्म का गीत स्वर लता मंगेशकर का, गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

और कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राजा रंग का ये गीत, जिसे स्वर दिया है मोहम्मद रफ़ी ने। शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म राजा और रंग का ये गीत। इसके साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

महिलाएं दया की नहीं आदर की पात्र हैं, आदर दीजिए, आदर पाइए। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे देवानंद पाठक का वायलिन वादक, राग है कलावती, विलंबित रचना झप ताल में, मध्य लय और द्रुत लय 3 ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत की है शुभम वर्मा ने।

अभी आप सुन रहे थे देवानंद पाठक का वायलिन वादन, राग था कलावती, आपके साथ तबले पर संगीत की शुभम वर्मा ने। इसके साथ ही आज का शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और

0: केरल में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS Foreign Ministers' meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers' meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In this session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the group supports change and reforms, reflects a multipolar world, help countries reduce the risks by expanding partnerships, and believes in mutual respect and equal rights for all nations. Prime Minister Narendra Modi will arrive in United Arab Emirates capital Abu Dhabi tomorrow on the first leg of his five-nation visit. He will later visit the Netherlands, Sweden, Norway and Italy. Our West Asia correspondent reports India and the UAE are preparing to further expand one of Asia's fastest growing economic partnerships during high-level discussions between Prime Minister Modi and President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The talks are expected to focus on trade, investment, energy security and emerging technologies.